नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक सम्मत 1948 के वैशाख मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 मई सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग के पर उपलब्ध है। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से आप हमारे

कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी समय सुन सकते हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरों मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: आज का चिंतन।

आचार्य चाणक्य का कथन है कि अच्छे और ज्ञानी लोगों के साथ रहें, क्योंकि संगति का असर हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह अब से थोड़ी देर बाद 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान सुनेगा भाग 182। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर सुनेगा संगीत सरिता कार्यक्रम। इसके अंतर्गत सुनिए श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना झोकरकर। इस श्रृंखला की 6वीं कड़ी आज सुनेगा। सात बजे से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। 7:30 पर हम है राही प्यार के। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर सुनिए वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक मिलिंद सवनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए भाग 27।

9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार प्रकाश मेहरा पर। 10 बजे पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश, 11 बजे सुनिए रंग तरंग, 12 बजे हिंदी समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर और 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक हैं मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, भाग 27 आज। दो बजकर 30 मिनट पर सदाबहार नगमे, 3 बजे सखी सहेली, 4 बजे सुनिए पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी। गीतों भरी कहानी में आज सपने में ठिठका इंतजार, लेखिका स्वर और स्वर ममता सिंह का है, संपादन सहायक काजल बदरंगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:30 पर झरोखा के अंतर्गत सुनेगा कार्यक्रम विवरण। शाम 6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता, 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत गुलदस्ता, हवा महल में रात 8 बजे सुनिए नाटिका रिजल्ट का चक्कर, लेखक हरीश दीक्षित, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर, 8:15 पर चित्रलोक, 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार। आपको फिर से बता दें, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार प्रकाश मेहरा पर। 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे सुनिए रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस कान भाग 182।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की मात्र एक झलक दिखाकर लौटा लाने में जैसा राजा दशरथ ने चाहा था सुमंत्र सफल नहीं हुए। शोक और संताप की मूर्ति सुमंत्र महाराज के सम्मुख उपस्थित होकर उस करुण दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम ने कहला भिजवाया है कि पिता के अनुग्रह से वन में उन्हें सभी प्रकार से सुख मिलेगा। पिता की आज्ञा का पालन कर वे सकुशल वापस लौट आएंगे। नगर वासियों के लिए उन्होंने विनय पूर्वक अनुरोध किया है कि वही लोग उनके परम हितैषी होंगे जो सब प्रकार से महाराज को सुखी और संतुष्ट रखेंगे। प्रिय अनुज भरत के लिए संदेश है कि राज्याभिषेक हो जाने के बाद भी वे नीति के मार्ग पर चलकर मन वचन और कर्म से प्रजा का पालन और माताओं का सम्मान करें।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की छठी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं। कल्पना जी, क्या आज की इस कड़ी को वीणा सहस्त्रबुद्धे के लिए रखा जाए? अगर आप कहें
2: बिल्कुल
1: तो।
2: जरूर विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे जी, आप वैसे कानपुर की रहने वाली हैं और उन्होंने अपने पिताजी पंडित शंकर राव बोडस एवं उनके बड़े भाई पंडित काशीनाथ बोडस जी से शिक्षा प्राप्त की संगीत की, जो पंडित विष्णु दिगंबर जी के शिष्य थे। और उसके अलावा भी उन्होंने पंडित बलवंत राय भट्ट जी, वसंत ठकार जी, पंडित गजानन राव जोशी जी, गाना सरस्वती श्रीमती किशोरी अमोणकर जी आदि से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया। और इनकी गायकी में इसीलिए ग्वालियर किराना जयपुर घराने की गायकी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और गांधर्व महाविद्यालय के लिए भी बहुत काम किया, उन्हें गांधर्व मंडल की ओर से संगीत महोपाध्याय की पदवी से भी विभूषित किया और इतनी उत्तम रचनाएं उन्होंने बनाई हैं
1: जी।
2: तो वीणा जी की एक रचना मैं गाकर आपको सुनाती हूँ, भोपाल तोड़ी राग जो सुबह का राग है, एक बंदिश है वो मैं आपको सुनाती हूँ।
1: स्वागत है।
2: जो मध्य लय तीन ताल में है। तो पहले मैं आपको भोपाल तोड़ी के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दूं हमारे सुनने वालों के लिए। तो भोपाल तोड़ी ये राग भैरवी थाट से उत्पन्न हुआ है और तोड़ी अंग से गाया जाता है। इसकी जाति जो है वो औडव है, मध्यम इसमें और निषाद ये दोनों स्वर वर्जित है
1: जी।
2: रे ग ध इसमें कोमल लगते हैं, दिन का पहला प्रहर इसका समय है और वादी इसका दैवत एवं संवादी गंधार है। भक्ति भाव से ओतप्रोत यह राग बहुत ही सुंदर और सुबह के समय तो बहुत ही आनंददायक होता है।
1: तो अब कौन सी बंदिश आप प्रस्तुत करेंगे?
2: आदरणीय वीणा ताई ने बनाई हुई द्रुत तीन ताल में एक बंदिश मैं आपको सुनाती हूँ। तुम बिन कौन सहाय या जग में दूसरो न कोई।
1: स्वागत है।

0: वाह बहुत सुंदर। विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे की इस बंदिश को बड़ी ही सुंदरता से आपने प्रस्तुत किया कल्पना जी, और इस रचना को सुनते हुए हमारा मन भक्ति भाव के सागर में हिलोरे ले रहा था। और अब बताइए कि अब कौन सी रचना आप प्रस्तुत करेंगे या सुनवाएंगे हमारे श्रोताओं को?
1: अब मैं वीणा ताई के आवाज में और उन्होंने बनाई हुई रचना राग दुर्गा में विलंबित एक ताल का एक ख्याल सुनवाना चाहूंगी।
0: प्रस्तुत है जी ये रचना।

0: आज की इस कड़ी में हम जानकारी दे रहे थे विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे के बारे में और उनकी बंदिशें सुनवाई। हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को ये कड़ी भी बहुत पसंद आएगी और कल की कड़ी में कुछ और जानकारी, कुछ और बातें हम लेकर उपस्थित होंगे। कल्पना जी, आपको धन्यवाद। अब हम यहाँ पर विदा लेते हैं आज की इस कड़ी में। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: महिला रचनाकारों की बंदिशें, आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की छठी कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, आपसे बातचीत कर रही थी ममता सिंह। तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनवणे। आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत से।

अनोखी अदा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। शकील बदायनी ने इस गीत को लिखा था और नौशाद अली ने इस गीत की धुन बनाई थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए सुरैया की आवाज में प्यार की जीत फिल्म का ये गीत।

0: सुरैया की आवाज में प्यार की जीत फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। शब्दकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे हुस्नलाल भगतराम।
1: कहिए
2: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।
2: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई बाहों में खिली कलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: याद सताते हैं
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

उमा देवी की आवाज में चंद्रलेखा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। रचना भरत व्यास की थी, संगीतकार थे एस राजेश्वर राव। लीजिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सुनिए नदिया के पार फिल्म का गाना। शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, संगीतकार हैं सी रामचंद्र।

0: दर्द क्यों?
1: हाँ आप कहे कोई, नशे में है दर्द क्यों?
2: ये इसलिए के जिंदगी

0: मिलने की तमन्ना है मगर मिलते नहीं है क्यों।
1: हम भी तो सुने, क्यों नहीं मिलते?
2: ये इसलिए के दिल पे दिल निसार किया जाए।

शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में नदिया के पार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इसे संगीत से संवारा था सी रामचंद्र ने। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम में चलिए एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

साथियों, इस गाने के पहले जो गाना आपने सुना था उसे हमने गजरे फिल्म से लिया था। सुरैया की आवाज थी और इसे लिखा था गोपाल सिंह नेपाली ने और संगीत से संवारा था अनिल विश्वास ने। अभी जो गीत आप सुन रहे थे इसे भी सुरैया ने गाया था और सिंगार फिल्म का गीत था। DN मधोक की रचना थी और संगीतकार थे खुर्शीद अनवर। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। आपके लिए एक विशेष सूचना है, सुनिए श्रोताओं। जैसा कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 बरस पूरे होने को हैं, इस मौके पर आज यानी 8 मई को वॉकथॉन का आयोजन विविध भारती के द्वारा किया जा रहा है। इस वॉकेथॉन के लिए आप सब जमा होंगे शाम को 5 बजे गुराई 2 के पेप्सी ग्राउंड यानी शिवाजी महाराज ग्राउंड के सामने, और वहां से विविध भारती तक एक वॉक किया जाएगा जिसमें विविध भारती के कार्यक्रमों के बारे में बताया जाएगा, लोगों से मुलाकात की जाएगी। तो आप जरूर आइएगा गुराई 2 के पेप्सी ग्राउंड के सामने शाम को 5 बजे। अब सुनिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का ये गीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप लाडली फिल्म का गीत सुन रहे थे। इसे बहजाद लखनवी ने लिखा था और अनिल विश्वास ने इस गीत को संगीत से संवारा था।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार,
2: ये हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर।
0: अब आज का हमारा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।

कर्ज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत आपने सुना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत की धुन बनाई थी। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में लीजिए ये सुनिए ना खुदा फिल्म का गीत।

खुदा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की आवाजें थी, निदा फाजली के बोल थे और खयाम की तर्ज थी। हम है राही प्यार के कार्यक्रम में समय आप सुन रहे हैं।

आशा भोसले और अशोक कुमार की आवाजों में गुलजार का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे। खूबसूरत फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आर डी बर्मन ने इस गीत की धुन बनाई थी। हम हेराही प्यार के इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। प्रोफेसर प्यारेलाल फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं, मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजें हैं। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा है कल्याण जी, आनंद जी की तर्ज है।

0: प्रोफेसर प्यारेलाल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें मोहम्मद रफी आशा भोसले की थी। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा था, कल्याण जी आनंद जी की धुन थी। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 बरस पूरे होने को हैं, इस मौके पर आज यानी 8 मई को एक वॉकथॉन का आयोजन विविध भारती के द्वारा किया जा रहा है। इस वॉकथॉन के लिए हम सब जमा होंगे शाम को 5 बजे गुराई 2 के पेप्सी ग्राउंड यानी शिवाजी महाराज ग्राउंड के सामने, और वहां से विविध भारती तक एक वॉक किया जाएगा जिसमें विविध भारती के कार्यक्रमों के बारे में बताया जाएगा, लोगों से मुलाकात की जाएगी। तो आप जरूर आइएगा गुराई 2 के पेप्सी ग्राउंड के सामने शाम को 5 बजे। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
0: लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में लीजिए सुनिए हम 5 फिल्म का गाना।

हम पांच फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर अमित कुमार की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन थी। इसी गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत

0: करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 वैशाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीपन दास गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: India and Vietnam offer something important.
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
7: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा, टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है, इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे, लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
3: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सवनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 27वीं कड़ी।

0: 7 अगस्त 1905, ये वो दिन था जब कलकत्ता के टाउन हॉल के विशाल प्रांगण में संपन्न 4 बड़ी-बड़ी सभाओं में वंदे मातरम इन शब्दों का पहली बार सार्वजनिक सामूहिक जय घोष हुआ। और अगले मात्र 2 महीनों में ये युद्ध घोष बंगाल के विभाजन के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का नारा बन गया। केवल 2 महीनों में वंदे मातरम ये शब्द प्रत्येक बंगाली व्यक्ति के मुख से निकलने लगे। 16 अक्टूबर 1905 वो दिन आ गया जिस दिन विभाजन की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त से भी बड़ी सभा अब होने वाली थी। उससे पहले सभा में आने वाले सभी लोग एकत्रित होकर जुलूस के साथ सभा स्थल पर जाने वाले थे। सभा में जाने से पहले जनता ने और भी कुछ ऐसी कार्रवाइयां करने का निश्चय किया था जिससे जनता की एकता और वंदे मातरम की शक्ति का संयुक्त परिणाम ब्रिटिश सत्ता को अच्छी तरह महसूस हो। इकट्ठा हुआ जनसमूह वंदे मातरम का जयघोष करते हुए गंगा की दिशा में चल पड़ा।
1: गंगा स्नान के बाद सभी लोग एक दूसरे को राखी बांधने वाले थे। उन सब के आगे रविंद्रनाथ पैदल चल रहे थे। उस दिन ठाकुर परिवार के सभी नौकर, मुनीम और मालिक बराबरी से बिना किसी घोड़े गाड़ी के पैदल ही चल रहे थे। दोनों ओर भारी भीड़ जमा थी। किसी उत्सव जैसा माहौल बन गया था। सामने जगन्नाथ घाट था। रविंद्रनाथ के साथ लोगों ने गंगा में स्नान किया और सबने एक दूसरे को राखी बांधना शुरू कर दिया। इसके बाद बिडन स्क्वायर में एक बड़ी सभा होने वाली थी। जगन्नाथ घाट से निकलते समय पाथुरिया घाट के पास कुछ मुसलमान अपने पालतू घोड़ों की देखभाल कर रहे थे। रविंद्रनाथ जल्दी से आगे बढ़े और उन्हें भी राखियां बांधी। वहां से आगे जाते हुए अचानक रविंद्रनाथ ने तय किया चितपुर रोड पर स्थित मस्जिद में जाकर वहां के मुसलमानों को भी राखी बांधे। कुछ लोगों को लगा अब निश्चित ही कोई दंगा फसाद होगा, परंतु रविंद्रनाथ आगे बढ़े तो मस्जिद के लोगों ने आदरपूर्वक आगे आकर हंसते हुए राखियां बंधवा ली। उस दिन पूरे कलकत्ता में स्वयं स्फूर्त बंद रखा गया।
0: रविंद्रनाथ सहित सभी लोग बिडन स्क्वायर में सेंट्रल कॉलेज के मैदान पर एकत्रित हुए थे। वयोवृद्ध नेता आनंद मोहन बसु बीमार होने के बावजूद मंच पर आराम कुर्सी में बैठे थे। उनका लिखित भाषण सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने पढ़कर सुनाया। उनका घोषणा पत्र कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आशुतोष चौधरी ने पढ़ा। उसका बंगाली अनुवाद रविंद्रनाथ ठाकुर ने सबको सुनाया। आनंद मोहन बोले,
2: समस्त बंगाल वासियों की भावनाओं की अवहेलना करके ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बंगाल का विभाजन करने का निश्चय किया है, इसलिए आज हम सभी शपथ लें कि बंगाल का विभाजन रद्द होने तक बंगाल में एकता बनाए रखने के लिए समूचे बंगाल का प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जो जो संभव है वो करेगा।
1: इस सभा में 50,000 लोग उपस्थित थे। इस दिन के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर रचित वो गीत प्रार्थना के रूप में गाया गया जो आगे चलकर बहुत

इस सभा के आयोजन में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता का बड़ा योगदान था, जो भारतीय न होते हुए भी मात्र 5 वर्षों में पूरी तरह भारतीय हिंदू बन चुकी थीं। यह सभा समाप्त होने पर सर्कुलर रोड पर एक और बड़ी सभा हुई। अखंड बंग भवन इस इमारत का शिलान्यास समारोह हुआ। इस सभा में भी लोगों ने स्वदेशी की शपथ ली। इस सभा में 75,000 रुपयों का राष्ट्रीय निधि इकट्ठा हुआ। बंग भंग विरोधी आंदोलन में आम जनता के साथ युवा छात्र वर्ग भी शामिल होने लगा। बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से कार्लाइल सर्कुलर नामक कुख्यात सर्कुलर जारी किया गया, जिसके अनुसार जो कोई भी विद्यार्थी स्वदेशी की सभा में भाग लेगा या वंदे मातरम का नारा लगाएगा, उसे स्कूल कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। इस सर्कुलर से छात्रों में दहशत फैलने की बजाय और अधिक संख्या में विद्यार्थी इस आंदोलन में भाग लेने लगे।

आगे 1906 में बहुचर्चित बारिसार प्रकरण के नेता अश्विनी कुमार दत्त के आह्वान को प्रतिक्रिया देते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने कॉलेज बंद करवा दिए और ये इमारत किराए पर देना है इस आशय के पोस्टर विश्वविद्यालय की दीवारों पर चिपका दिए। रंगपुर के एक विद्यालय के 200 छात्रों को वंदे मातरम का नारा लगाने के लिए प्रत्येक को ₹5 का जुर्माना भरना पड़ा।

आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 27वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सवनिस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी और जयंत पात्रीकर, सहभागी कलाकार यूनुस खान, संगीतकार अजय पराड़, गायक कलाकार अपर्णा केड़कर, पार्थ उमराणी, देवव्रत भातखंडे और पद्मजा लामरूट। तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता का था। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
2: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आपको लैब्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस तो आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
3: तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे।
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
3: चलो चले मितवा।
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
4: चलते चलते
1: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
3: आजा

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार।
1: ये हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे, कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। चित्रलोक कार्यक्रम की शुरुआत इस गाने से।

लहमर हुसैन पुरी और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे, राजशेखर का लिखा हुआ। संगीतकार थे कृष्णा और फिल्म का नाम तनु वेट्स मनु।

0: अली ब्रदर्स के आवाज़ों में आप सुन रहे थे हक फिल्म का गीत। कौशल किशोर ने इस गीत को लिखा था और संगीतकार थे विशाल मिश्रा। चित्रलोक कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा। आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
3: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे।
2: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
3: चलो चले मितवा।
2: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
3: आजा।

धुरंधर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे शाश्वत सचदेव और जैस्मिन सांडिल्य और साथियों की आवाजों में। गीतकार थे जैस्मिन सांडिल्य और संगीत शाश्वत सचदेव का था। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हो जाएंगे।

0: बॉर्डर टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी दिलजीत दोसांझ, परंपरा टंडर और सचेत टंडन की। गीतकार थे कौसर मुनीर और संगीतकार थे सचेत टंडन और परंपरा टंडन।
1: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
2: तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे।
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉक

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

लापता लेडीज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। श्रेया घोषाल की आवाज थी। स्वानंद किरकिरे ने इस गीत को लिखा था और राम संपत ने इस गीत को संगीत से सजाया था। जुबिन नौटियाल की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है आंखों की गुस्ताखियां।

0: सफर।
1: जुबिन नौटियाल की आवाज में आंखों की गुस्ताखियां फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार और संगीतकार थे विशाल मिश्रा। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: फिर से आपका स्वागत है बहुत बहुत चित्रलोक कार्यक्रम में।
1: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
2: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
2: चलो चले मितवा।
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
2: आजा शाम होने आई।
0: चित्रलोक कार्यक्रम में आपको आप सुनवा रहे हैं सत्यमेव जयते 2 फिल्म का गाना। ज़ारा अस्खान और जास मानक की आवाज़ें हैं। गीतकार हैं तनिष्क बख्शी।

सत्यमेव जयते टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों में उदारता, सहानुभूति, मदद और निस्वार्थ भाव से सेवा की भावना को मजबूत करना, बढ़ावा देना है। ये दिन रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े उन लोगों को के सम्मान को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और संकट के समय बिना किसी भेदभाव के लोगों की सहायता करते हैं। सभी के लिए ये दिन मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने का भी संदेश देता है। लोगों को चाहिए कि जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आएं, रक्तदान के प्रति जागरूक हों और संकट के समय एक दूसरे का सहारा बनें। कई बार किसी के लिए हमारी छोटी सी मदद, छोटी सी सहायता बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। चित्रलोक कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं ये। ये धड़क टू फिल्म का गीत है।

0: श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल की आवाजों में रश्मि बिराग का लिखा गीत आप सुन रहे थे। धड़क टू फिल्म का नाम था। आप सुन रहे हैं इस समय चित्रलोक कार्यक्रम।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
5: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे।
4: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
5: चलो चले मितवा।
4: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
6: चलते चलते
4: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
5: आजा शाम होने आई।
0: आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। 9:15 और समय है एक और ब्रेक का।

ब्रेक के बाद फिर स्वागत। अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाजों में आर राजकुमार फिल्म का ये गीत।

आर राजकुमार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की थीं। गीतकार थे नीलेश मिश्रा और स्वानंद किरकिरे, दोनों ने इस गीत को मिलकर लिखा। आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम इस समय। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 8 मई से मनाया जाता है। ये सप्ताह सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। लोगों को चाहिए कि वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें, हेलमेट सीट बेल्ट का उपयोग करें और ट्रैफिक संकेतों का पालन करें। पैदल चलते हुए इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी ना चलाना और लाल बत्ती पर रुक जाना, इन सभी बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। कई बार लोग ये कहते हैं और सोचते हैं कि घर तो पास ही है, लेकिन दुर्घटनाएं दूरी देख कर नहीं होते, इसलिए ध्यान अति आवश्यक है। आप कहीं भी रहें और सुनते हैं ये।

0: चित्रा और स्वानंद किरकिरे की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे स्वानंद किरकिरे और संगीतकार थे शांतनु मोइत्रा। परिणीता फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना।
1: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
2: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
2: चलो चले मितवा।
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए। विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड।

ऋत्विक तराशिलकर और साथियों की आवाजों में मलाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार, आप स्वस्थ और समृद्ध रहिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफ।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया।
1: बुजुर्गों ने

0: धन्यवाद।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही नाइंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े कारनामे करेगा। सन 1950, प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले गई। वो बन गए प्रोडक्शन मैनेजर। बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968 प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।

हसीना मान जाएगी शशि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए धाक जम गई। हसीना मान जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे, जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान को साथ मिलकर उन्होंने बनाई फिल्म मेला।

प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी, और प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाते रहे। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे, लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972 में वो लेकर आए समाज।

इसी साल उनकी फिल्म आई आन बान। आखिरकार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म देने वाले एक बेहद लंबे कद के दुबले पतले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम शुरू किया। सन 1973 20 मई का दिन फिल्म जंजीर रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले

0: लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ। मतलब का बात बोलू साहब।

0: जिंदगी।
1: आज इतने बरस बाद भी फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसने एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने अगले 15 वर्षों में अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाई। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरे। सन 1976, खून पसीना।
2: अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे।

0: सन 1981 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर। एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
1: सिकंदर का मैं आऊं विशाल। पंडित जी शुरू कीजिए।
2: मंगलम भगवान
1: अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूँ।
2: वस्त्र कंधे पर रख
1: सिकंदर। सिकंदर क्या मत की कुछ मेरे यार जरा सी झड़प हो गई।
3: नहीं बताती हूँ। दिला मुझे उठा कर लिया था। सिकंदर मुझे बचा कर यहाँ ले आया। अगर सिकंदर नहीं होता तो मैं भी तुम्हें भी होता।
1: बस बस करो मेम साहब। क्या काम नहीं तेरे मेम साहब जिससे तू
3: नहीं। विशाल मुझे तो सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब को करता।
1: नहीं
3: सिकंदर आज मुझे कह लेने दो। आज मुझे कह लेने दो विशाल। सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल ही दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया
1: सिकंदर। ये तुमने क्या किया?
0: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
3: तुम?
4: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा। जानती हो लावारिस क्या होता है?
5: मेम साहब लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए। मौत भी कमबख्त उसे पूरा नहीं खाती। अधमरा छोड़ जाती तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे मत कसना। पर गुनाह के पीछे गुनाहगार कौन है ये कोई नहीं जानता।
0: प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थीं। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा।

0: जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों। एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया, एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल। सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म शराबी। कहते हैं कि जब सूरज बहुत तेज चमके उसके बाद शाम नजदीक होती है। एक के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989 प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चारों खाने चित हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया। एक वक्त था जो पीछे छूट गया, एक चमक थी जो मध्यम पड़ गई, एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश मेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई।
1: वादा

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास। वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़े चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय रेडियो स्टेशन विविध भारती। कहते हैं वक्त के साथ चलना ही जिंदगी की पहचान है, जो ठहर गया वो किस्सों में, जो बढ़ गया वही नई उड़ान है। पुराने कार्यक्रमों की अपनी एक अलग ही खुशबू होती है, यादों से भरी, अपनापन लिए हुए, और नए कार्यक्रम अपने साथ लाते हैं ताजगी, नए विचार और एक नई ऊर्जा। जिंदगी की तरह रेडियो भी हमेशा गतिमान रहता है, क्योंकि बदलाव ही वो धड़कन है जो हर चीज को जीवंत बनाए रखती है। इन्हीं खूबसूरत बदलावों के साथ हमारी रेडियो पर कुछ नए कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है, वहीं कुछ पसंदीदा कार्यक्रम अब नए समय पर आपसे मुलाकात कर रहे हैं। तो आज के इस खास फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश में हम जानना चाहेंगे आपकी राय, क्या ये बदलाव आपको पसंद आ रहे हैं, कौन सा नया कार्यक्रम दिल को छू रहा है और बदले हुए समय आपकी दिनचर्या में कितने फिट बैठ रहे हैं। तो आइए अपनी बात खुलकर कहिए अपनी आज की हेलो फरमाइश कार्यक्रम की साथी यानी कि मैं नेहा आगरकर देसाई के साथ, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारे हर कार्यक्रम की असली जान है। और आइए अब देखते हैं पहला कॉल किसका है। हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब बात कर रहे हैं?
1: जी हम भोपाल से बोल रहे हैं, राम गोपाल मालवीय।
0: भोपाल से गोपाल जी? जी गोपाल जी, बताइए आप क्या करते हैं?
1: हाँ, हमारा ये लॉन्ड्री का काम है, ये काम वाम करते हैं और एफएम सुनते ही रहते हैं हम तो, सुबह से लेके शाम तक आपके प्रोग्राम विविध भारती के।
0: अच्छा, तो आप बिल्कुल रेगुलर श्रोता है?
1: हाँ जी जी जी बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन फोन पहली बार लगाया है।
0: ओहो क्या बात है, पहली बार आपका फोन लग रहा है, खुशी जरूर हो रही होगी।
1: हाँ जी बहुत खुशी हो रही है।
0: अच्छा ये बताइए कि विविध भारती के कुछ कार्यक्रमों में अब बदलाव आए हैं, तो आप उन बदलावों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे लगे आपको ये बदलाव?
1: बिल्कुल अच्छे लगे हैं, जो वो अपना मन चाहेगी, जो आपने पत्रों पे आधारित प्रोग्राम शुरू किए हैं संडे और सैटरडे को 3 बजे से, वो प्रोग्राम अच्छे, और हमने 2 पत्र डाल दिए, इतना एक तो शामिल हो ही जाएंगे हमारे।
0: ओहो हो, हमें भी इंतजार है आपके खतों का और आपकी बातों का। तो अच्छा, मतलब इस बार आपका कॉल भी लग गया है और अब आपको उम्मीद है कि पत्र भी शामिल हो ही जाएगा।
1: हाँ जी जी,
0: यानी चित भी आपकी और पट भी आपकी।
1: हाँ जी बिल्कुल, एक छोटा सा बदलाव आपने किया है, ठीक है, लेकिन मंगलवार को वो जो नया प्रोग्राम शुरू आने वाला है, तो ये हेलो फरमाइश एक ही दिन आएगा, सिर्फ गुरुवार?
0: जी एक ही दिन आएगा।
1: अच्छा,
0: और आप उसको रिपीट में भी सुन सकते हैं अगले दिन, जैसे गुरुवार को आप नया प्रोग्राम सुनेंगे और शुक्रवार को वही कार्यक्रम सुबह 10 बजे सुन सकेंगे, तो रिपीट में भी आप इसे सुन सकेंगे। जरा अपने दिल को थाम के रखिए, क्योंकि हम नए कार्यक्रम आपसे परिचित करवाने वाले हैं, तो और हमें बिल्कुल उम्मीद है कि इन कार्यक्रमों के साथ भी आपको उतना ही मजा आएगा जितना हेलो फरमाइश के साथ आ रहा है।
1: जी जी।
0: चलिए ये बताइए गोपाल जी, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: संगीत फिल्म का एक गाना है इसमें, सुनो ए हसीनो।
0: सुनो ए हसीनो संगीत फिल्म से, और फिलहाल आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन जनाब बात कर रहे हैं?
1: ग्राम नंगला काचियान पोस्ट औरंगाबाद जिला काशगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह शाक्य बात कर रहा हूँ। और मैम कैसे हैं?
0: जी मैम।

0: बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप क्या करते हैं, कैसे हैं?
1: बढ़िया है। खेती बाड़ी करता हूँ और आकाशवाणी परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
0: जी बिल्कुल, आपकी दुआ से सब सही है, सब सलामत है।
1: जी सर, सभी को रहना भी चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, और आपके कार्यक्रम जितने भी आते हैं वो सुनना चाहिए, जिससे कि वैज्ञानिक भरे हुए भी हैं और मनोरंजन भी है, सेहत
0: जी
1: भी है।
0: क्या बात है, इतनी सारी तारीफें आपने की हैं। अब मैं कुछ बातें आपसे पूछ लूं। देखिए, आपकी बातों से तो ये समझ आ रहा है कि आप हमारे कार्यक्रम बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। अब ये बताइए कि जो नए बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं?
1: बढ़िया जी, नए नए प्रोग्राम जब चलते हैं तो अच्छा भी रहता है, क्योंकि समय का परिवर्तन जरूरी होता है ना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी जो नए कार्यक्रम शुरू हुए हैं या फिर जिन कार्यक्रमों के बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं? आपके जिन कार्यक्रमों के समय में बदलाव हुआ है वो आपके टाइम के हिसाब से फिट हो रहे हैं?
1: जी, बिल्कुल
0: क्या बात है, तो खेती बाड़ी करते हुए आप हमारे कार्यक्रम सुना करते हैं।
1: जी, कहीं पर भी सुन सकते हैं, खेत पर भी, घर पर भी, क्योंकि अब मोबाइल ऐप पर जो चालू हुआ है उसके माध्यम से कहीं भी सुना जा सकता है।
0: जी बिल्कुल, न्यूज ऑन AIR ऐप जो है उसके जरिए फोन पर भी सुना जा सकता है। चलिए बताइए, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म है गिरफ्तार, धूप में निकला न करो रूप की रानी। बिल्कुल,
0: गर्मी के हिसाब से गीत को पसंद किया है क्या आपने?
1: इसी की वजह से सुनना चाहता हूँ। जैसे मौसम चेंज भी हो रहा है ना, इसलिए, और थोड़ा पानी वगैरह साथ लेकर रखें
0: ये तो
1: जहाँ भी
0: बिल्कुल
1: जाएं।
0: सही है। मेरा तो ये मानना है कि सिर्फ रूप की रानी क्यों, बल्कि रूप के राजा को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। यानी कि इन धूप
1: जी,
0: के कड़ी गर्मी के दिनों में किसी को भी बिना वजह या फिर जब तक जरूरी ना हो बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना?
1: जी,
0: बिल्कुल, चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, हमारा नाम है चंद्र प्रकाश पात्र
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: सियारामपुर ग्राम पालीगंज पटना बिहार।
0: क्या बात। तो चंद्र प्रकाश जी बताइए, क्या करते हैं आप?
1: हम तो अभी अप्लाई कर रहे हैं ऑफिसर के ड्यूटी में।
0: ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किस क्षेत्र में?
1: जी, RBI के हम CFC रंगराजन, हमारा रुपया है गवर्नर, तो उसी में हम अप्लाई कर रहे, तो अभी ज्वाइन न किए हैं, सामान वन मंगा लिए हैं और लेंगे आज कल।
0: अच्छा, तो मतलब आपका सिलेक्शन हो गया है।
1: जी मैम,
0: अरे वाह, क्या बात है। विविध भारती परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी
0: चलिए ये बताइए, आज कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: जी हमको सुना है अखियों की झरोखों से फिल्म के हेमलता की आवाज़ें।
0: चलिए चंद्र प्रकाश जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्ते मैम, मेरा नाम रामेश्वर रैकवार है। मैं ग्राम भगवता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। मैडम जी, खेती
0: रामेश्वर जी, बताइए क्या करते हैं आप?
1: का काम निपट गया है। अषाढ़
0: खेती का काम हो चुका है तो फिर अब क्या विचार है आपका आगे?
1: आएगा ना मैडम, जून के महीने में, तो उसमें बुवाई होगी अगली फसल की। मैडम
0: कौन सी फसलों की बुआई करेंगे आप?
1: जी, ये उड़दा और मूंग।
0: क्या बात है, तो इसकी पूर्व तैयारी भी कुछ लगती होगी?
1: अभी तो ऐसे खेत खाली पड़े हैं, अभी नहीं है कुछ। नहीं
0: तो फिर अभी आप बिल्कुल फ्री हैं विविध भारती के सारे कार्यक्रम सुनने के लिए।
1: जी मैडम, मैं सुनता हूँ सभी। जो दोपहर में आता है कमेंट वाला, वो भी सुनते हैं, और छाया गीत सुनते हैं, हवा महल भी सुनते हैं।
0: तो अब जो कमेंट वाला आता है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं? क्या बदलाव है जानते हैं आप?
1: जी मैडम, पहले गीत माला था, सुरीला सफर हो गया।
0: पर उसके क्या बदलाव आए हैं कार्यक्रम के अंतर्गत? ये तो आपने नाम का अंतर बताया, कार्यक्रम में क्या बदलाव आए हैं वो बताइए।
1: मैडम जी, कार्यक्रम में तो काफी बदलाव है, थोड़ी जानकारी मुझे कम है।
0: चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको एक बार बता देते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे ये पहेली पूछी, बस इसी तरह की एक इबारत यानी कि एक टेक्स्ट उस कार्यक्रम में आता है और उस टेक्स्ट या इबारत में कुछ शब्द ऐसे शामिल होते हैं जिनके ऊपर कुछ गीत बजने वाले होते हैं, उन शब्दों से शुरू होने वाले या फिर उन शब्दों को लिए हुए कोई गीत, उस गीत के बीच में कोई शब्द आ सकता है, तो ऐसे गीतों की वो इबारत होती है और आपको पहचानना होता है कि कौन सा गीत बजने वाला है।
1: जी मैडम,
0: जी तो ये तो था यूं ही ताकि आपको भी और हमारे श्रोताओं को भी पता चल जाए, और हम तो जानना चाहते थे कि आपने उस कार्यक्रम को कितना समझा है। चलिए कोई बात नहीं, अभी कार्यक्रम नया नया है, 2-3 दिन ही हुए हैं, तो धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा और फिर आपके भी कमेंट्स उसमें आएंगे ऐसी हम आशा करते हैं।
1: जी मैडम,
0: अच्छा ये बताइए रामेश्वर जी, कौन सा गाना आज आप सुनना चाहेंगे?
1: मैडम जी, पड़ोसन फिल्म का है, चतुर नारकर के सिंगार।
0: तो चलिए रामेश्वर जी, आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: यक चतुर

जो आवाज लगाए चोटे कर दूंगा। तजम तकजम तकनम तकदम तत्तंगिर दक्तरिगिर तत्तजम तकजम तकनम तकदम तत्तंगिर दक्तरिगिर तत्तजरी तदन तजनु तजनु तजनी तदनी तजनु तत्त तरित दन।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं राजकुमार यादव बोल रहा हूँ, बड़ा गाँव जेलागोना मध्य प्रदेश से। किसान
0: क्या बात है राजकुमार जी, क्या करते हैं आप?
1: हूँ, खेती बाड़ी में व्यवसाय है मेरा
0: आपकी पसंद का
1: जी।
0: काम है या फिर आपके यहाँ पूर्वज जो आपके पिताजी होंगे, दादाजी होंगे, तो ऐसे करते आ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं?
1: जी मैम, वो जो हमारा बचपन से ही काम है खेती बाड़ी का,
0: अच्छा।
1: पहले से ही चलती आ रही है खेती बाड़ी। किसान ही है हमारे गांव में, सब किसान ही है
0: इसके अलावा और क्या
1: जी।
0: शौक है आपके?
1: हमारे तो एक विविध भारती रेडियो सुनना, और थोड़े बहुत समय मिल जाए तो खेती बाड़ी में हाथ बटा लेते हैं।
0: क्या बात है। तो जब आपका शौक है विविध भारती सुनना, तो चलिए आपसे कुछ सवाल जवाब कर लिए जाएं।
1: जी जी मैम,
0: तो बताइए, विविध भारती में जो कार्यक्रमों में बदलाव हुए हैं, वो आपको कैसे लग रहे हैं?
1: मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और पसंद भी आ रहे हैं मैम। आपकी आवाज भी हम सुनते रहते हैं प्रोग्राम में, है जो हेलो फरमाइश है, साथी सहेली है,
0: पसंद आता है आपको
1: उसकी।
0: कार्यक्रम?
1: जी जी मैम आता है।
0: क्या बात है। चलिए ये बताइए राजकुमार जी, कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे?
1: आज मुझे कच्चे धागे फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम। उसमें एक गीत है लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में, दिल का आना आया परदेसी हो गया, दिल परदेसी हो गया।
0: जी बिल्कुल। तो चलिए राजकुमार जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं शेर खान बोल रहा हूँ हैदराबाद से।
0: जी शेर खान जी, बताइए क्या करते हैं आप।
1: जी, मैं पहले तो सभी सुनने वाले भाई बहनों को, दोस्तों को आपको प्यार भरा सलाम कहता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ आपको सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे।
0: जी बिल्कुल, हम भी आपके लिए यही दुआ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नेहा जी, मैं वैसे तो रहने वाला महाराष्ट्र का हूँ और हैदराबाद आके कुछ 7-8 साल हो रहे हैं।
0: अच्छा।
1: पर मैं बता दूं कि मैं ब्लाइंड हूँ, दोनों आंखें नहीं है मेरी। 3 साल की उम्र में आंखें चली गई थी कैंसर की वजह से।
0: अच्छा,
1: और मैं विविध भारती को बचपन से सुनता हूँ।
0: अच्छा
1: जी हाँ, बचपन से सारा प्रोग्राम सुनता हूँ मैं। पहले भी जो प्रोग्राम आते थे, आज भी जो आते हैं, जो बदलाव हुआ है, बचपन से मेरा साथी है, जीवन साथी बना हुआ है रेडियो और विविध भारती।
0: क्या बात है। तो इन बदलावों के बारे में आपकी क्या विचार है, कैसे लग रहे हैं आपको ये बदलाव?
1: हाँ, बहुत अच्छा है। वक्त के साथ बदलाव भी जरूरी है और भी ज्यादा मजा आ रहा है और भी अच्छा लग रहा है कि आप जो है तो मोबाइल ऐप पे या किसी स्पेशल प्राइमरी चैनल से ये सुनने को मिलता है।
0: जी, तो ऐसा है कि समय के साथ हर चीज में बदलाव आते हैं, हर
1: जी
0: बात बदलती
1: जी जी
0: जाती है।
1: बदलाव आते हैं और बदलाव स्वीकार करना ही इंसान की एक अच्छी कामयाबी है।
0: जी बिल्कुल, स्वीकार
1: और
0: करना
1: मैं
0: जरूरी है।
1: यहाँ हैदराबाद में आके हमको 7-8 साल हो गए, तो यहाँ के रेडियो से ही मेरे कुछ दोस्त बने हैं, चैनल है, भाई बहन बने हैं। कॉल
0: बिल्कुल
1: लगना बोले तो
0: बिल्कुल।
1: बिल्कुल एक चांद को छू लेने जैसी कामयाबी है। और मैं भी इतने
0: ओ हो,
1: सालों से ट्राई कर रहा था, आज मेरा कॉल लग गया, बहुत खुशी हो रही है मुझे भी।
0: आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जब भी किसी श्रोता का पहली बार कॉल लगता है और उनकी जो खुशी होती है वो हमें सुनने को मिलती है, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है।
1: और मेरी गाने की फरमाइश है, फिल्म का नाम है हुकूमत, धर्मेंद्र साहब की फिल्म है, मोहम्मद अजीज, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में है गाना। ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा।
0: अच्छा, क्या आप गाते भी हैं?
1: नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं।
0: तो फिर गुनगुना दीजिए थोड़ा सा।
1: ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा, प्यार रहेगा।
0: क्या बात है शेर खान जी, बहुत अच्छा गाया आपने। और हम उम्मीद करते
1: जी
0: हैं कि आपका यानी कि श्रोता और विविध भारती परिवार का प्यार भी हमेशा यूं ही बना रहे। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, ना जुल्म ना जालिम का अधिकार।

0: हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश।
0: क्या बात है? जिस तरह से मैंने बोला उसी तरह से उधर से भी रिस्पांस आ रहा है, बिल्कुल जोश के साथ। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम को नमस्कार।
0: बिल्कुल, आपको भी मेरा नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम, मैं उदयपुर वारियों की घाटी से सत्यनारायण वारी बोल रहा हूँ। मैडम
0: बताइए, क्या करते हैं आप?
1: मैडम, मैं ऑटो में सवारी घुमाने का, पर्यटक घुमाने का काम करता हूँ।
0: अरे वाह, उदयपुर है तो फिर तो घूमने घामने की बात तो होगी ही होगी।
1: जी बिल्कुल, लेक सिटी।
0: तो जब आप अपने पर्यटकों को घुमा रहे होते हैं तो क्या उन्हें जिस जगह ले जा रहे हैं उसकी जानकारी देते हैं या फिर सिर्फ गाड़ी चलाने का काम करते हैं?
1: नहीं मैडम, कोई पूछना चाहे तो हम उसकी जानकारी बिल्कुल देते हैं।
0: क्योंकि ऐसा कई बार हम भी अनुभव करते हैं कि हम किसी नए शहर में जाते हैं तो हमारे जो ऑटो चलाने वाले भैया होते हैं वही हमारे आधे गाइड बन जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, हम पूरी जानकारी जो मांगते हैं पूरी जानकारी देते हैं मैडम। उदयपुर में जो भी है घूमने की जगह उनको बता देते हैं ये, जैसे उदयपुर में सिटी प्लेस है, जगदीश टेम्पल है, फतेह सागर है, सुकन्या सर्कल है, तेलियों की बाड़ी है।
0: क्या बात है। अच्छा ये बताइए, उदयपुर में किस मौसम में आना चाहिए?
1: उदयपुर में मैडम खासकर तो दीपावली के दिनों के बाद शुरुआत ज्यादा आती है, पर्यटक ज्यादा आते हैं, विशेषकर गुजरात से, मुंबई से,
0: यानी कि ठंड के दिनों में।
1: जी बिल्कुल, दीपावली की छुट्टियां पड़ती है मैडम, उस टाइम ज्यादा टूरिस्ट आता है।
0: अच्छा अच्छा तो विविध भारती सुनने का समय आप कब निकालते हैं? ऑटो चलाते समय सुनते हैं?
1: मैडम बिल्कुल चलता रहता विविध भारती हमारा उस समय।
0: तो क्या कभी आपके किसी यात्री ने ऐसा कहा है कि अरे यार क्या आप ये रेडियो सुनते रहते हैं, थोड़ा आवाज कम करिए या फिर ऐसे कुछ?
1: नहीं मैडम, हमारा बिल्कुल ही मध्यम आवाज से चलाते मैडम, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बिल्कुल पंच सुने और सवारी सुन सके, बाहर तक आवाज नहीं जाती, इतनी वॉल्यूम रखते हैं मैडम।
0: जी ये बिल्कुल सही बात है,
1: और हमको विविध भारती कभी डिस्टर्ब नहीं करता हमारे काम के अलावा।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा ये बताइए कि कौन सा गाना आज आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है पति पत्नी और वो।
0: जी और
1: गाने के बोल है ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, क्योंकि उदयपुर में अभी मैडम गर्मी बहुत चल रही है।
0: ठंडे ठंडे पानी की आपने बात कर दी है, उदयपुर क्या पूरे भारत भर में इन दिनों अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है।
1: और मैडम इस गाने को हमारे साथ में हमारी वाइफ शांति वारी भी सुनना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो आपको और हमारी सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नेहा जी नमस्ते।
0: नमस्ते। आपने आवाज से पहचाना है या फिर आपको पहले से पता चल गया था कौन है आज?
1: जी, पता चल गया।
0: बताइए कौन बात कर रहे हैं?
1: धर्मपुरी जिला धार मध्य प्रदेश से मोहम्मद तस्लीम से बोल रहा हूँ नेहा जी।
0: जी बताइए क्या करते हैं आप?
1: मेरी फ्लोर मैंने धर्मपुर में बाईपास चौराहे पे और यहाँ से मांडो 23 किलोमीटर है। आइए नेहा जी आप बारिश में।
0: जी मैं मांडव घूम चुकी हूँ। जी जी जब हम स्कूल में थे तब हमें हमारी स्कूल की तरफ से एक ट्रिप गई थी जब हम मांडव महेश्वर मंडलेश्वर तीनों एक साथ घूमे थे।
1: जी
0: जी तस्लीम जी ये बताइए आप हमारे विविध भारती के रेगुलर श्रोता हैं
1: जी कम से कम मैं 35-40 साल से सुन रहा हूँ
0: तो फिर
1: प्रोग्राम।
0: आपको इन 35-40 सालों में कार्यक्रमों में जो बदलाव हुए वो भी आपको भली भांति पता होंगे।
1: जी। और ये अपना SMS के बहाने यूएस के तराने तो बहुत पसंदीदा प्रोग्राम था हमारा।
0: ओ ऐसा। तो अभी जो कार्यक्रमों में बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं?
1: वो अभी मैडम बराबर सुन नहीं पा रहा हूँ। अभी 2-3 दिन के लगभग हुए हैं।
0: जी
1: बराबर मालूम भी नहीं है। वो ज्ञापन सुना करते थे वो सुनते रहेंगे तो वो मालूम पड़ जाएंगे सर।
0: जी मैं आपको बता दूं कि यदि आपको पूरी तरह जानकारी नहीं है तो सुबह 6:30 बजे और शाम में 6:30 बजे इन दोनों समय पर आप झरोखा सुन सकते हैं जिसके अंतर्गत किस दिन कौन सा कार्यक्रम कितने बजे जाने वाला है उसकी पूरी जानकारी होती है।
1: जी नहीं मैं सुनता हूँ मैम। शुरू सुबह 8 बजे से तो रात तक की फ्लोर में चला करती है तो 9-10 भी बज जाती है। गीत तक सुना करता हूँ मैं।
0: क्या बात है। ये बताइए तस्लीम जी कौन सा गाना आज आप सुनना चाहेंगे?
1: 2 अक्टूबर फिल्म में गीत है साधना सरगम जी और उदित नारायण जी की आवाज में चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा।
0: जी बिल्कुल। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये।

0: हेलो फरमाइश।
1: पान बीड़ी सिगरेट तम्बाकू ना शराब, हमको तो नशा है। हेलो फरमाइश प्रोग्राम का जनाब।
0: क्या बात है, नमस्कार नमस्कार।
1: यार
0: मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी बात अमरीश पुरी साहब से हो रही है।
1: आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: ओ हो, डायलॉग पे
1: सतीश
0: डायलॉग, क्या बात है।
1: गुलियानी दिलकुशा मार्केट जलंधर, और रहता है अपने दोस्तों के दिल के अंदर। हर टाइम आपको याद करते हैं, आपकी मिलने की फरियाद करते हैं।
0: क्या
1: जब
0: बात
1: दिल
0: है
1: नहीं
0: सतीश
1: लगता तो
0: जी।
1: आपको फोन लगाते हैं।
0: ओ हो, क्या बात है क्या बात है। आपकी ये आगाज करने का तरीका बड़ा अच्छा लगा हमें।
1: मैडम जी सब कुछ आपसे सीखा जी आपने, हमें क्या आता है, हम तो बिल्कुल अनजान है। जो
0: अरे
1: सीखा है रेडियो से, आकाशवाणी से सीखा है जी। कहते
0: जी बिल्कुल सही बात है, रेडियो पर इतनी अच्छी अच्छी बातें आती हैं, विविध भारती पर इतने अच्छे
1: हैं जी
0: अच्छे कार्यक्रम होते हैं।
1: अपने तो दिल में ही रहते हैं, बस गैरों को याद किया जाता है। काश मिल जाए आप जैसे अच्छे एंकर दोस्त जिन्हें अक्सर हेलो फरमाइश में याद किया जाता है।
0: क्या बात है, आपने तो लड़ियां लगा दी हैं शायरियों की, डायलॉग्स की। लगता है आज बातें नहीं होंगी, डायलॉग्स ही होंगे।
1: डायलॉग ही चलेगा जी।
0: ये बताइए सतीश जी, अपने यारों दोस्तों के दिल में तो आप रहते हैं, मगर भौतिक
1: जी
0: तौर पर कहाँ रहते हैं?
1: मैं जलंधर दिलकुशा मार्केट, दवाइयों वाली मार्केट है जी हमारी,
0: अच्छा, जी, और क्या
1: उसमें
0: करते
1: हमारी
0: हैं आप?
1: शॉप है जी। मैडम अभी तो तंग ही कर रहे हैं घर वालों को, फ्री
0: तंग करते हैं घर वालों को?
1: है जी, रिटायर
0: अच्छा
1: हो
0: अच्छा
1: गया ना अब।
0: ओहो, अरे आपकी आवाज से लगता नहीं कि आप
1: दिल
0: रिटायर हो गए होंगे।
1: कहते दिल होना चाहिए था जवान उम्र की रखिया। मैडम सैर करते हैं 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, और हर टाइम खुश रहते हैं। मैडम गीत सुनेंगे, राजकुमार फिल्म है जी वो, देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है।
0: ओहो क्या बात है, क्या आप गीत गाते भी हैं?
1: हाँ जी हाँ जी। मैडम पंजाबी में सुना दूँ, हिंदी वाला
0: कोई भी गीत सुना दीजिए।
1: पंजाबी में सुनाता हूँ आपको।
0: बिल्कुल
1: ठंडा हो जाऊ चूल्हा चौंका, वेड़ा सुनम सुना, दस जा किंज दाल बनावा, किंज आटा गुन्ना, उन्हें नहीं याद आऊगी। ओए होए मैं कह नहीं जदों तुर जाएंगी, वो पेके जान वाली है। सभी दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि कहीं जा रहे हो तो गाड़ी, मोबाइल में फोन आ जाता है तो गाड़ी जरूर साइड पे लगाए,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल सही।
1: जानवरों को दाना डाले, गर्मी है अपने कोठों पे वो कटोरे रखे, उनके आप अपने पानी और दाना जरूर डाले।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा संदेश
1: जी
0: आपने दिया है। चलिए सतीश जी, फिर आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो।

0: हेलो फरमाइश
1: जी आदाब मैम, कैसी हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: जी आपकी दुआएं हैं और अल्लाह का करम है, हम भी ठीक हैं। मैम मैं फहीम बोल रहा हूँ, श्रीनगर कश्मीर से।
0: जी फहीम जी बताइए, क्या करते हैं आप?
1: जी मैं एक्चुअली टूरिस्ट गाइड हूँ, टूरिस्ट से रिलेटेड काम करता हूँ, गाइडिंग करता हूँ। अभी मैं डल झील के अंदर हूँ, कस्टमर के साथ
0: ओह,
1: गाइडिंग कर रहा हूँ।
0: आप कस्टमर के साथ हैं और आपने फोन भी लगा लिया?
1: हाँ जी हाँ जी, मुझे आपसे बात करने हुए बहुत टाइम हो गया, तो सोचा आज विविध भारती के हेल्प फरमाइश प्रोग्राम में आपसे बात कर लूँ और अपनी पसंद के नगमे यहाँ डल झील के अंदर शिकारे में बैठ के सुन लूँ।
0: क्या बात है, मगर आपके जो टूरिस्ट हैं वो इस पर कोई नाराजगी तो नहीं जताएंगे?
1: नहीं, वो अभी फोटोज के साथ बिजी है, उन्होंने कश्मीरी ड्रेस में वो फोटोज कैप्चर कर रहे हैं अभी। जिस तरह शमी कपूर शर्मिला टैगोर ने वो नगमा जलवे के अंदर शूट किया था, जान सा रोशन चेहरा, तो वैसे ही उन्होंने भी ड्रेस पहने हैं, कश्मीरी ड्रेस और ज्वेलरी के साथ वो अभी फोटोज कैप्चर कर रहे हैं डल झील के अंदर शिकारे में बैठ के। तो मुझे
0: क्या
1: थोड़ा
0: बात
1: सा
0: है,
1: टाइम मिला आपसे बात करने का।
0: तो आपने मौके पे चौका मार लिया।
1: हाँ जी हाँ जी
0: अच्छा ये बताइए, कौन कौन सी भाषाओं में आप गाइडिंग करते हैं?
1: जी सबसे पहले देश की भाषाएं हमारी हिंदी है और
0: जी
1: मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, कर्नाटका है, थोड़ा सा ये महाराष्ट्र भी आता है,
0: अच्छा आप
1: तो कुल
0: इतनी
1: मिला
0: सारी
1: के बहुत
0: भाषाएं
1: सारी
0: बोल
1: भाषा।
0: लेते हैं,
1: हाँ जी हाँ जी
0: बड़ी अच्छी बात है। ये बताइए, आप जो काम करते हैं ये गाइड का, तो आपको किस किस तरह के अलग अलग

0: से बहुत अच्छे खुशी होकर वापस जा रहे हैं। एक कस्टमर आया था वो केरला से था, काफी अच्छा रहा है उनके साथ। उनके साथ इतना अच्छे से हुआ कि वो जब नेक्स्ट टाइम आए तो वो डायरेक्ट हमारे घर ही आए थे।
1: क्या बात है,
0: अच्छा रहा था।
1: फहीम जी से अच्छी खासी बात चल रही थी मगर शायद उनका कॉल कट हो गया बीच में से और हमारी बातचीत पूरी नहीं हो पाई, इसके लिए हमें बड़ा खेद है। बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी लेकिन हमारे जो साथी होते हैं उन तक ये कौन सा गीत फहीम जी सुनना चाहते थे इसकी जानकारी उन्हें मिल चुकी है। तो आइए फहीम जी की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं इज्जत फिल्म का ये गीत, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं।

श्रोताओं, आज के इस फोन इन कार्यक्रम में आपने जिस उत्साह से अपनी राय हमारे साथ साझा की, उसके लिए हम दिल से आभारी हैं। आपकी बातें, आपके सुझाव और आपके अनुभव ही हमें बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं, बदलाव से ही निखरती है हर एक कहानी, आपके साथ से ही मिलती है हमें नई रवानी। उम्मीद है कि हमारे नए कार्यक्रम और बदले हुए समय आपके

0: साथ यूं ही जुड़े रहेंगे और आपके हर दिन को और भी खास बनाएंगे। साथ ही हम अपने साथियों को बताते चले कि अब आपसे अगली मुलाकात होगी अगले सोमवार को सुबह 11 बजे इसी कार्यक्रम यानी कि हेलो फरमाइश में, विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1, जहां हम रिकॉर्ड करेंगे आपसे की हुई बातें। हमारा टेलीफोन नंबर है 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड 022। हमारा दूसरा नंबर है 28670288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर सुने 4002-4662, मुंबई का एसटीडी कोड 022। हमारा दूसरा नंबर 2687-0288, मुंबई का एसटीडी कोड 022। इस कार्यक्रम का प्रसारण आप सुन सकेंगे गुरुवार को दिन में 4 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार को दिन में 10 बजे। आपसे विनम्र निवेदन है कि जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, वे कृपया अब 2 माह के बाद ही कॉल मिलाएं, ताकि अन्य श्रोताओं को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सके। और आपको बता दें, इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रहा सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। इसी के साथ आज के इस हेलो फरमाइश कार्यक्रम से दीजिए इजाजत अपनी दोस्त नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। कार्यक्रम की शुरुआत हरिहरन की आवाज से। शब्दकार मुस्तार सिद्दीकी, संगीत हरिहरन का और एल्बम का नाम लविंगली योर्स।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: अली मोरे अंगना इस एल्बम का गाना, शुभा मुद्गल की आवाज से इन्हीं का लिखा हुआ गीत संगीत जवाहर वत्तल का।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं, और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको तो आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: ये है अभिजीत सावंत की आवाज, समीर के बोल, हरदीप सिद्धू और प्रेम पाल हंस का संगीत है।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।

0: पंकज उधास की आवाज़ आपने सुनी, शब्दकार जफर गोरखपुरी, संगीत पंकज उधास का, एल्बम लाइफ स्टोरी।
1: रंग तरंग

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश अदनान सामी की आवाज़ मकबूल ख्वाजा के बोल संगीत अदनान सामी का एल्बम किसी दिन।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
0: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
0: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
0: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
0: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
0: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं
2: जी,
0: यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
0: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
2: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
0: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
2: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
0: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
2: जी,
0: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
2: जी।
0: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
2: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
0: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
2: जी,
0: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ये, यानी माउना केया
2: जी।
0: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
2: जी।
0: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
2: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
0: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
2: जी।
0: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
2: जी। समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग है जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
0: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
2: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहां पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है, सामान्य स्थिति में हम वहां कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
0: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
2: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
0: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमूर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन कीर्तन कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सॉनेट शैली में लिखे गए हैं। सॉनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड युष्कल बंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एम गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
2: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कविंद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजादपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: আমাদের শান্তি নিকেতন, আমাদের
2: শান্তি। সন 1901 में শান্তি নিকেতন आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन

0: आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
0: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्यपुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
2: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
0: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
2: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूं, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
0: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रिसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमरीका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है। रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले, तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
3: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
4: यादों की महफिल इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मेरा नाम जोकर। इस फिल्म का गाना मन्ना डे की आवाज में, नीरज के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है।

क्या ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: बाजार है हप हप, खाता है कोड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक के करता नहीं बार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का डार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का डार है।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: ये है जीत फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना खुद्दार फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में बोल मजरू सुल्तानपुरी के संगीत है राजेश रोशन का।

0: सुनो, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ तुम ले चलोगे?
1: अजी कह के तो देखो।
0: जहाँ भीगा भीगा मौसम हो, हम हो और तुम हो।

भाभी फिल्म का ये गाना आपने सुना नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी के बोल और संगीत अनु मलिक का। इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

दोस्तों नमस्कार, सुरीला सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। दोस्तों, विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपने आज की इबारत यानी कि आज जो टेक्स्ट हमने भेजा है वो तो आपने पढ़ ही लिया है, और इससे संबंधित बहुत सारी बातें भी आपने हमें लिख भेजी है। उससे पता चलता है कि कितने शिद्दत से आपने उसे पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम आपको इसे पढ़ करके सुना देते हैं। शादियों का मौसम चल रहा है तो ख्याल आया कि ऐसे में सजना संवरना तो बनता है, अगर चंद्रहार मिल जाए तो सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा। शादी में जाएंगे तो दोस्तों के बीच खान पान और मौज मस्ती होगी, दुल्हा दुल्हन रस्म रिवाजों के बंधन में बंध जाएंगे, फिर दुल्हन अपनों की दुआएं लेकर इस घर आंगन से विदा होगी। आधी रात जब चंद्रमा आधा होगा तो बातें होंगी, दिन प्यार करने के होंगे और प्यार से बना एक प्यारा घर होगा जो उनकी नज़रों में सबसे न्यारा होगा। ये आज का जो टेक्स्ट है हमने प्रेषित किया, आपने पढ़ा, और नहीं पढ़ा तो हमने आपको पढ़ के सुना दिया। और जिन शब्दों के गाने हमने शामिल किए उन पर थोड़ा सा हमने जोर भी दे करके पढ़ा है ताकि आपको समझ में आ जाए। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सुरीला सफ़र में एक बात तो है जो बांधे रखता है, और वो ये है कि आपका गाना बजे या ना बजे एक्साइटमेंट बरकरार रहती है, आपकी बातें भी हमें बांधे रखती है, और आज के गाने मुझे लगता है शादियों की नोकझोंक से भरे होंगे। एक साथी हमारी ये भी लिख रही है कि शहनाइयों की गूंज बता रही कि खुशियों ने दस्तक दे दी है, और ऐसे में अगर खनकती चूड़ियों के साथ माथे पर बिंदिया सज जाए तो महफिल में चार चांद लगना तय है। बारातियों के स्वागत में हंसी ठिठोली होगी, पकवानों की खुशबू से आंगन महकेगा, और फेरों के वक्त जब सात वचनों की गूंज होगी तो हर आंख में दुआओं का समंदर होगा। विदाई की उस घड़ी में बाबुल की लाडली जब नए सफर पर निकलेगी तो यादों का कारवां साथ होगा, फिर तारों भरी वो पहली रात होगी, मीठी बातों के सिलसिले होंगे।

और शुरू होगा एक ऐसा सफर जिसमें दो दिल मिलकर अपने सपनों का आशियाना सजाएंगे। जी हाँ, कुछ हद तक आपकी ये बातें ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी गाने जुड़ते चले जाएंगे। अब वो कौन से गाने हैं ये आपने, कुछ लोगों ने अनुमान लगा भी लिया है, तो चलिए सुनते हैं आपके और हमारे गानों के बीच कितना मेलजोल होता है। लेकिन इसी बीच हम आपसे कुछ बातें भी पूछना चाहते हैं कि जब आप किसी शादी समारोह में जाते हैं तो बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव वहाँ पर होते हैं, कुछ हंसी ठिठोली होती है, कुछ ऐसी शरारत हो जाती है जो ताउम्र हमें याद रहती है। तो आप किसी शादी समारोह में गए, कुछ ऐसी बात हो गई जो अनोखी लगती है या जिनको सालों बाद भी उस बात को याद करते हुए आपके मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है या हंसी आ जाती है या ठहाका लगाने पर मजबूर हो जाते हैं, ऐसा कोई अनुभव हो तो वो आप हमें लिख भेजिए। फिलहाल हम आपको सौतन फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। सावन कुमार का लिखा हुआ ये गाना है, संगीत किसका है ये आपको बताना है। हमने आपसे कहा था कि शादियों का मौसम चल रहा है तो ख्याल आया, सुनिए ख्याल।

इसके संगीतकार हैं उषा खन्ना। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि अरे वाह, एकदम ठीक शुरुआत। शादियों से पहले शादी का ख्याल तो आता ही है ना, तभी तो उसके बाद ही बात आगे बढ़ती है। लेकिन इसी के साथ एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि भाई शादियों का मौसम चल रहा है, तो ये अब शादी का ख्याल कहाँ से आया, चाय की बात कहाँ से आई, वो तो पहले ही हो चुकी है। जी हाँ, इन बातों को हमें एक डोर में बांधना होता है और इसीलिए इन शब्दों को जोड़ करके गाने बनाए जाते हैं, तो ऐसी बातें होती है। चलिए, एक साथी लिख रहे हैं कि शादी जैसे शुभ अवसर पर सजना संवरना उत्सव की भव्यता बढ़ाता है और सामाजिक मान्यताओं को मजबूत करता है। दुल्हन का श्रृंगार परिवार में लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है जो विवाह को पवित्र बनाती है। शादी में सजना संवरना भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है जो न केवल सौंदर्य बढ़ाता है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी बढ़ाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि शादी, दुल्हन, श्रृंगार, कपड़े, खासकर जेवर सिर्फ सजावट नहीं बल्कि परंपरा, संस्कृति और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होते हैं। निश्चित रूप से दुल्हन की शोभा बढ़ाते हैं और उसे सबसे अलग और खास लुक देते हैं। भारतीय शादियों में दुल्हन के लिए आवश्यक पारंपरिक जेवर होती है। गले में भारी और कलात्मक हार जैसे कुंदन, पोलकी या टेम्पल ज्वेलरी दुल्हन के मुख्य आकर्षण होते हैं। मांग टीका या माथा पट्टी माथे पर पहना जाता है जो चेहरे की सुंदरता को दोगुना कर देता है। लेकिन हमने आपसे ये कहा कि कहीं आप शादी में गए, वहां का कोई रोचक अनुभव हो तो वो हमसे साझा कीजिए। उसके बाद दो सवाल और हैं हमारे, तो वो भी हम आपसे पूछेंगे। अब हम अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है। ख्याल आया, और ख्याल क्या आया, ऐसे में सजना संवरना तो बनता है। चलिए, सौदागर फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही हैं, ये आप हमें बताइए।

अभिनेत्री पद्मा खन्ना पर फिल्माया गया ये गाना है। साथियों के कमेंट्स आने लग गए हैं कि शादी ब्याह में जब वो जाते हैं तो कौन सी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें हंसा देती है या मन को एक यूं कहते हैं खुशी से भर देती। तो एक साथी लिख रहे हैं कि मेरी शादी आखिरी लगन जुलाई में हुई थी, उस समय बाराती 2 दिन का प्रवास करता था, मूसलाधार बारिश में छाता पकड़ फेरे लिए थे, जो आज भी तस्वीर देखते हैं तो याद आता है बरसात में तुमसे मिले हम सनम। आज 38 बरस हो गए विवाह को, किंतु वो बरसात में फेरे लेना आज भी याद है। एक साथी लिख रहे कि उस समय शादी समारोह के भोजन में खाना परोसते थे, बूफे सिस्टम नहीं था, मुझे लाल कद्दू की साग पसंद नहीं है तो मैंने वो पहले खत्म कर दी। उन्हें लगा कि मुझे साग बहुत पसंद आई है और वो बार बार परोसते रहे और मैं जबरदस्ती खाती रही। पकवान लड्डू तो दूर ही रह गए, क्या करें, उस वक्त उम्र छोटी थी, समझ नहीं पाए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि शादी का मौसम चल रहा है, 1 मई 2026 को हमारे पड़ोसी के बेटे की शादी थी अजमेर में एक होटल के ग्राउंड में। बारात आ गई, दूल्हा स्टेज पर पहुंच गया, दुल्हन भी स्टेज पर पहुंच गई, वरमाला की रस्म कंप्लीट हुई थी कि अचानक तेज बारिश हो गई और घर के सदस्य और गेस्ट भी गीले हो गए। महिलाएं जो सच सवर के आई थी, तेज बारिश के कारण मेकअप खराब हो गया और मैं स्वयं

और धर्म पत्नी भी गीले हो गए। तो इस तरह से ये जो समारोह है थोड़ा सा गड़बड़ा गया। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि एक रिश्तेदार की शादी में स्टार्टर और कुछ खाने की चीज़ें देने वाले वेटर घूम रहे थे, सबको दे रहे थे। मेरे पास आकर एक प्लेट मुझे दी, मैंने उसे एक कोने में ले जाकर उसे ही खाने को कहा। साथ में ये भी कहा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आप सबको रात 12 बजे के बाद आपको खाना मिलेगा, तो आप पहले खा लो। वो मना करने लगा कि कोई देख लेगा। मैंने मेरी जिम्मेदारी पर उसे खाना खिला ही दिया। उनको ये बात बहुत अच्छी लगी और कहने लगे कि कोई भी ऐसा हमारे बारे में नहीं सोचता है। जी, आपकी ये सोच बहुत हमें भी पसंद आई कि आपने दूसरों के बारे में पहले सोचा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो टेक्स्ट है उसकी अगली लाइन पर थोड़ा सा गौर करते हैं। अगर चंद्र हार मिल जाए तो सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा। इसमें दो गाने छुपे हुए हैं। तो पहला जो गीत है यानी कि चंद्रहार वाला, वो ये है। लता जी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, साधना और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना है। फिल्म कौन सी है ये आप हमें बताइए।

ये जो गाना आपने सुना गबन फिल्म का ये गाना है। एक साथी लिखते हैं कि शादी ब्याह के बाद छिड़ते ही गहनों की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है, और उस पर कोई दुल्हन चंद्रहार पहन ले तो उसके सौंदर्य के आगे तो चांद भी शर्मा जाता है। एक हमारी साथी ने लिखा है कि शादी की एक बात बहुत ही मज़ेदार जो हम कभी नहीं भूलते, हमारे भाई की शादी से पहले जब लेडीज संगीत होता है तो उसमें हमें थोड़ी मस्ती सूझी और हम बीच में से उठ करके अपने छोटे भाई की जीन्स और शर्ट और एक कैप लगाकर आकर बैठ गए। बाद में जब सबकी नजर गई तो सब इतना हंसे और सब ने अपने साथ फोटो खिंचवाई और डांस भी किया। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि शादी का सीजन चल रहा है, अभी कुछ ही दिन पहले मैं शादी में गया था तो जहां भी जाता हूं सिर्फ परोसना चालू हो जाता हूं। ऐसे में दोस्तों को ज्यादा ज्यादा प्यार से खिलाना मुझे बहुत पसंद आता है। एक शादी में जब दोस्तों ने 10 गुलाब जामुन और 4 दोना रायता रख दिया, अब तो मुझे पीना होगा और खाना होगा, और सचमुच उन्होंने मुझे बहुत ही गहरा बना दिया। अब इसका अर्थ अंत में क्या था ये समझ में नहीं आया। इतनी बात समझ में आई कि आप सबको खिलाते थे, एक बार आप गए तो दूसरे दोस्तों ने आपको बहुत सारा खाना परोस दिया और कहा कि खाना ही पड़ेगा, तब आपको समझ में आया कि ज़्यादा खाना किसी को खिलाने से क्या होता है। चलिए, धन्यवाद आपका। अब हम अगली बात आपसे पूछना चाहते हैं कि जब हम या कोई भी बाराती बनकर जाते हैं तो हमारा व्यवहार कितना संयमित होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि जो बाराती आते हैं तो शादी ब्याह में वो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों की डिमांड करते हैं जो कि पूरी नहीं कर पाते हैं घराती, या फिर बहुत हुड़दंग करते हैं तो उससे भी व्यवधान आता है, या कोई असंयमित व्यवहार करते हैं तो भी शादी समारोह की शोभा जो है वो कम हो जाती है। तो किस तरह का व्यवहार बारातियों को करना चाहिए, कितना संयम रखना चाहिए, इस बारे में भी हम आपके विचार जानना चाहते हैं। अगला गाना, सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा, अर्धांगिनी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़, बजरू सुल्तानपुरी के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही हैं बताइए हमें।

अभिनेत्री मीना कुमारी पर फिल्माया गया गाना है। साथ ही हमारे लिखते हैं कि जिसे विवाह या परिणय सूत्र भी कहा जाता है, शादी ये मानव समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र स्तंभ है। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों, संस्कृतियों और विचारधाराओं का संगम है। भारतीय परिवेश में तो शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, जो इसकी गहराई और गंभीरता को दर्शाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आज मंजू जी बड़ी सहजता और सरलता से धीरे धीरे बात करते हुए इस शादी के सफर को पूरा कर रही है और हम सब बाराती बनकर इस शादी में जरूर शामिल हो रहे हैं। हाँ, कोई ढोलक बजाएगा, कोई गीत गाएगा, कोई दुआएं देगा, कोई मस्ती करेगा। अभी बात खत्म नहीं हुई है और ये बात और भी आगे बढ़ेगी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मेरी शादी को इसी महीने 28 मई को 40 साल पूरे हो जाएंगे। शादी शाम को 6:45 पर थी। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को बारात में नाचना था, किंतु मेरे बड़े भैया ने बारात को शॉर्टकट से ले जाकर मंडप में पहुंचा दी और कह रहे थे शादी का मुहूर्त निकल जाएगा और सब नाराज हो गए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि ये 80 के दशक की बात है। मेरे गांव में 2 जुड़वा बहनों की शादी थी। सब रीति रिवाज बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई। विदाई के समय में घर परिवार वाले रोने धोने लगे हुए थे और इसी गहमी में रिश्तेदारों ने दोनों कन्याओं की विदाई करवा दी। बारात अलग अलग गांव से आई थी। बाद में पता चला दोनों दुल्हनों के ससुराल में अदला बदली हो गई है। फिर आनंद फानन में उनके सही घर में उन्हें पहुंचाया गया। आज भी वो घटना याद करके वहां के जो निवासी है वो हंसने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बात आगे बढ़ती है कि दोस्तों के बीच जो हमने आपसे टेक्स्ट जो लिखा है उसके बारे में कि शादी में जाएंगे तो दोस्तों के बीच खान पान और मौज मस्ती होगी। तो इन्हीं बातों पर जो गाना है आपकी खातिर, इस फिल्म का गाना है। शैली शैलेंद्र की आवाज, बप्पी लाहिरी का संगीत, विनोद खन्ना, रेखा और साथियों पर फिल्माया गया ये गाना है। आवाज किसकी है ये आपको पहचानना है।

तो दोस्तों की बातें हो गई, एक हमारे साथी की बात अब आपको पढ़ के सुनाते हैं। लिखते हैं कि बारात का उद्देश्य केवल खाना पीना और नाचना नहीं है, बल्कि एक नए रिश्ते की गवाही देना है। रस्मों के दौरान शांति बनाए रखना और वधु पक्ष की भावनाओं को समझना जरूरी है, विशेषकर विदाई के समय। जब एक परिवार अपनी बेटी को विदा कर रहा होता है, बारातियों का व्यवहार अत्यंत संवेदनशील और धैर्यपूर्ण होना चाहिए। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आपका व्यवहार ही आपका परिचय होता है, ये बात हर बाराती को ध्यान में रखना चाहिए। एक साथी ने लिखा है कि हमारे यहाँ दूल्हे का कान पकड़ने की रस्म होती है, जिसमें 7 फेरों के बाद दुल्हन का भाई दूल्हे का कान पकड़ के रखता है और जब तक उसका नेक नहीं मिलता तब तक पकड़ कर रखता है। हम सब जब भी मेरे भाई की शादी की सीढ़ी देखते हैं तो यह सब रस्में देख कर बहुत ही हंसी आती है। एक साथी लिखते हैं कि 11 मार्च 1992 गंगानगर जिला संगरिया में रात 10 बजे ठीक खाने के समय ऐसा तूफान आया कि सब कुछ उड़ा के ले गया, शादी का मजा किरकिरा हो गया। एक साथी लिखते हैं कि दीदी आपका एक सवाल बहुत अच्छा है, हाल ही में अपने भतीजे की शादी में गई थी, लड़की वालों ने जूती चुराई की रस्म में मुंह खोलकर पैसे मांगे, जो होना नहीं चाहिए। रस्मों को तोड़ मरोड़ कर अपनी मांग पूरी करना ये गलत बात है। जूते चुराई में बहुत झगड़ा और झंझट हुआ था। तो भाई शादी ब्याह का जो कार्य होता है सबके लिए एक अत्यंत शुभ और खुशी का मौका होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, दूल्हा दुल्हन रस्मों रिवाजों के बंधन में बंध जाते हैं, ये हमारी बात है, टेक्स्ट में लिखी हुई बात। चलिए इसी पर एक गाना सुनवाते हैं, मोम की गुड़िया। इस फिल्म का गाना लता जी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अभिनेत्री कौन है आप बताइए।

अभिनेत्री तनुजा पर फिल्माया गया एक ये गाना आपने सुना। एक साथी लिखते हैं, जिस पिता की बेटी पराया घर जाने वाली है उस पिता को बहुत दर्द होता है क्योंकि उसने फूलों की तरह उसे प्यार किया है। उस पिता ने अपने जीवन भर की कमाई अपनी बेटी के दहेज में दे दी है, फिर हम बारात लेकर जाते हैं। एक मर्यादा, सहनशीलता और अनुशासन ढंग से हमें बारात में जाना चाहिए और दोनों परिवार और प्रेम और स्नेह का आशीर्वाद देना चाहिए। यहाँ अभी अगला जो गाना है हम आपको सुनवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि बेटी की विदाई के समय उसे क्या सीख देनी चाहिए, ये आप हमें लिख करके भेजिए। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि हाँ, ये जो गीत है इसके बारे में मैंने सोचा तो था, यानी जो अभी मोम की गुड़िया फिल्म का गाना, लेकिन उसके बारे में हमने लिखा नहीं, पर पसंद है गाना और आपने सुनवा दिया। एक साथी लिख रहे हैं कि बारात का उद्देश्य एन्जॉयमेंट करना ही नहीं है, बाराती घराती को बहुत तंग भी करते हैं और जिसे कभी कभी माहौल बहुत ख़राब भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि पुराने ज़माने में नीचे बैठकर यानी पंगत में खाने में तो मज़ा आता है, बूफे में नहीं आता है। वहीं अब शादियों में बूफे के बदले टेबल कुर्सियों पर बिठा कर खाना परोसा जाता है, ये बदलाव काफ़ी अच्छा और सफल भी हो रहा है। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि समय धीरे धीरे बदल रहा है, हमारे भारत के कई शहरों में और कुछ समाजों में यह सख्त फैसला लिया गया है कि शादी में निश्चित प्रकार के व्यंजन ही बनाए जाएंगे और खिलाए जाएंगे ताकि व्यंजन व्यर्थ ना जाए और दुल्हा दुल्हन के माता पिता पर खर्च का बोझ ना पड़े, अन्य फिजूल खर्चों को भी रोका जाए। मेरी प्रभु परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि हमारे संपूर्ण देश में सभी समाजों में ये निर्णय लेना चाहिए। चलिए अब हम अपने टेक्स्ट की बात को आगे बढ़ाते हैं कि दुल्हन अपनों की दुआएं लेकर इस घर आंगन से विदा हो जाती है। नीलकमल फिल्म का ये गाना अब आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, साहिल उद्यानवी के बोल, संगीत किसका है ये आपको बताना है। साथ ही आप हमें ये भी लिख करके भेजिए कि बेटी को विदाई के समय क्या सीख देनी चाहिए।

नीलकमल फिल्म का गाना आपने सुना, संगीत रवि का। जब भी ये गाना सुनते हैं तो हाथ कंप कपा जाते हैं और आंखें नम तो हो ही जाती है, मुझे ऐसा लगता है, आप बताइएगा। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मंजरी, जब मेरी बेटी पैदा हो रही थी ये गाना बज रहा था, आज याद आ गई और मैं रोने लगी हूँ। जिस बेटी को हम बड़े प्यार से पालते हैं उसे एक ही झटके में दूसरे को सौंप देते हैं, ये बात एक माँ बाप से बेहतर और कौन जान सकता है उस दर्द को या उस तकलीफ को। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आजकल तो लड़कियाँ खुद ब खुद सब सीख लेती हैं, माँ किसी की यदि मान ले तो ये जो घर आजकल टूट रहे हैं ये टूटने से बच जाए। लेकिन ये सीख की अगर हम बात करते हैं तो क्या केवल लड़कियों के लिए सीख होती है? लड़कों के लिए भी तो बहुत सीख होती है, लड़के वालों के लिए भी तो बहुत सारी सीख होती है, तो उन बातों पर भी हमें गौर करना चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि बेटी का हृदय सिंधु समान विशाल होता है, अतः सभी उठती लहरों ज्वारों और हृदयंगम कर शांत चित्त नए जीवन में प्रवेश करना चाहिए। चलिए अगला गाना हम सुनते हैं, आधी रात होगी, आधा चंद्रमा होगा, बात आधी होगी, नवरंग फिल्म का गाना।

नवरंग फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बेटी की विदाई के समय उसे कहना चाहिए कि तुम्हारी शादी हुई है, माता पिता से रिश्ता नहीं टूटा है, तुझ पे कोई भी

एक सबको समान देना चाहिए, आत्मसम्मान का भी पूरा ध्यान रखना है आपको, ये अब घर तुम्हारा है, ये सीख उसे देना चाहिए। चलिए, हमारी जो अगली बात है वो ये है कि प्यार से बना एक प्यारा घर होगा जो उनकी नज़रों में सबसे न्यारा होगा। साथ साथ फिल्म का गाना, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह की आवाज़ें, जावेद अख्तर के बोल, कुलदीप सिंह का संगीत, कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है आप बताइए।

आज सुरीला सफर कार्यक्रम में जिस गाने की सबसे ज्यादा चर्चा हुई या फिर लोगों को पसंद आया वो नीलकमल फिल्म का गाना। लिखते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा ये गीत पिता और पुत्री के उस अनकहे और पवित्र रिश्ते की पराकाष्ठा है जहां एक पिता अपने जिगर के टुकड़े को विदा करते समय अपना कलेजा निकाल कर रख देता है। मोहम्मद रफी साहब की दर्द भरी आवाज ने इस गाने में पिता की लाचारी, उसकी ममता और उसकी शुभकामनाओं को इस तरह पिरोया है कि आज भी यह गाना बजते ही आंखें नम हो जाती है। धन्यवाद आपका। और आज विविध भारती का ये जो कार्यक्रम है सुरीला सफर, ये सुरीला सफर आपने तय किया मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ। अब कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सवनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 27वीं कड़ी।

0: 7 अगस्त 1905, ये वो दिन था जब कलकत्ता के टाउन हॉल के विशाल प्रांगण में संपन्न चार बड़ी बड़ी सभाओं में वंदे मातरम इन शब्दों का पहली बार सार्वजनिक सामूहिक जयघोष हुआ। और अगले मात्र 2 महीनों में ये युद्धघोष बंगाल के विभाजन के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का नारा बन गया। केवल 2 महीनों में वंदे मातरम ये शब्द प्रत्येक बंगाली व्यक्ति के मुख से निकलने लगे। 16 अक्टूबर 1905 वो दिन आ गया जिस दिन विभाजन की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त से भी बड़ी सभा अब होने वाली थी। उससे पहले सभा में आने वाले सभी लोग एकत्रित होकर जुलूस के साथ सभा स्थल पर जाने वाले थे। सभा में जाने से पहले जनता ने और भी कुछ ऐसी कार्रवाइयां करने का निश्चय किया था जिससे जनता की एकता और वंदे मातरम की शक्ति का संयुक्त परिणाम ब्रिटिश सत्ता को अच्छी तरह महसूस हो। इकट्ठा हुआ जनसमूह वंदे मातरम का जयघोष करते हुए गंगा की दिशा में चल पड़ा।
1: गंगा स्नान के बाद सभी लोग एक दूसरे को राखी बांधने वाले थे। उन सब के आगे रविंद्रनाथ पैदल चल रहे थे। उस दिन ठाकुर परिवार के सभी नौकर, मुनीम और मालिक बराबरी से बिना किसी घोड़े गाड़ी के पैदल ही चल रहे थे। दोनों ओर भारी भीड़ जमा थी। किसी उत्सव जैसा माहौल बन गया था। सामने जगन्नाथ घाट था। रविंद्रनाथ के साथ लोगों ने गंगा में स्नान किया और सबने एक दूसरे को राखी बांधना शुरू कर दिया। इसके बाद बिडन स्क्वायर में एक बड़ी सभा होने वाली थी। जगन्नाथ घाट से निकलते समय पाथुरिया घाट के पास कुछ मुसलमान अपने पालतू घोड़ों की देखभाल कर रहे थे। रविंद्रनाथ जल्दी से आगे बढ़े और उन्हें भी राखियां बांधी। वहां से आगे जाते हुए अचानक रविंद्रनाथ ने तय किया चितपुर रोड पर स्थित मस्जिद में जाकर वहां के मुसलमानों को भी राखी बांधें। कुछ लोगों को लगा अब निश्चित ही कोई दंगा फसाद होगा, परंतु रविंद्रनाथ आगे बढ़े तो मस्जिद के लोगों ने आदरपूर्वक आगे आकर हंसते हुए राखियां बंधवा ली। उस दिन पूरे कलकत्ता में स्वयं स्फूर्त बंद रखा गया।
0: रविंद्रनाथ सहित सभी लोग बिडन स्क्वायर में सेंट्रल कॉलेज के मैदान पर एकत्रित हुए थे। वयोवृद्ध नेता आनंद मोहन बसु बीमार होने के बावजूद मंच पर आराम कुर्सी में बैठे थे। उनका लिखित भाषण सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने पढ़कर सुनाया। उनका घोषणा पत्र कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आशुतोष चौधरी ने पढ़ा। उसका बंगाली अनुवाद रविंद्रनाथ ठाकुर ने सबको सुनाया। आनंद मोहन बोले,
2: समस्त बंगाल वासियों की भावनाओं की अवहेलना करके ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बंगाल का विभाजन करने का निश्चय किया है, इसलिए आज हम सभी शपथ लें कि बंगाल का विभाजन रद्द होने तक बंगाल में एकता बनाए रखने के लिए समूचे बंगाल का प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जो जो संभव है वो करेगा।
1: इस सभा में 50,000 लोग उपस्थित थे। इस दिन के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर रचित वो गीत प्रार्थना के रूप में गाया गया जो आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुआ।

इस सभा के आयोजन में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता का बड़ा योगदान था, जो भारतीय न होते हुए भी मात्र 5 वर्षों में पूरी तरह भारतीय हिंदू बन चुकी थीं। यह सभा समाप्त होने पर सर्कुलर रोड पर एक और बड़ी सभा हुई। अखंड बंग भवन इस इमारत का शिलान्यास समारोह हुआ। इस सभा में भी लोगों ने स्वदेशी की शपथ ली। इस सभा में 75,000 रुपयों का राष्ट्रीय निधि इकट्ठा हुआ। बंग भंग विरोधी आंदोलन में आम जनता के साथ युवा छात्र वर्ग भी शामिल होने लगा। बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से कार्लाइल सर्कुलर नामक कुख्यात सर्कुलर जारी किया गया, जिसके अनुसार जो कोई भी विद्यार्थी स्वदेशी की सभा में भाग लेगा या वंदे मातरम का नारा लगाएगा, उसे स्कूल कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। इस सर्कुलर से छात्रों में दहशत फैलने की बजाय और अधिक संख्या में विद्यार्थी इस आंदोलन में भाग लेने लगे।

आगे 1906 में बहुचर्चित बारिसार प्रकरण के नेता अश्विनी कुमार दत्त के आह्वान को प्रतिक्रिया देते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने कॉलेज बंद करवा दिए और ये इमारत किराए पर देना है, इस आशय के पोस्टर विश्वविद्यालय की दीवारों पर चिपका दिए। रंगपुर के एक विद्यालय के 200 छात्रों को वंदे मातरम का नारा लगाने के लिए प्रत्येक को ₹5 का जुर्माना भरना पड़ा।

सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 27वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी और जयंत पात्रीकर, सहभागी कलाकार यूनुस खान, संगीतकार अजय पराड़, गायक कलाकार अपर्णा केड़कर, पार्थ उमराणी, देवव्रत भातखंडे और पद्मजा लामरूट, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता का था, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
2: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे।
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
2: चलो चले मितवा।
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
3: चलते चलते
1: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
2: आजा शाम होने आई।
1: एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
4: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
4: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
5: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
4: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये

0: सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास

0: पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना प्यार किया तो डरना क्या। इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, संगीत है रवि का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम

0: 5 बजे गुराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आह फिल्म का गाना अब आपको सुनवाएंगे हम। लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया। ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में अब आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम पतीता।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मदारी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, फारूक कैसर के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में अब आपको सुनवाते हैं इंदिवर का लिखा हुआ गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म का नाम पारस।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 ये फिल्म का नाम है। हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, पीएल संतोषी का लिखा हुआ गाना और संगीत है कल्याण जी वीरजी शाह का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बड़ा भाई फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, एहसान रिजवी के बोल, संगीत नाशाद का।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, हौसला हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। मुश्किलें बार बार राहें रोकती हैं, लेकिन उम्मीद की किरण लक्ष्य तक पहुंचा ही देती है। और हर मुश्किल हो जाती है दूर जब बातें करके मन हो जाए हल्का। और बातें करने के लिए सखियों से बेहतर और क्या है, है ना? तो बस आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए, उनका मन हल्का करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी सखी से होंगी बातें बहुत सारी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बजी फोन की घंटी और देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, फोन के उस तरफ। आज कौन से सखी से बात हो रही है हमारी, क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम संगीता अग्रवाल है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप संगीता जी?
1: मैं गुड़गांव मुंबई से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, मुंबई में रहती हैं आप तो?
1: हाँ जी।
0: जीवन में इन दिनों क्या चल रहा है संगीता जी, कैसी हैं आप?
1: हाँ एकदम बढ़िया, जीवन भी अच्छा चल रहा है।
0: तो आप बढ़िया बात है। और आप घर पर ही रहती हैं, गृहिणी हैं या किसी तरह का कोई काम करती हैं, क्या करती हैं आप?
1: वैसे तो गृहिणी हूँ, लेकिन थोड़ा पार्ट टाइम में मैं अपना इंडियन हैंडीक्राफ्ट का मेरा छोटा सा बिजनेस है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट मतलब कि हस्तकला, कहाँ से लेती हैं? घर पर ही कुछ बनाती हैं या कहीं से मंगवाते हैं आप, किस तरह से होता है ये सब?
1: हाँ जी, मैं मतलब थोड़ा सा ट्रेडिंग जैसे आप समझ सकते हैं उसे, जयपुर से रिलेटेड है मेरे सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम।
0: अच्छा, तो
1: मैं
0: ये
1: वहीं से कर।
0: अच्छा, तो ये जो सामान होते हैं आप जयपुर से मंगाती हैं सारी चीजें, तो गिफ्ट आइटम्स होते हैं या इनको फिर किस तरह से बेचती हैं? और ये भी बताइए कि आप कैसे पसंद करती हैं, क्योंकि आप तो रहती हैं मुंबई और आपका अधिकतर जो सामान है वो आता है जयपुर से, तो किस तरह से ये जो चुनाव आप करती हैं कि क्या पसंद आएगा आपके कस्टमर को, ये सब कैसे होता है?
1: आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, तो व्हाट्सएप पे सारे पिक्स आ जाते हैं हमारे होलसेलर के यहाँ से, मैन्युफैक्चरर के यहाँ से, तो उसमें भी सेलेक्ट करते हैं। और साल में दो बार हमारा विजिट रहता है जयपुर में।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पे सिलेक्शन करके आते हैं ज्यादातर।
0: अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। और किस तरह का लोग, आपके अनुभव के अनुसार किस तरह की चीजें लोग ज्यादा पसंद करते हैं?
1: मोस्टली ना जैसे पेंटिंग्स है, टेबल के ऊपर रखने के जो आर्टिफैक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं, और थ्रोज वगैरह वगैरह रहते हैं, तो उस तरीके के आइटम लोग बहुत पसंद करते हैं
0: जी।
1: ज्यादातर टेबल वेयर आइटम जो रहते हैं
0: वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि आप रहती हैं मुंबई और जो आजकल का डिजिटल जमाना है इसका पूरा इस्तेमाल कर रही हैं आप, और जयपुर से सामान मंगवा करके यहाँ मुंबई में बेचती हैं, मतलब आप सेल आउट करती हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
1: गीत तो वैसे मुझे पुराने काफी पसंद है, उसमें से एक मेरा पसंदीदा गीत है ओ मेरे दिल के चैन, जो कि फिल्म है मेरे जीवन साथी से
0: जी।
1: और मुंबई की भागदौड़ में चैन तो कम ही है, इसलिए गीत सुनकर मैं थोड़ा चैन मिल जाता है
0: जी। तो आपकी पसंद का ये गीत आपको प्रस्तुत करते हैं और लीजिए चैन के थोड़े से लम्हे।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, आज किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, मैं पूनम मंडोवरा जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: मध्य प्रदेश जबलपुर से क्या बात है? तो पूनम जी, क्या चलता है आपके जीवन में और क्या कर रही हैं आप इस वक्त?
1: शिक्षिका हूँ केंद्रीय विद्यालय में।
0: अरे वाह, आप एक शिक्षिका हैं, केंद्रीय विद्यालय
1: जी,
0: में पढ़ाती हैं। तो कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं आप?
1: कक्षा 6 से 10 तक मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ।
0: विज्ञान की शिक्षिका, कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक।
1: दसवीं
0: तो
1: जी,
0: ये आप कितने सालों से पढ़ा रही हैं?
1: मुझे 14-15 वर्षों का अनुभव है।
0: 14-15 वर्षों का, यानी कि बहुत सारा एक अनुभव आपके साथ इकट्ठा हो गया होगा। तो काफी सारा समय आपको पढ़ाने में निकल जाता होगा।
1: जी बिल्कुल, अभी नया सिलेबस भी आपने सुना भी होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो हम लोग का सिलेबस की बुक्स भी हर साल लगभग बदल रही हैं।
0: अच्छा, तो इसके लिए तो आपको भी तैयारी करनी होती होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, हमें भी कई वर्कशॉप्स अटेंड करनी पड़ती।

0: नहीं है। कई बार हमें घर से सप्ताह भर 10 दिन के लिए बाहर रहना पड़ता है। घर में भी हमें करीब 1 या 2 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है।
1: जी देखिए, सब जानते हैं कि पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना होना या शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो है ही, लेकिन हमेशा लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। तो आप फिर खुद भी पढ़ती हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं, कैसे ये सब चीज़ आप मैनेज करते हैं?
0: जी सहेली, आपने बिल्कुल सही बोला, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमें ना समय का प्रबंधन बड़े अच्छे से करना पड़ता है।
1: जी ये बात तो बिल्कुल सही कही।
0: अपने दोनों बच्चों पर भी ध्यान देना है, साथ ही मुझे विद्यालय के बच्चों पर भी बराबरी से ध्यान देना है। तो मुझे समय का प्रबंधन बड़े सकुशलता से करना पड़ता है।
1: जी बिल्कुल सही
0: कहूँ तो मैं कुछ टीवी वगैरह ज्यादा, मोबाइल वगैरह नहीं देखती हूँ। बस हाँ, आपके विविध भारती के गाने और विविध भारती की जो मुझे न्यूज है
1: जी जी
0: वो बड़ी अच्छी लगती है, तो अपने रिक्रिएशन या अपने एंजॉयमेंट के लिए वो जरूर मैं सुनती हूँ।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और दोनों बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं या किसी और भी अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो सब पसंद करते हैं भाग लेना?
0: हाँ जी बिल्कुल, आपने सही बोला, मेरे दोनों बच्चे चेस के बड़े शौकीन हैं।
1: चेस खेल के शौकीन है, क्या बात है। घर में खेला जाता है या स्कूल में ही सिखा रहे हैं आप बच्चों को?
0: नहीं, स्कूल में सिखाते हैं, साथ में मैं उन्हें बाहर चेस क्लब मैंने ज्वाइन करा रखा है। और अभी रिसेंटली वो दोनों रीजनल चेस स्पोर्ट्स मीट में गए थे
1: जी,
0: और दोनों का सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हुआ है।
1: क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। पूनम जी बताइए, इस बात पर कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
0: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे यादों की बारात मूवी का कोई सा भी गाना सुना दीजिए।
1: तो चलिए सुनते हैं फिल्म यादों की बारात से ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म और चलिए देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: बड़ौदा से।
0: बड़ौदा से? बड़ौदा से कौन से सखी बात कर रही है? क्या नाम है आपका?
1: बड़ौदा से रमीला बेन बोल रही हूँ।
0: बड़ौदा से रमीला बेन?
1: हाँ।
0: कैसा है बड़ौदा रमीला बेन?
1: बड़ौदा तो बहुत बड़ा है, मगर हम तो बड़ौदा में छोटा सा गांव है सुंदरपुरा, वहाँ से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, ये बड़ौदा से पास में है सुंदरपुरा?
1: हाँ हाँ, सुंदरपुरा गांव है
0: जी। तो इन दिनों तो बहुत गर्मी होगी वहाँ?
1: बहुत सारी गर्मी है, रहने को भी कहाँ जाए कहाँ जाए, ऐसा लगता बर्फ गिरे तो अच्छा है ऐसा।
0: लेकिन आम के भी तो मजे ले रहे होंगे आप?
1: हाँ हाँ, आम हमारे पास में बगीचे है बहुत सारे,
0: अरे
1: वहाँ आम जा सक के नए नए कितने भी सारे आम है।
0: अच्छा,
1: मेरी शादी हुई थी 1990 में, अभी 36 के उतर के 37 में हो जाएगी।
0: 36 वर्ष पूरे हो गए आपके शादी
1: हाँ,
0: के, तो ये तो
1: हाँ।
0: बहुत बड़ा एक साथ आपका आपके पति के साथ है। तो इतने सालों का क्या अनुभव रहा आपका, क्या कहना चाहेंगी आप हमारी सखियों को?
1: हमारे 3 बच्चे हैं।
0: 3 बच्चे? अरे वाह।
1: हाँ, योगेश
0: तो बहुत
1: और
0: सारे
1: आरती।
0: जी।
1: हाँ, और वो प्रियंका।
0: अच्छा, तो जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने इतने सालों में।
1: अरे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं।
0: आपके आने वाली जिंदगी में सुखद और खुश भरे दिन आए, ये शुभकामना करते हैं। रमीला बेन, आज आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे पति को तो क्रांति पिक्चर का गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो क्रांति फिल्म का एक गीत आपके लिए, ये हम विविध भारती की ओर से सुनिए।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: जिस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का दीपा जी हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: जी आपने अपना नाम नहीं बताया, आपने हमारा नाम तो पहचान लिया।
1: मैं हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदा नाका इंदौर से।
0: पालदा नाका इंदौर से हसीना भी, तो बताइए क्या हाल है इंदौर के? और इंदौर का तो जो भोजन है, खाना वहाँ का बहुत मशहूर है, सराफा, 56 दुकानें।
1: जी जी बहुत मशहूर है मैडम यहाँ पर, और साफ सफाई में नंबर 1 है।
0: जी हाँ, ये तो नंबर 1 है हमारे देश का साफ सफाई में, इंदौर शहर। तो क्या
1: जी
0: चल रहा है इन दिनों आपके जीवन में?
1: अभी तो जॉब पे थे मैडम, तो आपको कॉल कर रहे थे। और गर्मी बहुत ज्यादा है गर्मी।
0: जी, तो आप जॉब करती हैं?
1: जी जी सिलाई करते हैं,
0: सिलाई का काम करती हैं, तो घर से करती हैं या कहीं जाती हैं आप?
1: दुकान पे जाना पड़ता है।
0: अच्छा, इन दिनों में आप अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो सर पे कपड़ा वगैरह बांध के निकलती हैं ना आप?
1: हाँ 9 बजे निकल जाते, इतनी ज्यादा 9 बजे इतनी गर्मी नहीं रहती है, मगर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ, ये बात तो सही है। और
1: जी
0: जब काम से आप फुर्सत पाती हैं तो आप क्या करती हैं अपने फुर्सत के क्षणों
1: रेडियो
0: में?
1: अधिकतर सुनते हैं मैडम, रेडियो के बिना तो हम लोग एक पल नहीं रह पाते। कहीं पर
0: हाँ,
1: भी फोन इन का भी काम आता है ना, सब दूर लगाते रहते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए आज आपका कॉल लग भी गया, तो आज हसीना
1: जी
0: भी
1: जी
0: आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: जिनका नाम है अपना बना लो, और गाने के बोल हैं, इस दिल का नहीं कोई, इस दिल से प्यार करना, देखो कोई प्यार ना करना, मरना लेकिन प्यार ना करना, ये सुना दीजिए।
0: चलिए लीजिए, पेश है आप ही की पसंद का गीत विविध भारती की ओर से।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, किस सहेली से बात हो रही है हमारी?
1: साधना प्रतापगढ़ से।
0: साधना जी प्रतापगढ़ से, कैसी है साधना जी?
1: बहुत अच्छे, अपना बताइए।
0: बस हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और कैसा चल रहा है मौसम प्रतापगढ़ में?
1: बहुत ही अच्छा मौसम है, किस तरह का मौसम है।
0: अच्छा
1: जी, आज मुझे गाना सुनना।
0: हाँ बताइए, कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: मिलन फिल्म का गाना है।
0: तो चलिए सुनते हैं पिया मिलन का गोरा मुखड़ा गुलाबी चुनरिया, आप ही की पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। देखते हैं किस सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका? कौन से सिक्की से बात हो रही है हमारी?
1: हमारा मृति नाम है, ग्राम बैठी पोस्ट पकड़िया, जिला सिंदौली से।
0: जिला सिंदौली से। ये कौन से बड़े शहर के पास पड़ता है इमरती जी?
1: ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में सिंदौली शहर पड़ता है।
0: अच्छा, तो वहाँ से बात कर रही हैं। क्या करती हैं इमरती जी?
1: मैं घर में रहती हूँ मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, आप देख नहीं सकते, घर पे रहते हैं तो।
1: लेकिन मैं आप लोगों का प्रोग्राम सुनती हूँ हमेशा मैं रेडियो पे।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो
1: और आप लोग आते हैं सखी सहेली में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग हंसते भी तभी अच्छा लगता है।
0: तो मुस्कान आप ही सबके लिए होती है, और जो बातें होती है हम सब सखियों के लिए तो होती है। जो बात आप लोग लिखते हैं, जो संदेश हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, वो चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़े, कुछ नया सीखे, है ना?
1: जी, हर विषय पे आप लोग जानकारियाँ देते हैं, हर विषय की जो बातचीत आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: जी,
1: जानकारियाँ भी मिलती हैं रेडियो के जरिए।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो इमरती जी बताइए, आज कौन सी फिल्म का गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: राज फिल्म का इतना मैं चाहूँ तुझे, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में गीत है, बहुत अच्छा गीत लगता है मुझे। नए पुराने सभी तरह के गीत अच्छे लगते हैं, रेडियो पे जैसा भी गाना बजता है वो सभी गाने अच्छे।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं रजनी रावत बोल रही हूँ।
0: रजनी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैं एमपी भिंड जिले से बोल रही हूँ।
0: एमपी भिंड से। रजनी जी क्या करते हैं आप? गृहिणी हैं या कुछ किसी तरह का काम करते हैं?
1: जी वैसे तो मैं गृहिणी ही हूँ और घर में ही काम करती हूँ जो कुछ करना है। बाकी फिल्मी गाने सुनने का बहुत शौक है, पुराने गीत
0: जी।
1: और आपके प्रोग्राम सुनने का शौक है पूरे विविध भारती के।
0: क्या बात है, विविध भारती के आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: विभाजी का एक गीत मालिका है
0: जी
1: और सबसे अच्छा लगता है मुझे छाया गीत
0: जी हाँ
1: उसमें। हाँ, और वो कम से कम मैं 15-20 सालों से मतलब वो कार्यक्रम सुन रही हूँ। मैं छोटी से मतलब मैंने विभाजी सुना है बचपन से और मेरी उम्र मतलब लगभग 43 साल हो गई।
0: जी
1: मैंने कम से कम 20-25 साल हो गए विभाजी सुनते सुनते।
0: ये तो
1: पहले
0: बहुत अच्छी बात है
1: जी हाँ, और सखी सहेली सुनना थी यही में
0: जी।
1: सखी सहेली तो बहुत बाद में शुरू हुआ था प्रोग्राम।
0: तो आज रजनी जी कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी मुझे आशा भोसले के बाद में तीसरी कसम फिल्म का गाना है पान खाए सैया हमारे।
0: तो आशा जी को याद करते हुए सुनते हैं ये
1: जी हाँ
0: आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम झनकार बोल रहे हैं मुंबई से।
0: झनकार? झनकार मुंबई से? क्या बात
1: जी
0: है, आपकी तो आवाज में ही एक झनक सुनाई दे रही है झनकार जी।
1: जी बहुत धन्यवाद।
0: तो क्या करती
1: और
0: हैं झनकार आप?
1: आजकल तो मेरी एक कथक टीचर है और श्रीमती नूतन पटवर्धन, मैं
0: जी
1: उनको असिस्ट करती हूँ, बच्चों को कथक सिखाती हूँ उनके साथ।

0: क्या बात है,
1: बढ़िया चल रही।
0: तो आप कथक सिखाती हैं, इसका मतलब है
1: हाँ,
0: कि आपने भी पहले सीखा होगा।
1: मैं बहुत साल से उनके साथ हूँ और अभी भी सीख ही रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी विद्या है
0: जी
1: जो चलती रहती है। हम कभी कह नहीं सकते कि हम पारंगत हो गए हैं, तो अभी
0: जी
1: भी उनके साथ सीख ही रही हूँ और कुछ
0: जी
1: आया नहीं है ज्यादा। पर हाँ, ये उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरी हेल्प करो, साथ में असिस्ट करो, तो मुझे तो बहुत गौरव महसूस हुआ। तो मैं उनके साथ बच्चों को आजकल कथक थोड़ा सिखाती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है,
1: और
0: क्या
1: शायद
0: बात
1: आपको
0: है।
1: पीछे घुंघरू सुनाई पड़े होंगे, क्योंकि मैं उसी क्लास में हूँ।
0: अच्छा, आप उसी क्लास में हैं और सिखा रही
1: हाँ,
0: हैं,
1: सीख रही हूँ इस वक्त तो
0: सीख रहे
1: अच्छाई से
0: हैं।
1: अपनी। हाँ
0: अच्छा, बहुत सुंदर बात है। और जब सिखाती हैं आपने जो सीखा उसी तरीके से आप सिखाती हैं, या अपने आपने कोई अपना ही एक तरीका अपनाया है बच्चों को
1: नहीं,
0: सिखाने?
1: शास्त्रीय संगीत भी सीखती हूँ मैं, और कथक में भी एक हम गुरु जो प्रणाली होती है, गुरु शिष्य,
0: जी
1: हम उसी को फॉलो करते हैं। तो इसमें आपको अपना बिल्कुल नहीं डालना होता है। ये
0: जी
1: बहुत संभाल के दी गई विद्याएं होती हैं जो
0: बिल्कुल
1: गुरु से शिष्यों में जाती है, तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ता है और अपने को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है।
0: ये
1: क्योंकि
0: बात
1: हम कुछ
0: आपने
1: भी करते हैं, सिखाते हैं, हमको हमारे दिमाग में पता है। दीपा जी, मैं आपको बात कर रही हूँ,
0: जी
1: मैं जब बोलती हूँ ना बच्चों के साथ, है तत तत है, तो मेरे दिमाग में मेरी ताई की आवाज होती, गुरु की,
0: क्या
1: कि
0: बात है।
1: वो जैसे बोलती थी, थई जोर से मारो, तत लगाओ, तो वो अपने आप मेरे अंदर से मेरे गुरु ही बोल रहे होते हैं। वो ही कोशिश करती हूँ।
0: बिल्कुल
1: अब
0: सही
1: थोड़ी तो
0: कहा।
1: अपूर्णता है, थोड़ा तो है, तो गलती होती होगी, लेकिन ये हम वैसे ही चाहते हैं जैसे है। कम से कम पहले थोड़ा आ जाए, तब हम शायद कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं,
0: जी
1: पर
0: बिल्कुल
1: उस
0: सही।
1: योग्य हो जाए तब कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं लगता मैं उस योग्य हूँ।
0: देखिए, गुरु शिष्य परंपरा की यही खूबसूरती है कि कभी भी जो सीखता है विद्यार्थी हमेशा अपने आप को विद्यार्थी ही समझता है, और कहीं वो अहम या अहंकार की भावना पनप ही नहीं पाती, है
1: हाँ
0: ना
1: हाँ इसलिए हमारे यहाँ तो शुरू में नमस्कार किया जाता है।
0: जी।
1: जिस जगह हम हैं उस जगह को, अपने गुरु को, सबको नमस्कार करके ही हम क्लास शुरू करते हैं।
0: जी, तो आप कोई छोटा सा तोड़ा टुकड़ा अगर इस वक्त आपको याद है तो बोल के बताएंगी?
1: कोशिश कर सकती हूँ,
0: जी
1: और चलिए मैं आपको एक टुकड़ा बोलती हूँ
0: जी
1: जो तीन ताल में है, और मैं बोलती हूँ तो तीन ताल में 16 मात्रा होते हैं, और
0: जी
1: मैं वो आपको टुकड़ा बोलती हूँ। तत तत थुन थुन तिगदा दिग दिग थई, तत तत थुन थुन तिगदा दिग दिग थई, तिगदा दिग दिग थई, तिगदा दिग दिग थई, ता थई, तत तत थई, तत तत थई, तत तत थई। इसे सादा तोड़ा बोलते हैं, और कथक में जो कई अंग होते हैं, जैसे ठाट है, आमद है, तोड़े हैं, टुकड़े हैं, परन है, तो ऐसा ही ये एक सादा तोड़ा है। और ये बहुत ही शुरू में 2-1 साल बच्चे जब सीखते हैं तो फिर उनको सिखाया जाता है।
0: क्या
1: और
0: बात है
1: आपने एकदम से बोला तो बस मेरे को ये मैंने बोल दिया।
0: जी। तो देखिए, लेकिन आप क्योंकि हमेशा सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, तो आपको वो
1: जी
0: मुंह
1: जी
0: जबानी अच्छे से याद है। तो बताइए
1: हाँ
0: झंकार
1: सर,
0: जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं वो एक स्वामी पिच्चल का है, पल भर में ये क्या हो गया, मुझे
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: अच्छी लगी
0: जी
1: थी फिल्म
0: जी वो
1: शबाना
0: बहुत
1: आसमिन।
0: सुंदर गीत है, तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम सीमा है। हाँ
0: सीमा जी, कहाँ से बात कर रही हैं सीमा जी?
1: जी, उज्जैन उज्जैन के पास गांव है पान बिहार।
0: अच्छा सा नाम है, पान बिहार, है ना? सुनने में
1: अच्छा सा और बड़ा भी है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: कुछ
0: क्या करती हैं सीमा जी आप?
1: नहीं मैडम, मैं तो खेती का काम करती हूँ।
0: खेती का काम? तो ये
1: हाँ
0: कोई छोटा काम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण
1: हाँ
0: भी है ना?
1: महत्वपूर्ण भी, मतलब खेत पे ही शुरुआत खेत से ही होती है हमारे तो सुबह की।
0: तो किस तरह का काम आपका खेत पे रहता है? कोई
1: ये निंदाई खुदाई है, भैंसों को चारा वारा डालना है, खेत
0: जी,
1: में पानी देना है। हाँ
0: तो वहां पे पशु भी हैं?
1: है ना, एकदम
0: क्योंकि
1: पशु
0: आपने
1: भी है।
0: चारे की बात की ना, तो वहां पे पशु भी
1: हाँ है ना,
0: हैं?
1: है भैंस भैंस है, भैंस
0: क्या है वहां पर पशुधन में?
1: है भैंस।
0: भैंस हैं? कितनी भैंसे हैं वहां?
1: हाँ दो भैंसे हैं और दो गाय हैं।
0: 2 गाय 2 भैंसे? तो भाई इन्हें
1: हाँ
0: भी बहुत ध्यान से रखना होता है ना, बिल्कुल अपने
1: जी
0: परिवार
1: मैडम,
0: अपने
1: बच्चों
0: बच्चों की तरह।
1: की तरह रखना पड़ता है उनको, टाइम
0: जी
1: से पानी पिलाना।
0: जी तो इन दिनों गर्मी भी बहुत है, तो उनके भी
1: गर्मी
0: चारा
1: भी
0: देने
1: बहुत है
0: का।
1: तो उनको छाया की व्यवस्था भी की है ना मैडम।
0: जी अच्छा, बहुत सुंदर बात कि उनके, आप खुद का तो ध्यान रख ही रही हैं, उनके लिए भी छाया की एक अलग से जगह बनाई है जहाँ पे वो छाव में
1: हाँ
0: रह सके, बैठ
1: छाँव में
0: सके।
1: बंदे रहते हैं और उनको चारा पानी है, पानी वानी टाइम टाइम से पिलाते हैं। फिर
0: जी तो थक कर जब शाम को घर पे आती हैं, फिर से आपको भोजन बनाना
1: वो
0: होता
1: वहां
0: होगा?
1: पे घर रहे, इसमें घर में अंदर बांध के खिला देते हैं।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे सीमा जी। आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आज?
1: जी मैडम, मेरे को वो सुनना है, माँ तो कितनी अच्छी है कितनी भोली है।
0: तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है। तो चलिए
1: हाँ
0: सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैम, मैं मनीषा कौशल इंदौर से बात कर रही हूँ।
0: मनीषा जी, इंदौर से। मनीषा
1: जी,
0: जी
1: मध्य प्रदेश।
0: जी क्या
1: जी
0: कर रही
1: मैम,
0: थी अभी आप फोन लगाने से पहले?
1: मैंने अभी ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ, सिलाई का काम करती हूँ मैं।
0: सिलाई का काम करती हैं।
1: खुशी इतनी हो रही मुझे कि मेरी कॉल लग गई, पहली बार कॉल लगा मेरा
0: तो ये तो
1: सच्ची
0: बहुत अच्छी बात
1: सहेली।
0: है ना।
1: क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा बोलती थी कि एक बार ना एक बार मैं लगा के रहूंगी, क्योंकि वो हमेशा सखी सहेली सुनते हैं, दिन भर उनका प्रोग्राम चलता रहता है। उनको मतलब शौक है रेडियो सुनने का, तो वो
0: जी
1: वेडिंग का काम करते हैं, तो वो मतलब चलता रहता है उनका डेली का, तो बोलते लगा के देखना एक बार तो लग ही जाएगा तेरा। बोल
0: कि बहुत अच्छा लगा। आप बताइए, आज आप आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम वाला गाना सुनवा दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: कहीं अपन मतलब कोई मतलब धार्मिक कार्यक्रम होते हैं ना
1: जी,
0: उसमें जाना पसंद है मुझे।
1: बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं हम?
0: दीदी फिल्म का नाम है गाइड, पिया तोसे नैना लागे रे।
1: तो चलिए सुनते हैं गाइड फिल्म का पिया तोसे नैना लागे रे, आप ही की पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली में बातों का सिलसिला आज बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 02240002462, अंग्रेजी में 02240024662। इसके अलावा 02228670288, यानी 02228670288, 022 मुंबई का STD कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सहेलियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें, ताकि अन्य हमारी सहेलियों को एक अवसर प्रदान हो सके। आज की हेलो सहेली में सहयोग दिया संपादन में नम्रता टिकोड़े ने, तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो दीजिए दीपा माहेश्वरी को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतों भरी कहानी सपने में ठिठका इंतजार। इसकी लेखिका हैं ममता सिंह और वही आपको ये कहानी सुना रही है।
2: उसने आंगन में रखे गमलों को बाहर दरवाजे के सामने रखा, एक निगाह कमरे में डाली, मेन स्विच बंद किया, दरवाजा खींचा, वो बंद हो गया। चाबी पैंट की जेब में डालकर बरामदे तक आ गई थी वो। उसके गुलाबी गाल और नीली आंखों में ज्वार सा नजर आ रहा था। लग रहा था कि आंखें जैसे अब छलकी कि तब छलकी, आंखों में नदी बह रही थी। मैं कार से उतरकर उसकी ओर दौड़ी, उसे हुलसकर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके ठंडे रिस्पॉन्स से मैं वहीं रुक गई।

बेटा, सारी किताबें एक साथ रख ली है ना? अकेले क्यों परेशान हुई? मैं तो आ रही थी ना, मैं रखवा देती। मैंने उसका सूटकेस अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने सूटकेस की ओर देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। मेरा मन कर रहा था उसे अपनी तरफ खींचकर खूब कस के गले लगा लूं, उसका सारा दर्द अपने आंचल में छुपा लूं, लेकिन उसके पथराए व्यवहार से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डर लग रहा था कहीं इस बार भी मैं इसे खो न दूं। पता नहीं ये कैसी पीढ़ी है, इन्हें ज्यादा प्यार दिखाओ तो ये बिदक जाते हैं, पर इसके नजरिए से सोचती हूं तो इसका बर्ताव ठीक लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने कितनी बड़ी दुनिया देख ली। दुखों के न जाने कितने रंग इसकी नाजुक हथेली में लगे। ऊपर वाला भी कभी कभी किसी के साथ बड़ी नाइंसाफी करता है। अनुष्का की आंखें मुझसे मिली और फिर सड़क की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न तैर रहे थे। अनुष्का ने अपनी आंखें मेरी आंखों पर चिपका दी। हाँ, कहने के साथ साथ वो सारे प्रश्न मेरे कानों में गूंजने लगे जो मुझसे पूछे गए थे। इस मशीनी युग में रिश्ते से ज्यादा कागज की अहमियत है। मम्मी, मेरी ज्यादातर किताबें वहीं पड़ी हैं, मैं एक बार फिर आऊंगी ले जाने के लिए। अनुष्का की आवाज बहुत मध्यम थी। बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था, आवाज भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का ये फैसला न कर ले। इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच।

अनुष्का पूरे रास्ते कार की खिड़की से बाहर देखती रही। कई बार उसने टिश्यू पेपर से आंखों को दबाया, शायद भर आए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में ऐसे घूम रही थीं जैसे सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को वो पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उस एक पल से मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थीं, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम।

0: यहीं लौट कर माँ ने मुझे अपनाने का दावा किया था, वही माँ जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, कितने दिन रहूंगी, इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर मुझे क्यों, माँ के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया था, क्या बात थी आखिर? मैंने उसके कंधे को सहलाया, उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा, हर कोना मानो उसकी चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई, उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भर आया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की, सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार घर लेकर आए थे तो घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने, और बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।
1: तो कितनी अच्छी

उस रोज अनुष्का ने मुझे पहली बार माँ कहा था, तब जैसे घर में फूलों की बरसात हुई हो। वो पैदाइशी ही उम्र से दो कदम आगे थी। अनुष्का की ड्राइंग बुक मैंने अपने हाथ में ले ली और पलटने लगी। एक पन्ने पर मेरी निगाह अटक गई। आंखों के सामने कागज का वो पन्ना याद आ गया जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया था। सर्दी की सियाह रात थी, मैं और नीरव किसी शादी में जा रहे थे। हम जंगल से गुजर रहे थे। यूं कि जंगली जानवरों के डर से हम जंगल को जल्द ही पार कर लेना चाह रहे थे। नीरव गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे। ठंडी और कुदरती हवा खाने की गरज से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था। एसी बंद था। गहन निर्जन सन्नाटे में झींगुरों की तेज आवाज के बीच अचानक झाड़ियों से आती रोने की पतली सी आवाज ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और हम बड़े निर्भीक हो गए थे। उस समय रात के इस बीहड़ सन्नाटे में कराह भरी महीन महीन रोने की आवाज समझने में खासी परेशानी हो रही थी कि किसी इंसानी बच्चे की कराह है या कोई जंगली जानवर।

घर का बच्चा है या कोई छोटा मेमना जो बिल्कुल नवजात शिशु जैसा है। हम सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंच गए थे। सामने कुछ सूखी डालियां पड़ी थीं, जिन्हें हटाया तो कंबल और सफेद कपड़ा जैसे कुछ दिखाई दिया। हम और नजदीक गए, उस आकृति के और करीब गए और करीब गए। अरे, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। नीरव, ऐसा लग रहा है कोई बच्चा है। ये कपड़े में लिपटा कोई बच्चा लग रहा है, नवजात शिशु। ओह, हमने फौरन गाड़ी से टॉर्च निकाला और उसमें नहाए पेड़ों पर हम रोशनी फेंकने लगे इधर उधर। तभी टॉर्च जब उस झाड़ी पर पड़ी जहां कंबल और सफेद कपड़ा जैसा कुछ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे नजदीक गए तो देखा कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची कांप रही थी। उसका रोना अनवरत जारी था। मेरा तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। सवालों का समुद्र जैसे मेरे भीतर समाकर पूरे जंगल को पानी पानी कर देगा। हमने उस नवजात शिशु को उठाया और इधर उधर देखा। फिर मैं सोचने लगी, आखिर समाज ने ऐसा कौन सा वितान रचा है जिसके चलते ये नवजात शिशु अभिशप्त कर दी गई है। ऐसा कौन सा प्रश्न रहा होगा जिसके तहत इसकी माँ ने यहां उठाकर इस प्यारी बच्ची को फेंक दिया। उस माँ का कलेजा कांपा नहीं होगा। हम संभल संभल के और डरते हुए उस बच्ची के नजदीक पहुंचे। हाथों में ग्लव्स पहने नीरो ने उसे झुककर उठाया और मेरी गोद में डाल दिया। उस बच्ची का स्पर्श पाते ही मैंने अपने पेट में 9 महीने का उभार सा महसूस किया। मेरी छाती में जैसे दूध उतर आया था। मैं ममता से भर गई थी। ऐसा लगा मैं मां बन गई हूं। सुनो, इस बच्ची को ना ऊपर वाले ने हमारी गोद भरने के लिए इन झाड़ियों में भेज दिया है। किस्मत की किताब का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला था। कहते हुए मैंने अपना सिर नीरव के कंधे पर टिका दिया था। मेरी गोद की गर्माहट पाकर वो बच्ची थोड़ी देर के लिए जैसे चुप हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके रोने का सुर और ज्यादा ऊंचा हो गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज थी। समझ में नहीं आ रहा था उस नन्ही जान को पानी पिलाना ठीक होगा या नहीं। कितने दिन की बच्ची है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था।

कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है? कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते, अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी। कानूनी कागजात के साथ साथ हमारी और भी तरह से जांच हुई। एक दिन एक सोशल वर्कर घर आई। उन्होंने एक एक करके सब देखा, रसोई, कमरा और वो झूला जिसे मैंने पहले ही सजा रखा था। एक जासूस की तरह उन्होंने मेरे घर का मुआयना किया। अगर बच्ची अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछेगी तो आप क्या बताएंगे? उनके ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बेहद चुभने वाले थे ये सवाल। हम उन्हें सच बताएंगे, लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे को अपनाते हैं, जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं। वो माँ बाप नहीं होते हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं, नीरो ने दृढ़ स्वर में कहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल जवाब किए, फिर शुरू हुआ हमारे कोर्ट के चक्कर काटना। क्या आप जानते हैं, दत्तक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस सब बातों के लिए? जज ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सख्ती से पूछा था। जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को माँ का गोद चाहिए। मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरजते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर अखबार में नोटिस निकाला गया, यदि किसी को इस बच्ची पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हो। महीने भर डर के साए में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए। पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की कलम हमारे हिस्से में आई। और जब कानून की कलम हमारे हिस्से में आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा था। मैं खुश थी, लेकिन मेरी आंखों की नदी रुकी नहीं रही थी। हमारी सारी भाग दौड़, सारी थकान, सारी बेचैनी उस क्षण पिघलकर एक आनंद की बूंद बन गई थी, जब रुई के गुलाबी फाहे सी नरम नरम वो बच्ची मेरे गोद में आई थी। नीरव भी पिता बनकर निहाल हो गया था। घर का दरवाजा खुला, सर्दियों से सूना आंगन जैसे जीवन से भर गया हो। छोटे छोटे कपड़े टंगे, दूध की खुशबू, खिलौनों की खनक, सब में एक नई रोशनी थी। घर का हर कोना जैसे नन्ही सांसों की आहट से भर गया। झूले में ऊपर की ओर टंगी चक्री गोल गोल घूमने लगी और बच्ची की आंखें भी गोलाई में गोल गोल घूमने लगी। मैं उसे देख देख कर मुस्कुराती रही। नीरव, देखो ना कितनी प्यारी लग रही है ये। पहली बार हंसी है ये। मुझे अपने गाल पर नमकीन पानी का ठंडक महसूस हुआ था। मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी धर दी हो। नीरव चुपचाप खड़ा देखता रहा। उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। उसने बच्ची की हथेली पर अपनी उंगली रखी और उस नन्ही पकड़ में उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक किलकारी जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी। अगली सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आई। नन्ही बच्ची ने आंखें खोली
और अचानक मासूम सी हंसी बिखेर दी। उसके रोने और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया। रात को बच्ची सोती तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती, नीरो पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।

कितना अजीब है, कल तक ये चेहरा अजनबी था, ये बच्ची मेरे लिए अजनबी थी, आज इसकी सांसें हमारी रूह में बस गई। इसकी किलकारियों ने घर की हर दीवार पर नई धड़कन लिख दी थी। रात को जब बच्ची रोती, मैं नींद से उठकर दूध की बोतल तैयार करती। थकी होती पर उसे लगता जैसे उसकी थकान ही बच्ची की मुस्कान में घुलकर गायब हो जाती है। नीरो दफ्तर से लौटकर सीधे बच्ची की उंगली पकड़ लेता, दिन भर का तनाव उसी पल मिट जाता। रीना, हमने उसे अपनाया नहीं है, इसने हमें अपनाया है, हमारी जिंदगी को इसने अपनाया है, इसने खुशी दी है हमें, नीरो ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था। मैंने बच्ची को सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर का अटूट मातृत्व समुद्र में तब्दील हो गया था। तब महसूस हुआ कि मां बनना कितना कठिन होता है, लेकिन मातृत्व का सुख पाना भी किसी नियामत से कम नहीं। वो बरसात की भोर थी, आंगन की मिट्टी में ताजी महक फैली हुई थी, पेड़ों की पत्तियों से टपकते मोती जैसे कण हवा में चमक रहे थे। मैंने खिड़की खोली तो भीतर तक ठंडी बयार आ गई। झूले पर बैठी नन्ही काया ताली बजा बजा कर बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे बादलों से बातें कर रही हो। उसी क्षण

उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक कमजोर थकी हुई स्त्री खड़ी थी। उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मैं इसकी जन्म देने वाली माँ हूँ, मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे धरती हमारे पैरों तले खिसक गई हो। इतनी मुश्किलों के बाद तो हमारी मुराद पूरी हुई, फिर यह अचानक ये मुसीबत कहाँ से आ गई? मेरे होठ बुदबुदाए, लेकिन स्त्री ने अनुष्का को देखकर अपने कांपते हाथ जोड़े। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकी, हालात ने मुझे बेबस कर दिया, अब मेरे पास समय नहीं बचा है। मैं चाहती हूँ कुछ समय के लिए मैं इसे अपने घर ले जाऊं। वैसे तो तुम्हारी गोद ही इसकी सच्ची दुनिया है। उसने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसने अनुष्का की मासूम हथेली छू ली और बच्ची के शरीर में एक निशान भी बताए। बच्ची ने बिना सोचे उसकी उंगली पकड़ ली और अगले ही पल खिलखिला उठी। उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से

मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा ही रूह का सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहां से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो औरत जिसने मां बनने का दावा किया है, वो कैंसर की मरीज है, वो भी सेकंड स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल को ही हथियार डालना पड़ता है। फिर से अदालत की सीलन भरी दीवारें, बोझिल हवा और कोनों में सिसकते सन्नाटे, जज का फैसला। जन्म देने वाली मां को कैंसर है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए बच्ची का अधिकार उसी के पास रहेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कई बरस बीत गए। अनुष्का की जन्मदात्री मां भी और ज्यादा कृशकाय हो चुकी थी। इस दौरान उससे कई मर्तबा मुलाकात हुई। उसकी तकलीफ देह हालात के बारे में जानकर अनुष्का को उन्हें उनकी बची खुची जिंदगी के लिए सौंप देना ही इंसानियत थी। उसकी आंखें बुझती लौ जैसी थीं। वो मेरे जीवन की सबसे बोझिल रात थी। रात हौले हौले जा रही थी, लेकिन सुबह की कोई आमद नहीं नजर आ रही थी। ओस में भीगी पेड़ों की शाखें उदास हो गई थीं। अनुष्का का घर में आने का समय पता ही न चला, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही सही, उसके जाने का लम्हा सदी बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी, लेकिन उस रात जब उसे इस घर से उस घर यानी उसकी माँ के पास ले जाया जा रहा था, तब वो जैसे बेजान गुड़िया में तब्दील हो गई थी। उसे तब तक पता चल चुका था कि जहां जा रही है वही उसकी असली माँ है। मेरी तो वो दत्तक पुत्री है। मेरे भीतर तूफान कुलाचे मार रहा था, नीर और निर्विकार भाव से इस नियति को स्वीकार कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अनुष्का की किलकारियों की गूंज रह गई। वो लम्हे जब पहली बार उसने मां पुकारा था, वो रातें जब बुखार में हमने जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी, वो मासूम मुस्कान जो उनके जीवन का एकमात्र संगीत थी, सब कुछ जैसे पल भर में स्मृतियों की तिजोरी में रख उठे थे। अनुष्का ने मासूम निगाहों से मेरी ओर देखा। हम सब ने अपने सुविधानुसार अनुष्का का घर तय कर दिया, लेकिन अनुष्का के नजरिए से किसी ने नहीं सोचा। वो अपनी माँ के घर जब पहुंची तो उसके रोने का सिलसिला रुका ही नहीं। फिर जब वो रुका तो उसकी सूनी आंखें मेरा आंचल तलाशती रही। मैं उससे जब मिलने जाती मेरा आंचल पकड़ लेती, मुझे आने ही नहीं देती थी। ऐसे कसकर लिपट जाती जैसे मैं ही उसके जन्म देने वाली माँ हूं। वक्त ने उसे जल्दी समझदार और बड़ा बना दिया था। उसकी सूनी आंखों में सपनों की जगह इंतजार ठिठक गया था। घर में रखे खिलौनों को हाथ न लगाती, खामोशी उसकी सदा बन गई थी। उसे जैसे हम दो परिवारों ने एक छोटी बच्ची से वस्तु बना दिया था। उसकी पीड़ा को महसूस कर मेरा दिल कचोटने लगता था।

किताबों के ऊंचे रैक से एक मोटी किताब गिरी और मैं जैसे यादों के ऊंचे पहाड़ से धम से नीचे आ गिरी। पर इस बार पहाड़ से नीचे आने पर अनुष्का जैसी प्यारी फूल मेरे सामने है। उसने दरवाजा पकड़ रखा था जैसे ये आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें कह रही थीं, माँ तुमने मुझे झाड़ी से उठाया था, पर क्या सचमुच माँ की जगह भर सकोगी? अनुष्का, अनुष्का, उस दिन तुम झाड़ी में मिली थी अकेली और डरी हुई। मैंने तब तुमसे एक वादा किया था, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं उस वादे को हमेशा निभाती रहूंगी। कहते हुए मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अनुष्का के होंठ कांपे। याद आया कि उस दिन उसने पहली बार किसी अनजानी बाहों में अपने दर्द को ढक लिया था। उस औरत की छाती पर सिर रखकर रोई थी और फिर अब वही छाती फिर से उसके लिए स्तंभ थी। धीरे धीरे अनुष्का की उंगलियां चौखट से ढीली हो गईं। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच का पुल। घर के भीतर हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी। शाम की धूप खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी, मानो वर्षों से बंद पड़े सन्नाटे को सहलाने आई हो। दीवारों पर समय की धूल थी, पर उस धूल में भी ममता की डोर थी। अनुष्का धीरे धीरे कमरे में चली आई। उसकी उंगलियां दीवार से छू गईं, जहां पहले माँ ने तस्वीर टांगी थी। तस्वीर अब वहां नहीं थी, सिर्फ कील बाकी थी। वो कील मानो उसकी अपनी जिंदगी का प्रतीक थी, अधूरा खाली इंतजार करता हुआ कील। उसकी आंखें भर आई, पर ये आंसू मातृत्व की कमी के नहीं थे, बल्कि अपनी यात्रा की थकान के थे। उसने अपनी माँ की तस्वीर पर माला पहनाते हुए धीमे स्वर में कहा, माँ तुमने मुझे जन्म दिया और छोड़ दिया, फिर लौटकर मुझे पाया और खो दिया, लेकिन मैं

अब तुम्हारी अधूरी छाया में नहीं रहना चाहती, मैं अपना जीवन खुद लिखूंगी। अनुष्का के शब्द हवा में गूंजे मानो घर की दीवारें भी सुन रही हों। अनुष्का की पलकों पर आंसू की बूंद ठहर गई। उसने खिड़की खोली, सूरज की किरणें भीतर उमड़ आईं। कमरा अचानक उजाले से भर गया, जैसे अंधेरे की परतें टूटकर बिखर गई हों। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ पलटकर देखा। वही चौखट जो उसकी अनचाही शुरुआत की गवाह थी, अब उसी चौखट पर खड़े होकर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब किसी की छोड़ी हुई बच्ची नहीं, मैं अब एक माँ की बेटी हूँ। यही घर अब मेरी पहचान बनेगा। अब मैं इस घर से कहीं और नहीं जाऊंगी। अनुष्का की आंखों में उदासी की धूसर बादल की बजाय पहली बार इंद्रधनुष चमका था। एक नई शुरुआत का उस पल मानो वर्षों की वेदना धूप की तरह पिघल गई। बाहर आकाश में ढलता सूरज सुनहरी छटा बिखेर रहा था।

0: और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको तो आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

102.7 एफएम पर आकाशवाणी का ये उभरा केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 5 बजे हैं। अब युवा श्रोता सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नई सोच का कार्यक्रम के साथ मैं आशीष वर्मा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके युवा तय करते हैं, बच्चों के सपनों में ही आने वाले भारत की तस्वीर छिपी होती है। जब बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है, तब वह केवल प्रतियोगिता नहीं होती बल्कि आत्मविश्वास उनके अंदर जन्म ले लेता है। सोच को नई दिशा मिलती है और मन में आगे बढ़ने की प्रेरणा जागती है। और ऐसे में आकाशवाणी के 90 वर्षों की यात्रा केवल प्रसारण की यात्रा नहीं है बल्कि देश की भावनाओं, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य और जन जन की आवाज को जोड़ने का इतिहास है। आकाशवाणी ने समय के साथ न केवल सूचनाएं पहुंचाई हैं, बल्कि समाज को जागरूक करने, प्रतिभाओं को मंच देने और युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी निरंतर किया है। रेडियो की मधुर आवाज से लेकर आज के आधुनिक प्रसारण तक आकाशवाणी ने हर पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी पहचान बनाए रखी है। गांव की चौपाल हो, किसानों की बातें हो, संगीत की महफिल हो या फिर युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाला मंच, आकाशवाणी हमेशा लोगों के दिलों के करीब रहा है। इसी विशेष अवसर पर आकाशवाणी की टीम पहुंची डीएवी पब्लिक स्कूल ओबरा, जहां विद्यार्थियों के बीच एक रोचक और ज्ञानवर्धक प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल प्रतियोगिता कराना नहीं था बल्कि बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा, आत्मविश्वास और ज्ञान को सामने लाना भी था। विद्यालय परिसर में बच्चों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। मन ही मन ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सीखने को उत्सुक हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं। कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन यानी जीके और जीएस से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे गए, जिनका जवाब बच्चों ने पूरे उत्साह और समझदारी के साथ दिया। प्रश्न मंच की शुरुआत जैसे ही हुई, पूरा सभागार तालियों की गूंज से भर उठा। कहीं इतिहास से जुड़े प्रश्न थे, कहीं विज्ञान और खेल जगत से, तो कहीं भारत की संस्कृति, संविधान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े सवाल थे। बच्चों ने जिस तेजी और आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिए, वह वास्तव में प्रशंसनीय था। कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जिन्होंने बच्चों की सोच और तर्क क्षमता को भी परखा, लेकिन विद्यार्थियों ने पूरे मनोबल और उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। और इसीलिए ऐसे कार्यक्रम केवल प्रतियोगिता भर नहीं होते बल्कि बच्चों के भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानने का माध्यम भी बन जाते हैं। जब बच्चे मंच पर आते हैं, प्रश्नों का सामना करते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर देते हैं, तब उनके व्यक्तित्व में एक निखार आता है। आज के समय में युवाओं को केवल किताबों तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं है, उन्हें सच में मंच चाहिए, संवाद चाहिए और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी चाहिए। और यही कार्य आकाशवाणी वर्षों से करता आ रहा है। आकाशवाणी 890 के इस विशेष वर्ष में विद्यालयों और युवाओं के बीच इस प्रकार के आयोजन हमें यह संदेश देते हैं कि ज्ञान, जागरूकता और सकारात्मक सोच ही भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। और ऐसे में डीएवी पब्लिक स्कूल ओबरा में आयोजित यह प्रश्न मंच प्रतियोगिता बच्चों के उत्साह, उनकी प्रतिभा और सीखने की जिज्ञासा का सुंदर उदाहरण बनी। तो दोस्तों, अब समय है उस विशेष रिकॉर्डिंग को सुनने का, जिसे आकाशवाणी की टीम ने डीएवी पब्लिक स्कूल ओबरा में रिकॉर्ड किया। फिर आइए सुनते हैं प्रश्न मंच प्रतियोगिता के संपादित अंश, बच्चों के उत्साह भरे उत्तर और कार्यक्रम का जीवंत वातावरण। स्थलीय ध्वनिंकन और संचालन आशीष वर्मा और रानी राजश्री का, प्रस्तुत करता है सचिन कुमार वर्मा।
1: जैसा कि आकाशवाणी अपने 90 साल की यात्रा को पूर्ण कर रही है, जो इस 8 जून 2026 को कंप्लीट हो रहा है, और युवाओं की जो भागीदारी है वो आकाशवाणी से ज्यादा जुड़े, आप उस चीज को जाने और किस तरह के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं हमारे यहाँ से, उसको सुने, देखे जाने, एक अवेयरनेस, एक जागरूकता वो लोगों में आए, यही पर्पस है ये प्रोग्राम को करने का। तो चलिए पहले हम लोग एक परिचय कर लेते हैं।
2: सबसे पहले हम जा रहे हैं टीम ए के पास, आप लोग अपना परिचय दें।
3: मेरा नाम है रोहित कुमार अग्रवाल
4: जी। मेरा नाम है गरिमा सिंह।
2: अब टीम बी अपना परिचय दें।
5: मेरा नाम है सृष्टि सिंह।
6: मेरा नाम है मोहम्मद शाहजन।
2: और अब हम जा रहे हैं टीम सी के पास, आपका परिचय।
7: मेरा नाम इकरा आयात।
8: मेरा नाम ईशा शिकलवार है।
2: और अब लास्ट में टीम डी के पास हम जा रहे हैं।
9: मेरा नाम शाश्वत अग्रवाल।
10: मेरा नाम अनोखी केशरी।
2: इस तरह से चारों टीम ने अपना परिचय दे दिया है और अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्विज का ये सेशन। तो सबसे पहले प्रश्न पूछेंगे आशीष जी,
1: तैयार हैं आप लोग? चारों टीमें तैयार हैं, टीम ए, टीम बी, टीम सी और टीम डी।

दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने युववाणी कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि युववाणी कार्यक्रम मंच है युवाओं की आवाज का, सपनों की उड़ान का और

0: चलिए सबसे पहले हम जब आकाशवाणी की ही बात कर रहे हैं तो बताइए हमारे आकाशवाणी ओबरा की फ्रीक्वेंसी कितनी है। टीम बी ने सबसे पहले हाथ ऊपर किया है, क्या नाम है आपका?
1: सृष्टि सिंह।
0: सृष्टि बताइए।
1: 102.7 FM।
0: बहुत अच्छी बात, इनके लिए जोरदार तालियां होंगी। और अब हमारा दूसरा प्रश्न है आकाशवाणी के ही संदर्भ में जो आपसे पूछेंगी रानी जी, पूछिए।
2: और हमारा प्रश्न है कि आकाशवाणी का पुराना नाम क्या था?
0: टीम सी ने हाथ ऊपर किया है, नाम बताइए सबसे पहले।
3: ईशा शिकरवाल।
0: बताइए।
3: ऑल इंडिया रेडियो।
0: नहीं, सही जवाब बताएंगे रानी, बताइए सही जवाब क्या है।
2: इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस।
0: जो बाद में 1936 में जब ये नाम चेंज हुआ तब उसका नाम ऑल इंडिया रेडियो, लेकिन आपने प्रयास किया ये भी हमारे लिए काफी है, बहुत अच्छी बात। और अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि आकाशवाणी का मुख्यालय कहाँ है? फिर से टीम सी ने हाथ ऊपर उठाए हैं। ईशा।
3: यस सर।
0: बताइए।
3: न्यू दिल्ली।
0: बहुत अच्छा, बहुत सही जवाब, तालियां हो जाए इनके लिए।
2: आकाशवाणी की जब बात हो रही है तो अगला प्रश्न ये है कि आकाशवाणी का उद्देश्य क्या है?
0: चलिए ठीक है, हम टीम बी की तरफ बढ़ रहे हैं, बताइए उत्तर।
1: आकाशवाणी का उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को अवेयर करें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अपने वॉइस के थ्रू।
0: बहुत अच्छी बात, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना के साथ आकाशवाणी अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अवेयरनेस और जागरूकता की जो बात कही वो बिल्कुल सही है। चलिए फिर अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हम ट्रैफिक लाइट देखते हैं उसमें तीन लाइट दिखती है, उन तीनों का क्या मतलब होता है आपको पता है? टीम सी।
3: सर, रेड लाइट दिखाती है स्टॉप, येलो दिखाती है वेट एंड ग्रीन दिखाती है गो।
0: बिल्कुल सही, टीम सी के लिए भाई तालियां हो जाए, तालियां बजाने में आप लोग थोड़ा ताकत दिखाइए।
2: अभी के समाज में जैसे कि नशा बहुत ज्यादा हावी हो रहा है समाज में, तो इससे रिलेटेड हमारा अगला प्रश्न है, शराब सबसे अधिक किस अंग को प्रभावित करती है?
0: टीम ए।
4: सर, लीवर।
0: बिल्कुल सही। आप लोग को प्रश्न कैसे लग रहे हैं, कोई घबराहट तो नहीं हो रही है? हाँ, टीम डी खाता खोलिए, ऐसा नहीं कि पीछे की लाइन में बैठे हैं तो पीछे ही रहना है, अभी भी मौका है, आगे बढ़िए। अब बहुत ही जनरल सा एक क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? टीम बी की तरफ जा रहे हैं।
5: 26 जनवरी 1950।
0: जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए।
2: कोई बात नहीं,
0: रेडियो यही कहता है कि अपने दिल की बात जो भी हो उसको डायरेक्ट बोलना सीखिए, उसमें घबराइए नहीं, और आप बोलेंगे 10 लोग सुनेंगे तभी जागरूकता बढ़ेगी। और अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
2: हमारा अगला प्रश्न, जहां हम रहते हैं सोनभद्र, इससे रिलेटेड है कि सोनभद्र की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं?
0: टीम बी एक बार अपना नाम बता दें।
5: मोहम्मद शाहजैन।
0: बताइए।
5: सर, सोन नदी।
0: और इसके अलावा? ठीक है, चलिए प्रयास किया, बहुत अच्छी बात। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं।
2: जैसा कि आप समाचार तो सुनते ही होंगे, तो अभी वर्तमान का जो समय चल रहा है उसमें युद्ध बहुत जोर से छिड़ी हुई है, तो आप हमें ये बताएं कि युद्ध किन किन देशों के बीच हो रहा है?
0: टीम बी।
5: सर, पहला युद्ध हो रहा है ईरान और यूएसए के बीच में, और दूसरा मेजर युद्ध हो रहा है हमारा रशिया और यूक्रेन के बीच में।
0: काफी हद तक प्रयास किया है।
2: अगला प्रश्न है, क्या आप सभी तो गाने सुनते ही होंगे, तो अभी कौन सी गायिका जिनका की निधन हुआ है?
0: टीम सी। बहुत मशहूर पार्श्व गायिका रही हैं।
3: आशा भोसले जी।
0: जी जी, बिल्कुल सही जवाब। कोई गीत याद है उनका?
3: गीत तो अभी तुम
0: कुछ भी सोच के देखिए। चुरा लिया है तुमने जो दिल को।
3: हाँ, सुना है कुछ।
0: अब अगला प्रश्न हम आपसे ये पूछते हैं, हम किस जिले में रहते हैं और यहाँ पे क्या है आपको पता ही होगा, इसे हम ऊर्जा की राजधानी कहते हैं, क्यों कहते हैं ये बताइएगा। टीम ने।
4: सर, क्योंकि यहाँ पे जो थर्मल प्लांट है वो सबसे बड़ा थर्मल प्लांट है अभी एशिया में था, इस वजह से, और यहाँ से ऊर्जा बनती है, जैसे पानी से भी बनती है, डैम भी है, और ये अभी कोल ये सबसे भी बनती है।
0: बिल्कुल सही जवाब, ऊर्जा की राजधानी इसीलिए इसे कहा जाता है।
2: हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है?
0: टीम सी।
3: भारत रत्न।
0: भारत रत्न पाए हुए किसी व्यक्ति का नाम याद है?
3: भारत रत्न
0: आशा जी का नाम लिया था।
3: यस सर।
0: उनकी बड़ी बहन थी लता जी,
3: लता मंगेशकर,
0: उनको भारत रत्न मिला है ना।
3: ओके।
0: चलिए इनके लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? टीम बी।
5: सर, एक्टिंग।
0: थोड़ा सिमिलर है लेकिन उतना क्लियर नहीं है, कोई ट्राई करना चाहेगा?
1: सर, एक्टिंग, म्यूजिक।
0: टीम सी।
3: बॉलीवुड।
6: डायरेक्टर
0: नहीं। देखिए करीब करीब तो सब लोग आप लोग थे, किसी ने कहा बॉलीवुड, किसी ने कहा एक्टिंग, किसी ने कहा म्यूजिक, सब चीज उसी का रूप है, लेकिन वो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। एक्टिंग तो टेलीविजन में भी हो रही है, मोबाइल में भी हो रही है, गाने भी हम हर जगह गा रहे हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर जो पुरस्कार दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
2: अगला प्रश्न है हमारा, आकाशवाणी से जो प्रसारित किया जाता है युववाणी कार्यक्रम, वो क्या है, किस चीज पर बेस्ड होता है?
0: एक हिंट दे दूं आप लोगों को, किस कार्यक्रम का नाम लिया इन्होंने? टीम बी,
1: न्यू जनरेशन को वो मोटिवेट करने के लिए, अपने वॉइस को बताने के लिए और नई एआई वगैरह की चीजों को बताने के लिए।
0: बहुत सही, बिल्कुल सही बात। इसके प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा था, युववाणी यानी युवाओं की वाणी, जिसमें हम सारी चीजें यूथ को लेकर के एआई रिलेटेड है या जो भी जन जागरूकता की जो भी बातें
2: हैं, आके अपनी बात कहते हैं
0: वो सारी चीजें। चलिए ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे जनपद सोनभद्र की स्थापना कब हुई थी? पहले ये मिर्जापुर जिले में आता था, फिर दोनों को अलग किया गया। चलिए ठीक है, मुझे लगता है किसी को इसका जवाब नहीं पता है, हम बता देते हैं इसका उत्तर, 4th March 1989।
2: आपातकाल में आकाशवाणी की भूमिका क्या है, जब भी इमरजेंसी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है उस वक्त? टीम से
3: सर, लोगों को आपातकालीन सिचुएशन के बारे में जागरूक करने के लिए, बताने के लिए कि वो सतर्क हो जाएं।
0: बिल्कुल, ये आपातकालीन स्थितियां किस प्रकार की होती है?
3: युद्ध, अर्थक्वेक, सुनामीज एंड।
0: बिल्कुल ठीक है, आपातकालीन जो भी स्थितियां हैं, आपके आसपास अगर पानी का लेवल बढ़ रहा है, कोई आग लगती है, कहीं कुछ दुर्घटना की संभावना है, तो उसको अवेयर करने के लिए इसकी भूमिका होती है। आप में से किसको पता है फास्टैग क्या होता है?
4: सर, फास्टैग जैसे कि जो टोल में यूज होता है, जैसे गाड़ी में लगता है, इसे ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से जो पैसे रहते हैं वो टोल के लिए चले जाते हैं।
0: इसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ता है, कुछ पता है?
4: सर, जैसे वो फास्टैग का जो कार्ड आते हैं उसमें फिर पैसे डलवाने पड़ते हैं पर्टिकुलर, तो उससे जो ऑनलाइन स्कैन करते हैं, वहाँ पे कैमरे लगे रहते हैं, उसे स्कैन करके वो आपके बैंक से या उस अमाउंट से वो कट जाते हैं पैसे।
0: बिल्कुल, मोबाइल के थ्रू आपके पैसे, एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जो होता है वो आपका फास्टैग के थ्रू हो जाता है। सही बता दिया, इनके लिए तालियां हो जाए। चलिए अब अगला प्रश्न पूछेंगी रानी।
2: अगला प्रश्न है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है?
0: टीम डी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, तंबाकू में मुख्य नशे वाला पदार्थ क्या होता है? टीम बी,
1: निकोटीन।
0: बिल्कुल सही जवाब, निकोटीन।
2: अच्छा, गाड़ियों से तो आप हमेशा चलते रहते हैं, तो इसमें एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन है कि सीट बेल्ट क्यों जरूरी है?
0: टीम बी।
1: सर, जो मतलब कि हम लोग जाते हैं हाईवे आते हैं और रोड पे ढलांग वगैरह रहती है, तो हम आगे पुश हो जाते हैं, तो उस चीज से बचने के लिए
0: सुरक्षा को ध्यान में,
1: सुरक्षा को, सेफ्टी वगैरह
0: चलेगा। ठीक ठीक, सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं। एक आखिरी प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं कि जल संकट के प्रमुख कारण क्या है? टीम बी,
1: पहले तो हम लोग जल बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइज कर ले रहे हैं, और दूसरा कि हम उन पे गंदगी, जैसे कि पॉन्ड्स वगैरह पे गंदा फेंक रहे हैं तो वो खराब हो रहा है पानी, और जैसे कि हम घर में पानी नल खोल के छोड़ देते हैं और मोटर वगैरह ऑन करके छोड़ देते हैं, उन्हें टाइमली बंद नहीं करते हैं, तो इससे हमारा पानी वेस्ट हो रहा है, और फिर हम इसे रीयूज अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, उसे बोतरी से रीयूज कर सकते हैं, तो यही सारी चीजें।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, और इसी के साथ अब हमारा क्विज था वो समाप्त होता है। बस अब हम थोड़ी देर में अगले राउंड की ओर बढ़ेंगे।
7: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात,
8: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
9: हेलो,
7: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
8: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए,
7: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
8: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
7: ओनली ऑन AIR ओबरा।
10: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है, बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल, और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी, वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो, पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यूनिंग करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी,
0: आकाशवाणी। और अब हम बढ़ रहे हैं सेकेंड राउंड की तरफ, जहां पर आप कुछ पर्चियां होंगी, उनमें से आपको एक पर्ची सिलेक्ट करनी है और उसमें जो भी टॉपिक होगा उस पर आपको कम से कम 2 मिनट लगातार बोलना होगा। अब हम जो है आपके

0: सामने पर्चियां लेकर के आ रहे हैं आप, इसमें से एक एक पर्ची आप लोग निकालिए। सबसे पहले टीम ए, टीम ए ने अपनी पर्ची ले ली है। अब हम आते हैं टीम बी की ओर। टीम बी, इसमें से एक पर्ची निकालिए। टीम बी ने भी एक पर्ची निकाल ली है। और अब हम बढ़ रहे हैं टीम सी की ओर। टीम सी ने भी अपनी एक पर्ची निकाल ली है। और अब बारी है टीम डी की। टीम डी ने भी अपनी एक पर्ची ले ली है। अब हम चारों टीमों से पूछेंगे कि उनको किस किस विषय पर बोलने के लिए मिला है। तो टीम ए बताइए, आपको क्या टॉपिक मिला है बोलने के लिए?
1: करे योग रहे निरोग, मतलब डू योगा स्टे डिसिप्लिन पे मिला है टॉपिक।
0: कितना कंफर्ट है इस टॉपिक के साथ?
1: सर बहुत ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है।
0: टीम बी,
1: सोशल मीडिया के प्रभाव दुष्प्रभाव।
0: कितना कंफर्टेबल है?
1: बहुत कंफर्टेबल है, और ये आजकल तो कॉमन क्वेश्चन कॉमन टॉपिक है, तो हम काफी अच्छे जवाब दे सकते हैं।
0: बहुत अच्छी बात, इस कॉन्फिडेंस के लिए भाई जोरदार तालियां हो जाए एक बार। बहुत अच्छी बात। और अब हम टीम सी की ओर बढ़ रहे हैं। आपको क्या टॉपिक मिला?
2: हमारा टॉपिक है जल संकट कारण व निवारण।
0: कैसा है ये टॉपिक आपके लिए?
2: ये काफी अच्छा है और हम लोग इसके बारे में जानते हैं, ये बहुत अच्छी बात।
0: बहुत अच्छी बात, हमें भी यही चाहिए कि आप लोग अवेयर, और यही आकाशवाणी चाहता है कि जो भी टॉपिक आपको मिले उसके बारे में आप जागरूकता फैलाएं, यही उद्देश्य है। टीम डी,
3: सर हमें मिला है राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका।
0: बहुत अच्छा, कितना कंफर्टेबल है इस टॉपिक के साथ?
3: बहुत कंफर्टेबल है, इसके बारे में हम काफी कुछ जानते हैं।
0: हाँ, तो चलिए ठीक है, फिर से जोरदार तालियां हो जाएं। और सभी टीम अपने अपने टॉपिक्स के साथ बहुत कंफर्टेबल है। टीम ए, टीम बी, टीम सी और डी, आप टीम में दो दो लोग हैं, दोनों में से जो ज्यादा कंफर्टेबल होगा आपकी टीम में से, कोई एक आकर के एक्सटेम्पोर जैसा कि उस टॉपिक पे बोलेगा। और जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ दो मिनट ही इसमें बोलना है। तो सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं टीम ए से।
4: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार अग्रवाल, मैं डीएवी पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ 12th कॉमर्स से। तो जो मेरा विषय है डू योगा स्टे डिजीज फ्री, करे योग रहे निरोग, इससे हमें पता चलता है कि योगा करना चाहिए। योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे योगा अब बाहर भी फैल रहा है, विदेशों में भी फैल रहा है, हर जगह एक तरह का ये ट्रेंड बन चुका है। अब जब भी आप सोशल मीडिया खोलेंगे आपको कोई ना कोई दिख जाएगा कि आप योगा कीजिए, योगा पे वो ज्ञान देता हुआ मिल जाएगा। तो जैसे कि हमारे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, उनको वो सांस लेने में बहुत दिक्कत थी, उनने अनुलोम विलोम किया, उससे उन लोगों का वो फेफड़ा वो बहुत स्वस्थ हो गया। और ये हमें डेली बेसिस पे करना चाहिए, हमें ज्यादा नहीं मान के चलिए एक घंटा या आधा घंटा पे करना चाहिए कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे।
0: चलिए, आपके लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए, बहुत ही अच्छा प्रयास किया। और जैसा कि कहा कि इन्होंने एक बताया योग के बारे में कि योग करने से आपको स्वास्थ्य लाभ होता है। इनके कई दोस्त हैं जिनको श्वास की प्रॉब्लम थी, अनुलोम विलोम करके अपने स्वास्थ्य को ठीक किया। तो
5: अब इस राउंड में हमारी टीम बी आ रही है।
0: टीम बी से कौन आ रहे हैं, सबसे पहले अपने बारे में बताएं।
6: हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम मोहम्मद शाहजहान फ्रॉम क्लास 12th, और आज मैं सोशल मीडिया के प्रभाव व दुष्प्रभाव पे दो मिनट बोलूंगा। सोशल मीडिया हमारे पढ़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। सोशल मीडिया से कई सारे अपने मिसिंग लेक्चर्स जो हमने क्लास में नहीं पढ़ सके उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा AI जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि इस सदी का सबसे बड़ा इन्वेंशन माना जाता है, सोशल मीडिया अब AI को भी बढ़ावा देता है कि हम अपनी पढ़ाई और अपने खेलकूद अपने कई सारे फील्ड्स में AI की मदद से अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है उसको हम लोग अपना अपग्रेडेशन हेल्प कर सकते हैं। सोशल मीडिया का प्रभाव तो अच्छा है, पर इसके कई नुकसान भी हैं। इससे समय की बर्बादी भी होती है, इससे फेक कंटेंट और फेक अफवाह भी फैलती है।
5: और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं टीम सी से, तो आप अपना आइए परिचय दीजिए।
7: मैं टीम सी से इकरा आया डीएवी स्कूल की छात्रा हूँ 12th क्लास। आज का मेरा टॉपिक है जल संकट कारण व निवारण। आजकल जल संकट बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है, अगर हमने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के वर्ल्ड क्राइसिस भी हमें फेस करना पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे पूरे विश्व में सी वाटर केवल 99% है और जो फ्रेश वाटर बचा है वो सिर्फ 1% है। इसलिए फ्रेश वाटर को बचाना हमारे लिए जरूरी है। कारण, इसके कारण ये है कि वाटर लीकेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं हमारे देश में, अनयूजबल यूज और बिना मतलब का वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है इंडस्ट्रीज की वजह से। जो हमारा होली रिवर है गंगा जल, जिसे हमें प्योर कहते हैं, वो इम्प्योर हो जा रही है और हमें बहुत डिजीजेस भी फैल रहा है वाटर पॉल्यूशन।

0: पॉल्यूशन के वजह से और लिमिटेड यूज, जितना जरूरत उतना उपयोग, वाटर लीकेज रिपेयर। इसलिए मैं अंतिम में ये कहना चाहूंगी कि सेव वाटर सेव लाइफ। इसके लिए अब हम सबको मिलकर स्टेप लेना होगा कि इस कारण का निवारण कर सके। थैंक यू।
1: बहुत ही बढ़िया प्रयास। और अब आखिरी में हम बुलाने जा रहे हैं टीम डी से।
2: मैं टीम डी से शाश्वत अग्रवाल, डीएवी स्कूल ओबरा, क्लास 12 का छात्र हूँ। मेरा विषय है युवाओं की भूमिका राष्ट्र निर्माण में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो युवा हैं, जो यंग माइंड्स हैं, वो हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर से अपना योगदान दे रहे हैं और एक यूथ अपने राष्ट्र निर्माण के लिए राजनीति में योगदान दे सकता है और इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट कर सकता है, सोसाइटी में अवेयरनेस फैला सकता है कि उसे एडिक्ट नहीं होना चाहिए किसी बुरी आदत का, नशे का आदि नहीं होना चाहिए, और यूनाइटेड रहना चाहिए और अपने देश को और विकसित बनाना चाहिए। और अंतिम में ये कहना चाहूंगा मैं कि अगर वो नशे से और बुरी आदतों से दूर रहेंगे तो और भी ज्यादा योगदान दे पाएंगे अपना देश निर्माण में।
3: बहुत अच्छी बात। और टीम ए, टीम बी और टीम सी, साथ ही टीम डी के एक एक कैंडिडेट ने यहाँ पर आकर के जो भी विषय उनको मिला उस विषय पर उन्होंने अपनी बात कही। जितना वो कह सकते थे, जितना उनको समझ आए, उन सभी चीजों के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आपके प्रयास के लिए जोरदार तालियां। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न मंच का जो ये कार्यक्रम था जिसमें हमने आप लोगों से प्रश्न पूछे और लगातार एक विषय पे बोलने के लिए कहा, यही समाप्त होता है। और अब थोड़ी देर में हम आपको आपका क्या रिजल्ट रहा है, कितने मार्क्स किसको क्या मिले, कौन विजेता टीम रही है, इस बारे में अभी हम आपको बताएंगे। और अब हम अनाउंस करेंगे उस टीम का नाम जो इस प्रश्न मंच में, इस प्रतियोगिता में विजयी रही है। तो उस टीम का नाम है टीम बी, जिसमें शामिल थी सृष्टि सिंह और आपके साथ थे शहजैन। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आपको बोलने का मौका मिला, आपने अपनी बात कही, जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए उसके उत्तर आप लोगों ने दिए। तो इस पूरे प्रक्रिया में जो फीलिंग हुई उसके बारे में आप लोग बताइए, कैसा लगा और आगे किस तरह की तैयारी रहेगी, कभी अगर और दोबारा मौका मिला तो क्या करेंगे?
4: सर ऐसे तो थोड़ा सा डर तो अंदर से लगता ही है, पर इस प्रतियोगिता से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत बढ़ोतरी हुई है, जो कि ऑब्वियसली मेरे फ्यूचर में काम आएगा।
3: बहुत अच्छी बात। सृष्टि आप क्या कहेंगे?
5: ऐसे एक्सपीरियंस से हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है और हमें बोलने की क्षमता मिलती है कि हम दूसरों के सामने अपने विचार प्रकट करें।
3: बहुत अच्छी बात।
5: और इससे तो मुझे बहुत वो मिली प्रेरणा कि मैं कुछ करंट अफेयर के बारे में और जानूं और लोगों के सामने अपने विचार को प्रकट करूं। और बस यही सब कि ऐसी चीजें हमारे स्कूल में होना चाहिए जिससे हमारा दिमाग खुलेगा, बस पढ़ाई के अलावा हमें कुछ और चीजों में भी अपना ध्यान लगाना चाहिए।
3: बहुत अच्छी बात कि पढ़ाई के अलावा हमें और भी समाज के दूसरी जो जरूरी चीजें हैं उससे हमें जुड़ना चाहिए और एक अच्छे सामाजिक नागरिक, यही आकाशवाणी बनाना चाहती है। आपका उद्देश्य भी इसका ये है कि जागरूकता, बस आप लोग हर विषय में जागरूक हो, किताबों से आगे की दुनिया भी है उनको भी समझे, जाने और देखें। और बाकी जो टीमें थी, टीम ए, टीम सी और टीम डी, इन लोगों ने भी बहुत अच्छे प्रयास किए। ऐसा नहीं कि इन प्रश्नों के उत्तर उनको नहीं आते थे, बस हाथ उठाने में जिसका हाथ पहले उठ गया वो टीम विनर हो गई। तो आप लोगों के लिए भी जोरदार तालियां। और अब ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सभी को बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं।
6: दोस्तों कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिवार और शिक्षकों का सहयोग भी काफी सराहनीय रहा। उन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाया और आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित किया। बच्चों के मन में भी आकाशवाणी के प्रति विशेष उत्सुकता दिखाई दी। कई विद्यार्थियों ने रेडियो और प्रसारण से जुड़ी बातें जानने में भी रुचि दिखाई और कार्यक्रम का हिस्सा बनकर बेहद उत्साहित नजर आए। दोस्तों जब नई पीढ़ी ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है तभी समाज और देश मजबूत बनता है। आज इन बच्चों की चमकती आंखों में जो सपने दिखाई दिए वही आने वाले भारत की उम्मीद है। इसी विचार के साथ अब डीएवी पब्लिक स्कूल ओबरा के प्रधानाचार्य संजय कुमार पांडे जी अपने संदेश के साथ।
7: हम सभी के बीच आज आकाशवाणी की टीम उपस्थित है और आकाशवाणी एट 90 के इस विशेष अवसर पर हमारे विद्यालय में युवाओं के लिए जो ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किया गया है वह निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बनेगा। सबसे पहले मैं आकाशवाणी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हमारे विद्यालय को इस आयोजन के लिए चुना। जब हम आकाशवाणी की बात करते हैं तो केवल एक रेडियो स्टेशन की बात नहीं करते, बल्कि हम उस आवाज की बात करते हैं जिसने दशकों तक देश को जोड़े रखा। क्योंकि आकाशवाणी केवल समाचार नहीं सुनाती, बल्कि समाज के दिल की धड़कनों को आवाज देती है। हम सभी जानते हैं कि युवाओं की ऊर्जा किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। यदि युवाओं को सही दिशा, सही मंच और सही प्रेरणा मिल जाए तो वे समाज और देश दोनों का भविष्य बदल सकते हैं। इसी सोच के साथ वर्षों से आकाशवाणी ने कार्यक्रमों के माध्यम से युवा पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है। आज हमारे विद्यालय में आयोजित प्रश्न मंच प्रतियोगिता में भी उस सोच का सुंदर उदाहरण है। यह कार्यक्रम केवल प्रश्न और उत्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, उनकी ज्ञान क्षमता और उनकी सोच को विकसित करने का एक सार्थक प्रयास है। मैं विशेष रूप से यह कहना चाहूंगा कि आज के समय में बच्चों के भीतर जानकारी तो बहुत है, लेकिन उन्हें अपने ज्ञान को प्रस्तुत करने का अवसर कम मिलता है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों को मंच पर आने का साहस देते हैं। वे सीखते हैं कि कैसे दबाव में भी शांत रहकर उत्तर देना है, कैसे टीम भावना से आगे बढ़ना है और कैसे ज्ञान को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करना है। आज जब आकाशवाणी की टीम ने हमारे विद्यालय से सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से जुड़े प्रश्न पूछे, तब बच्चों ने जिस उत्साह और आत्मविश्वास के साथ भाग लिया, उसे देखकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई। कई विद्यार्थियों ने बहुत ही उत्कृष्ट उत्तर दिए। कुछ बच्चे पहली बार मंच पर आए, लेकिन उनके आत्मविश्वास ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि अवसर मिले तो हर बच्चा अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित कर सकता है। जीवन में सफलता केवल पुस्तकीय ज्ञान से नहीं मिलती, उसके लिए आवश्यक है जागरूकता, संवाद क्षमता, नेतृत्व और आत्मविश्वास। ऐसी प्रतियोगिताएं इन्हीं गुणों को विकसित करती हैं। आज हम सभी आकाशवाणी @90 मना रहे हैं। 90 वर्ष की यह यात्रा भारत में प्रेरणादायी है। इतने लंबे समय तक लोगों के विश्वास से जुड़े रहना कोई साधारण बात नहीं है। यह आकाशवाणी की प्रतिबद्धता, निष्पक्षता और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी को दर्शाता है। हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी सुबह आज भी रेडियो की आवाज से होती है। कई परिवारों में आज भी समाचार, भक्ति संगीत, साहित्य कार्यक्रम और युवाओं से जुड़े प्रसारण पूरे ध्यान से सुने जाते हैं। यह आकाशवाणी की उस विश्वसनीय पहचान का प्रमाण है जिससे वर्षों की मेहनत और जन सेवा से बनाया गया है। मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल आधुनिक तकनीक पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। हमें उन माध्यमों से भी जुड़ना चाहिए जो ज्ञान, संस्कृति और संवेदनाओं को बढ़ाते हैं। रेडियो ऐसा ही माध्यम है। रेडियो सुनने की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हमारी कल्पना शक्ति को विकसित करता है। यही कारण है कि रेडियो आज भी दिलों से जुड़ा हुआ है। साथ ही मैं आकाशवाणी की पूरी टीम को विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने विद्यालय में आकर बच्चों के साथ इतना आत्मीय संवाद स्थापित किया। आपके इस प्रयास से विद्यार्थियों को न केवल सीखने का अवसर मिला, बल्कि उन्हें यह अनुभव भी हुआ कि उनकी आवाज और उनकी प्रतिभा का भी महत्व है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
6: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
8: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
9: हेलो,
6: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
8: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
6: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
8: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक, योर स्टाइल,
6: ओनली ऑन AIR ओबरा। तो दोस्तों, आज के युवावाणी कार्यक्रम में शिक्षा, ज्ञान और मनोरंजन का ये सफर बस यहीं तक। कार्यक्रम से मुझे यानी आशीष वर्मा को दें अनुमति। सुनते रहें, जुड़े रहें आकाशवाणी ओबरा के साथ।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। प्रस्तुत है ग्रामीण बहनों के लिए कार्यक्रम घरनी।

0: राम राम बहन लोगन, अपन बैठी एक बार फिर लग गई। और सुनावे आप लोगन का हाल समाचार बा? सब कुशल मंगल बा न? घर परिवार बाल बच्चन सब राजी खुशी भावे न? बहन लोगन देखे घर के जोन कहा जाला मंदिर कहल जाला, अगर घर में सुख शांति बनल रहे आ धूप दीप जलत रहे, पति पत्नी में प्यार सम्मान हो, घर के बच्चन में बुजुर्गन में प्रेम हो आदर हो, तो घर में आनंद ही आनंद होला। और कहीं भी अगर आप बाहर गईल हैं कौनो भी काम से तो भाग के घर में आवे के मन करेला। और घर में अगर कौनो तरह का कलेश बा, घर का मन से धू पति हो पुत्र हो पिता हो, अगर गलत रास्ते पर बाटें कौनो तरह का नशा का शिकार हमें, तो घर में आके कलह करी हैं, घर खर्च ना दी हैं, मारपीट तक करेला, ऐसे उनका तो देखे मान सम्मान तो समाज में घटबे करी, साथ में परिवार के लोगों के भी लोग इज्जत की नज़र से ना देखे ना। अब कुछ लोग कहेला कि नशा कैला से दुख दर्द कम हो जाला, जबकि ये सरासर गलत है, बल्कि एक बढ़िया बहाना है। नशा करे वालन व्यक्ति देखे गलत राह पर चलत जालेन, और आगे जब उनके ना पैसा मिलेला आसानी से नशा करे खाते सामान खरीदे खाते, तो चोरी जैसन घटना के भी अंजाम देवे लगेलन। बहन लोगन देखा नशा जीवन के नरक बना देला, नशा के बाद व्यक्ति अपन मानसिक और शारीरिक संतुलन खो देलन, परिवार के देखें आर्थिक क्षति का सामना करे के पड़ेला, समाज भी धीरे धीरे ऐसन व्यक्ति के नकार देला। बीड़ी बा सिगरेट बा गांजा है शराब है भांग है अफीम है खैनी है, तमाम नशीला चीज है जेकर सेवन बड़े सांस लोग करेला। और देखें अगर जीवन बचावे के है तो बहन लोगों हम लोग के प्रयास करे के पड़ी, और अपने घर का अगर मनसेदू हैं बचुआ हैं केहू भी अगर गिरफ्त में अगर आवत है तो हम लोग धीरे धीरे करके उनके नशा से हम लोग के छुड़ावे के हुई बचावे को हुई उपाय अपनावे को हुई, और प्रयास करके हर चीज़ हासिल हो सकत है, बस प्रयासरत रहें आप लोग। और बहन लोगन देखा आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई के रेड क्रॉस के संस्थापक और पहले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी डुनेंट के जन्मदिन के अवसर पर मनावल जाला। ये दिन का युद्ध प्राकृतिक आपदा और महामारी जैसन आपातकालीन स्थिति में निस्वार्थ भाव से मानवीय सेवा करे वाले स्वयं सेवक और संस्था के कार्य के सम्मान देवे के लिए मनावल जाला। ये मानवता और दयालुता के मूल्य पर चिंतन करे और दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लावे में रेड क्रॉस आंदोलन के असाधारण प्रयास के स्वीकार करे का दिन है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2026 देखें मानवता करुणा और सेवा के महत्व का एक सशक्त याद दिलावेला। मानवता को जीवित रखना की थीम के साथ यह दिन उलाखन स्वयं सेवक लोगन के समर्पित है जो निस्वार्थ भाव से जीवन बचावे और विश्व भर में पीड़ा कम करे के लिए काम करत हवे। तो यही से जुड़ल जानकारी भी हम शामिल कर लें अपने बैठकी में बहन लोगन कि मानवता की सेवा में समर्पित रेड क्रॉस संस्था डॉक्टर सुमन कुमार जायसवाल अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी सोनभद्र से हम अपन जो है सुरसई द्विवेदी बहन उनसे बातचीत करत हैं। ये जानकारी हम लोग पहले सुनल जाए फिर हम लोग मनसाइन भी सुनल जाए।
1: बदलो बदलो आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: 8 मई विश्व रेडक्रॉस दिवस के नाम से जाना जाता है। मानवता की सेवा में समर्पित रेडक्रॉस संस्था कैसे कार्य करती है और विशेषकर हमारे जनपद सोनभद्र में इसका क्या योगदान है, हम कैसे इससे जुड़कर एक स्वयं सेवक बन सकते हैं, किस तरह से जरूरतमंद अपने लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं, इन तमाम जानकारियों के लिए आज हमारे साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सोनभद्र से उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के सरकारी सचिव डॉक्टर सुमन कुमार जायसवाल जी हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर जी, जैसा कि आज का दिवस है
1: जी,

0: रेड क्रॉस दिवस
1: जी मैं
0: तो आज हम चर्चा करते हैं रेड क्रॉस को लेके।
1: जी हाँ,
0: तो पहले तो हम एक छोटी सी चर्चा, विशेष रूप से रेड क्रॉस क्या है, किस उद्देश्य शुरू हुआ, कब शुरू हुआ।
1: सबसे पहले प्यारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संस्था है जिसकी स्थापना सन 1863 में सर जीन हेनरी ड्यूनॉट ने की थी। इसका मकसद है बिना किसी भेदभाव के हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाना। हम सर हेनरी ड्यूनॉट जी के जन्म दिवस 8 मई के दिन रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, इंसानियत, सेवा और सहयोग के नाम।
0: जी जी जी बिल्कुल। अब हम अपने सोनभद्र के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारे सोनभद्र में इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई।
1: जी मैम, हमारे सोनभद्र में यह संस्था सन 1992 से कार्यरत है और अनेकों सदस्य बनकर समाज सेवा का कार्य हमारे सोनभद्र में कर रहे हैं। हमारे सोनभद्र में इस समय कुल लगभग 2000 स्वयं सेविक इसके मेंबर हैं। अगर हम अपने सोनभद्र जिले की बात करें तो यहाँ की रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा भी लगातार सेवा में जुटी है। हमारे शाखा के सदस्यों ने निक्षय मित्र बनकर टीबी के रोगियों को गोद लिया है तथा उन्हें दवा का कोर्स पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। साथ ही पोषण पोटली भी सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा। सोनभद्र के सदस्यों द्वारा समय समय पर रक्तदान कैंप का भी आयोजन किया जाता है। जरूरतमंदों को राहत सामग्री भी दी जाती है। स्कूलों में विभिन्न विषयों पर बच्चों को जागरूक भी किया जाता है और असाध्य रोग से ग्रसित रोगियों को आर्थिक मदद भी दी जाती है।
0: जी जी जी, बड़ी अच्छी बात बताई आपने। एक स्वयं सेवक यानी जो सदस्य बनना चाहता है,
1: जी हाँ,
0: क्या उसके लिए कोई विशेष योग्यता या मतलब पात्रता की शर्तें हैं क्या?
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस संस्था का सदस्य बन सकता है और इस संस्था से जुड़ने के लिए हमारे कई तरह के सदस्यताएं हैं, जैसे संरक्षक सदस्य, पैट्रॉन मेंबरशिप जिसका पंजीयन फीस 25,000 रुपया है और इनका सर्टिफिकेट महामहिम भारत के राष्ट्रपति जो कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं, इनके द्वारा जारी किया जाता है। सह संरक्षक सदस्यता जिसका फीस 12,500 रुपये है। आजीवन सदस्यता जो कि बहुत ही पॉपुलर सदस्यता है, इसकी फीस मात्र 1,000 रुपये है।
0: जी।
1: और संस्थागत सदस्यता, इसमें जैसे कोई भी संस्था, स्कूल, स्वयंसेवी संस्था, एनजीओ, पेट्रोल पंप इत्यादि इसकी सदस्यता ले सकते हैं। इस तरह से जो है सदस्य बनकर रेड क्रॉस के थ्रू मानवता की सेवा कर सकते हैं।
0: अब बात आती है कि सदस्य बन के हम सेवा दे रहे हैं, मगर जिनको हम सेवा दे रहे हैं क्या उनका भी कोई क्राइटेरिया होता है कि हम किस तरह के लोगों को, मतलब किस वर्ग के, जैसे लाभार्थी इनके कौन होते हैं?
1: हमारे लाभार्थी जो भी मानव जाति जो भी दुख या दर्द में या पीड़ित अवस्था में, आपदा की पीड़ित, बाढ़, भूकंप इत्यादि दुर्घटना से पीड़ित लोग होते हैं, उनकी पीड़ा और दुख दर्द को कम करने के लिए हम स्वयंसेवी सदा तत्पर रहते हैं और इस तरह के लोगों को हम जो है कि सर्वप्रथम रेड क्रॉस के सदस्य बनकर उनको जो है कि उनकी पीड़ा को कम करने का प्रयास करते हैं।
0: जी जी, डॉक्टर साहब अभी आपने एक बात कही थी कि कोई जटिल बीमारी वाला व्यक्ति है,
1: जी हाँ,
0: उसे भी आपके संस्था द्वारा सहयोग दिया जाता है।
1: जी हाँ।
0: सबसे पहले उनको सहयोग देने के लिए आप कैसे चिन्हित करते हैं कि हाँ वो उपयुक्त पात्र हैं?
1: हमारे पास जिलाधिकारी महोदय जो कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा सोनभद्र के अध्यक्ष भी हैं, उनके माध्यम से या फिर हमारे माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी के माध्यम से कोई भी असाध्य रोगी आर्थिक सहायता की मांग करते हुए पहुंचता है तो हम कमेटी के माध्यम से निर्धारित करके उन्हें आर्थिक सहायता जो है प्रदान करते हैं।
0: जी जी जी, तो इसकी कोई राशि भी निर्धारित है कि कितना तक आप मदद करते हैं और किस तरह की मदद करते हैं? उपचार में मदद करते हैं, आर्थिक रूप से मदद करते हैं, उनके साथ जैसा आपने कहा कि निश्चय मित्र होते हैं वो उनके साथ व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर मदद करते हैं?
1: हम लोग उनके जो इलाज का पेपर्स हैं उनको निरीक्षण करते हैं, जरूरत पड़ने पर मरीजों को घर तक जा करके उन्हें देखते हैं और फिर एक सहायता की राशि जो भी कमेटी के द्वारा निर्धारित की जाती है 10,000 रुपये 20,000 रुपये उसे जो है कि चेक के माध्यम से उनके अकाउंट में दिया जाता है।
0: जी जी जी, इससे एक अच्छी आर्थिक मदद भी हो गई। डॉक्टर साहब, अभी ना जैसे स्वयं सेवकों की अगर हम बात करें तो उसमें आपने दो नाम लिए हैं, एक स्वयं सेवक जो आजीवन सदस्य बन गए,
1: जी,
0: दूसरा आपने कहा कि हम निश्चय मित्र रखते हैं जो स्थानीय स्तर पर लोगों को दवा और उनकी खुराक के लिए उनकी मदद करते हैं, तो ये दोनों कैसे एक दूसरे से भिन्न हैं?
1: जी हाँ, हमारे जो सदस्य हैं वो निश्चय मित्र बनकर टीबी के रोगियों को गोद लेते हैं तथा उन्हें दवा का कोर्स पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और साथ में समय समय पर उन्हें बुलाकर हम लोग उन्हें पोषक पोटली इत्यादि भी उपलब्ध कराते हैं।
0: जी जी जी, मतलब न केवल उनको दवा दिलवाना, डॉक्टर से संपर्क कराना इतना ही है, बल्कि उनकी दवा नियमित रूप से चल रही है कि नहीं बिना किसी अवरोध के।
1: जी जी जी,
0: और उनके उचित खुराक का भी ख्याल रखा जाता है।
1: हाँ,
0: तो क्या उनके खुराक के लिए किसी प्रकार का सहयोग?
1: हाँ, हम लोग गरीब जो कि पौष्टिक आहार लेने में असमर्थ होते हैं उनको जो है कि संस्था की तरफ से, उनके सदस्यों की तरफ से या फिर हमारी शाखा की तरफ से आर्थिक सहायता भी देते हैं।
0: अब ये बताइए कि कोई व्यक्ति अगर जुड़ इस स्वयंसेवक बनना चाहे या सहायता प्राप्त करना चाहे तो वो कैसे आपसे संपर्क करे?
1: हाँ बिल्कुल, हमारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय प्रथम तल कमरा नंबर 17 रावर्ट्सगंज में स्थित है, साथ ही 7317785768 पर मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं या फिर 7318493702 पर श्री विनय श्रीवास्तव जी से भी संपर्क कर सकते हैं और इस तरह से हमारे संस्था से जुड़कर विभिन्न सामाजिक कार्य कर सकते हैं और मानवता की सेवा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, अब आपने बताया कि हमारे जिलाधिकारी महोदय हमारे जनपद में कार्य करने वाली रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसके अध्यक्ष होते हैं।
1: जी हाँ,
0: तो जैसे आपने बताया कि कैंप चलाते हैं, अभियान चलाते हैं जगह जगह, तो क्या हमारे जिलाधिकारी महोदय स्वयं इसके लिए आप लोगों को किसी प्रकार की सहायता, चाहे प्रेरणा या स्थानीय स्तर पर अपनी मौजूदगी से किस तरह का उनकी तरफ से प्रेरणा मिलता है?
1: हाँ बिल्कुल, हमारे अध्यक्ष महोदय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हमें प्रोत्साहित किया जाता है, समय समय पर हमारी समीक्षा बैठक उनके द्वारा ली जाती है, इसके जो है कमेटी है गठित जिसमें 15 मेंबर्स हैं जिनके जिनमें सभापति, उपसभापति, कोषाध्यक्ष, सचिव एवं अन्य 10 लोगों का एक कमेटी गठित है। उन कमेटी के माध्यम से हम जिलाधिकारी महोदय के अपने समस्या से अवगत कराते रहते हैं और उनसे हेल्प जो है लेकर के सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाते रहते हैं। समय समय पर विभिन्न सामाजिक कार्यों, राहत शिविरों में जिलाधिकारी महोदय स्वयं उपस्थित होकर अपने हाथों के द्वारा लाभार्थियों को सामान का वितरण करते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं।
0: जी बहुत अच्छी बात है, इससे यह हमारे श्रोताओं को अब तक जागरूक हुए होंगे इन बातों से कि रेडक्रॉस संस्था जो हमारे सोनभद्र में कार्य कर रही है उसमें अगर वो जुड़ना चाहें तो आसानी से जुड़ सकते हैं और एक अच्छे भाव में और वैध संस्था, क्योंकि देखिए आज के समय में बेशक 1,000 रुपया फीस है मगर उसके लिए भी ठगी जैसे चीजें चल रही हैं, तो अपनी तमाम भ्रांतियों को त्याग कर आप रेड क्रॉस से जुड़ें, जरूरतमंदों की मदद करें और स्वयं एक इंसान होने का गौरव प्राप्त करें।
1: बिल्कुल।
0: तो चलते चलते डॉक्टर साहब, आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं श्रोताओं से यह कहना चाहूंगा कि वो आगे बढ़ें, देश के लिए कार्य करें। बस एक छोटा सा कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है।
0: बिल्कुल,
1: हम सभी छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, रेडियो के लिए बातचीत किए, आपको इस सुंदर जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: बहन लोगों ने हम लोग संदेश सुन ली है जा, और उससे पहले जानकारी सुन ली है जा कि मानवता की सेवा में समर्पित रेड क्रॉस संस्था डॉक्टर सुमन कुमार जायसवाल अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपन सुरसई द्विवेदी बहन के बातचीत भइल है। अब इन लोग एक धन्यवाद बनत है तो एक मनसाइन के साथ। तो आज देखें भोजपुरी फिल्म का हम लोग गीत सुनल जाए भैया हमार, और आवाज़ है श्रेया घोषाल उदित नारायण का। तो हम लोग आमे ये गीत का आनंद लिहल जाए और साथ में संदेश भी सुनल जाए।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: बहन लगान इतना अच्छा हम लोग गीत सुन लिए, संदेश भी सुन लिया, जो आनंद आई ना अपने बैठ के, मुझे बढ़िया बढ़िया गीत गौनाई हो जाला ना तो एकदम मन चंगा हो जाला और लगेला कि थकान दिन भर का काम धंधा का मतलब निकल गई बा और बड़ा आनंद में मन हो जाला और फिर जो है काम करे में मन लगेला, मन प्रसन्न हो जाला सब मिला के। तो वही लोगों ने देखा हम एक गीत और सुना जी, हम लोग गंगा मैया तो हैं चुनरी चढ़ेबो और आवाज़ है उदित नारायण पूर्णिमा का। और लेकिन उससे पहले आप लोगों से कुछ कहल चाहब कि देखें वैश्विक सड़क सुरक्षा के बारे में, देखें उद्देश्य यह है कि पैदल यात्री और साइकिल चालक का सुरक्षा, बड़ बड़ जो गाड़ी है मोटर है ट्रक है सड़क पर लगातार दौड़ रहा है, लेकिन जो साइकिल चलावता पैदल चलत बा ओकर ख्याल रखल भी तो बहुत जरूरी बा। कहें कि रोज देखें कुछ ना कुछ कोनो ना कोनो खबर सड़क दुर्घटना से होखे वाली ये कुल जौन होला मौत एक्सीडेंट के बारे में सुने के मिल ही जाला, तो ये सिर्फ बेख्याली और असावधानी के कारण होला। देखा हमेशा हमारे लोगों के अपने परिवार के लोगों के और बच्चों के चेतावनी जाला कि बाएँ चलें सावधानी पूर्वक चलें, लेकिन जौन हवे फिर भी कुल देखें हम लोग के सुने के जाने के मिलेला। तो हम तो कहब कि बस आप लोग जब भी बाहर निकलें तो अपन रक्षा सुरक्षा अपने हाथ रखें और सावधानी पूर्वक चाहे गाड़ी से हैं चाहे पैदल हैं चाहे साइकिल से हैं तो आप लोग अपन ख्याल खुद रखें। और यही के साथ देखें अब हम लोग एक गीत और सुना जाए, ये गंगा मैया तो है चुनरी चढ़ेबो, आवाज़ उदित नारायण पूर्णिमा का, आवे गीत सुना जाए।

वहीं लोगों ने देखा हम लोग ये गीत सुने हैं जहाँ उदित नारायण पूर्णिमा के आवाज़ में, और वहीं लोगों ने देखा है इसमें लू से धूप से आप लोग बचें, दोपहर में निकले से बचें, और निकले के पड़े तो छाता ले लें, सर ढक लें और खूब पानी पी के भरपेट तब निकलें। और यही के साथ आज की बैठकी बस यहीं तक, अगले बैठकी में फिर आप लोगों से बात हुई, मुलाकात हुई, तो सब महिलाओं के राम राम।

अभी ग्रामीण बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घरनी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप भोजपुरी समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह हो। एपीजे
1: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हमें कि कुछ महीना के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़ल दुई गो खास आयोजन में शामिल भेल उनके खातिर सौभाग्य का बाती हो। वहां के आज एगो राष्ट्रीय दैनिक में लिखल लेख में बतौने की पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन का 75 साल पूरा भैले के उपलक्ष्य में सोमवार के वहां के गुजरात जाय। एगो रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के लेख के अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर साझा कर ले हमें। श्री योगी कहले हमें कि सोमनाथ खाली एगो मंदिर नहीं बल्कि हमनी के सभ्यता का अटूट संकल्प हो। प्रदेश सरकार राज्य भर में स्थापित सज्जो स्मार्ट मीटरन के पोस्टपेड मोड में संचालित कैले के आदेश जारी कर दिले हो। एगो रिपोर्ट।
3: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कल बताया कि RDSS योजना के तहत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड सिस्टम में परिवर्तित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को बिजली की खपत

0: के बाद बिल प्राप्त होंगे। मई 2026 में खपत हुई बिजली का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के तहत जारी किया जाएगा। यह नई व्यवस्था पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल और पश्चिमांचल बिजली वितरण निगमों के साथ साथ KESCO कानपुर में भी लागू की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। आकाशवाणी लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रेम चंद्र गुप्ता।
1: स्मार्ट मीटर और बिजली बिल से जुड़ल शिकायतिन के समाधान बदे 15 मई से 30 जून 2026 ले प्रदेश भर में कैंपो लगावल जाई। ऊर्जा मंत्री आज लखनऊ में बतौलन कि अधिशासी अभियंता आ उपखंड अधिकारी कार्यालयन पर यह विशेष शिकायत निस्तारण कैंप का आयोजन हुई। साथ ही हर कार्यालय में विशेष हेल्प डेस्क बनावल जाई, जहां बिल संशोधन आ तकनीकी शिकायतन का ओजुक में निस्तारण कैल जाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत छठवां युवा संगम का आयोजन कर रहा हो। एकर उद्देश्य कई गो राज्यन आ केंद्र शासित प्रदेशन के नौजवानन में सांस्कृतिक एकीकरण के बढ़ावा दिहल आ लोगिन के बीचे संपर्क के मजबूत बनावल हो। एकरे तहत देश के कई हिस्सन में नौजवान प्रतिभागी जीवन विकास, संस्कृति विरासत, शिक्षा पर्यटन, नवाचार आ श्रेष्ठ कार्य प्रणालियन के कई गो पहलुअन को अनुभव करे बदे सहयोगी राज्यन आ केंद्र शासित प्रदेशन को दौरा कर रहल हवें। आकाशवाणी राष्ट्र के प्रति अपन विशिष्ट सेवा के 90 साल के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन कैलस। प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी आ आकाशवाणी का महानिदेशक राजीव कुमार जैन आकाशवाणी भवन से यह मैराथन के रवाना कैलें। यह मौका पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी कहने कि मैराथन के जरिया से फिटनेस का संदेशा जनता ले पहुंचावल जा रहा हो।
2: हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी का महानिदेशक राजीव कुमार जैन बतौलें कि ये आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के तौर पे आकाशवाणी की ओर से देश के सेवा में कैल गैल योगदान के दर्शावेला।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक इस पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: मौसम विभाग आज प्रदेश के पूर्वी या पश्चिमी जिलन में कहीं कहीं बरखा आ गरज चमक के साथ बौछार पड़ने का संभावना जतौले हो। विभाग के मुताबिक पूर्वी जिलन में बिहनहुं यह स्थिति रही। ए बीचे मौसम विभाग की ओर से प्रदेश भर में आज कहीं कहीं, वही पूर्वी जिलन में बिहने कहीं कहीं बिजली गिरले आ तेज झोंकेदार बेयार चलने का येलो अलर्ट जारी कैल गैल बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
5: FM पर आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 7:05 हुए हैं। अब ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम
1: राम
0: भैया, आपों के राम राम भगेलो भैया, पंचैती के भैया देखा डुगडुगी बजल। अब पंचैती के डुगडुगी बजेला भैया, तो हम लोग के आपसी बातचीत के माध्यम से बहुत सारा जानकारी सुने और समझे के
1: भैया।
0: मिलेला
1: देखा
0: भैया।
1: एगो यही जुगाड़ बा हम लोगन के अपन बात कहे के और एक दूसरे के बात जाने के हो, और ये समय देखते हुआ कि हम लोगन के हर तरह के बात जानने की जरूरत बा। का है कि मौसम बदल रहल बा, और मौसम बदलल ला तो देखा कहीं कहीं बरबरामी भी बढ़ जाला।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसने में हम लोगों के बहुत सजग और सतर्क रहने के जरूरत बा, और इससे हम लोगों के हर तरह के काम के ओर ध्यान दिहल जरूरी बा। खेल कूद के तरफ भी ध्यान दिहल जरूरी होखेला, और अपन कुछ जौन पुरान बात रहला, पुरान पद्धति की बात रहला भैया, ओकरो हम लोगन के देख रेख कर जरूरी बा, अपनावल जरूरी होला।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसने में अब मौसम के बात लेला, तो मौसम जब उतार चढ़ाव होला भैया, ते में हम लोगन के अपने अंदर जोन बात शरीर के सहे के क्षमता होला, तो वो हिसाब से हम लोगन के काम करे के बा।
0: बिल्कुल एकदम सही कहा था भगेलू भैया। जैसे मौसम में जिस तरह से तापमान एकदम लगातार बढ़त जाते हुए, हम लोगों के अपने स्वास्थ्य, अपने लइकन बचपन घर परिवार के स्वास्थ्य के देखभाल कैले की जरूरत हुए, और ओकरे साथ साथ जौन भी पशु चुहुआ हुए उन लोगन के भी शुद्ध जौन बाकी पानी और चारा देने की जरूरत हुए, और छाया में बंधले की जरूरत हुए, और ओकरे साथ साथ भी देखा कोई भी बीमारी या लू लगले के अगर संभावना हुए, या भी देखा शरीर में आभास होते हुए, तो निश्चित रूप से बिना देर के लिए हम लोगों के नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जा करके और डॉक्टर साहब से मिल करके अपन उपचार करेले की जरूरत हुए। काहे कि भैया देखा जब हम लोगों के स्वास्थ्य सही रही तभी भैया देखा हम लोगों ने अपने घर गृहस्थी के बढ़िया से चला सकेला भैया।
1: और ओकरे साथे भैया देखा हम लोगन के कोनो काम करे के बाद, अपन विकास करे के बाद, तो सबसे पहले अपन समाज के निर्माण करे के चाहिए, गांव गिराव में एकजुटता बनावे के चाहिए,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तबे जाकर के हम लोगन के विकास हो सकला। जैसे देखा पहले तक काम अपन घर होला, घर पहले अपन सुधरवा भैया, सब कोई एक हिसाब से चलिए, तो आस पड़ोस के भी देख करके ना अपने घर में भी वो तरीका के आदत डालिए, और जब घर सब सही हो जाए तो आस पड़ोस सही हो, आस पड़ोस से गांव, गांव से तब जाकर के अपन आगे सही निर्माण होखेला।
0: बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही क्या हुआ भगेलो भैया। और आज 8 मई हुए, और हर वर्ष 8 मई के विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनावल जाला। पंच भैया हो ई दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक जो उनकी भैया देखा शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रहलन जीन हेनरी न्यूटन के जन्म के उपलक्ष्य में भैया देखा मनावल जाला। और 8 मई 1828 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इनकर जोन बाकी जन्म भइल रहले। और भैया हो जोन बाकी रेड क्रॉस दिवस मनावे के जौन उद्देश्य हुए वो ये हुए कि भैया देखा हम लोगों की उदारता, सहानुभूति और निस्वार्थ भाव से लोगों के सेवा करे के जौन हम लोगों के सामाजिक दायित्व हुए, ओकरा भैया देखा पूरा कैले के जौन बाकी जरूरत हुए। और ओकरे साथ साथ भैया देखा हम लोगों के जब हम लोगन सामाजिक प्राणी है, तो हम लोगों के आस पास या गाँव गिराव में जौन भी लोग हुआ उनके जौन बाकी जौन के असहाय हुआ और जिनके सेवा जिनके जौन बाकी देखभाल के जरूरत हुए, सेवा की जरूरत हुए, या भी देखा अपने पास जोन अपने आसपास भी देखा शांति बहाल कैले की जरूरत हुए, तो निश्चित रूप से हम लोगों के अपने आसपास के सद्भाव के बना करके रखे के चाहिए, और जोन भी लोग हुए उन लोगों के मिलजुल के भी देखा विकास के क्रम में आगे बढ़ने की जरूरत हुए और एक दूसरा के सहयोग कैले की जरूरत हुए।
1: भैया देखा यही से मिलल जुलल बात हम लोगों के तो बात होते रही, लेकिन आज यही से मिलल जुलल बात पंथ लोगों के बीच शामिल कैले ही कि विमल भाई जी से, जौन प्रबंध बनवासी सेवा आश्रम गोविंदपुर के हवन, के समावेशी समाज निर्माण से गांव का विकास संभव के तरीके से होखे के चाहिए, इनसे भोला भैया बातचीत कैले हवन, तो सुनल जाए।
0: बिल्कुल भैया। और ओकरे साथ साथ हम लोगों के बाजार भाव इंद्रासन भैया भेजले हुए समय पे होके भी बाँचे जाए बाँचल जाए। और ओकरे साथ साथ भैया देखा आज के मौसम भैया देखा न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहले और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहले। और ओकरे साथ साथ भैया देखा एक और भेंटवार्ता क्रम में भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं गोबर वाली खाद, एकरे बारे में उदय पटेल भैया जो उनकी प्रगतिशील कृषक हुआ अपन भोला भैया से बातचीत हुई ओके भी सुनल जाए।
1: और ओकरे साथे भैया देखा मन मनसायन के क्रम जब आवला ना, मन मनसायन में राज नारायण मौर उनकर संगतिया भैया के गीत गौने जानल जाए, लेकिन हम तो कहती कि बिना देर कैले ना काहे नहीं जानकारी हो जाए।
0: एकदम एकदम भेंट वार्ता क्रम में समावेशी समाज निर्माण में गांव का विकास संभव, एक बारे में बिमल भाई जोन के प्रबंधक बनवासी सेवा आश्रम गोविंदपुर से हुआ, अपन भोला भैया से का बातचीत हुए एकदम सुनल जा भैया।
1: लेकिन देखा उससे पहले कुछ संदेश भी बा वो सुन लिया,
0: एकदम सुनल जा भैया।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: श्रोताओं, ग्रामीण अंचल में जीवन यापन करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों के हक के बारे में जानकारी देने के काम बनवासी सेवा आश्रम गोविंदपुर की तरफ से विमल भाई जी हर समय तत्पर रहते हैं कि किस प्रकार जो है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार को जाने और उसको कर्तव्य में परिवर्तित करके अपने का विकास करते हुए देश के विकास तक के क्रम में जुड़ सके। आज आपसे मुलाकात हो रही है, आप प्रबंधक हैं बनवासी सेवा आश्रम गोविंदपुर के। बातचीत होगी कि ग्राम स्वराज की क्या कुछ भूमिका है, तो बात करते हैं और इसमें हम लोग जानकारी प्राप्त करके इसका प्रयोग करने के भी काम करें। तो विमल भाई जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। यह भी जानने के लिए कि बिल्कुल ये सोनभद्र जनपद ग्रामीण अंचल होने के बावजूद भी यहाँ के भौगोलिक स्थिति बहुत ही उबड़ खाबड़ है, जहाँ के अनाज उत्पादन से लेकर के और यहाँ के रहन सहन में भी पुराने बिल्कुल आदिवासी वाली जो बात आती है कि सभी लगता है कि हर जगह से आदिवासी लोग आकर के यहीं ठहरे हुए हैं। तो क्या यहाँ के स्थिति है और ग्राम स्वराज की क्या कुछ भूमिका है?
2: सभी को मेरा नमस्कार। अभी हम पूरे देश में जो है 78वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह हम लोग राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जो है
1: जी,
2: वास्तव में देश को आज़ादी मिली आज से 77 साल पूर्व जो है
1: जी,
2: लेकिन हमारे इस देश में आज़ादी को प्राप्त करने में कितनी बड़ी कुर्बानियां हुई, देश के कितने शहीदों ने अपनी जान को न्यौछावर किया
1: जी,
2: लेकिन उनकी मनसा थी कि हमारा देश तो आज़ाद हुआ और वो आज़ादी तभी सार्थक होगी जबकि हम गांव में हमारा जो है गांव का के लोगों का अपना स्वराज्य होगा तभी वो आज़ादी जो है सार्थक होगी। ये गांधी जी के एक सपना था
1: जी,
2: कि हमारा गांव जो है मजबूत हो, सशक्त हो, गांव में गांव का राज्य हो। इसके लिए सबसे बड़ा जो है अभियान जो यहाँ बनवासी सेवा आश्रम के द्वारा 66-67 के पूर्व से ही जो एक कार्यक्रम चलाया गया था यहाँ पर
1: जी जी,
2: शुरू में तो यहाँ जो सामाजिक काम का शुरुआत किया गया कि ये यहाँ क्षेत्र जो है सूखाग्रस्त इलाका रहा और तुरंत यहाँ के लोगों के सामने जो भुखमरी की स्थिति थी
1: जी जी,
2: वहाँ
1: जी
2: से काम की शुरुआत हुई लोगों को राहत देना। लेकिन इसके आगे की जो यात्रा हुई, विकास की यात्रा, ग्राम स्वराज के विकास की जो यात्रा शुरुआत की गई, तो इसमें गांव-गांव में जन संगठन की स्थापना की गई इस उद्देश्य से कि ताकि यहाँ के जो जागरूक और युवा अगुआ जो है उनका एक संगठन बने और उनके उनका ऐसा शिक्षण प्रशिक्षण किया जाए ताकि वो अपने सामूहिक जीवन में, गांव के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएं सामूहिक रूप से मिल करके, ताकि गांव को ऐसा रास्ता मिल जाए कि हम सामूहिक रूप से कैसे सोच करके अपने गांव के विकास का काम कर सकें।
1: जी जी जी।
2: तो इसमें जो संस्था की ओर से और जनता के मिल करके जो प्रयास किया गया, चाहे कोई भी गांव के हित में जो कार्यक्रम किए गए उसमें ये व्यूह रचना की गई कि काम के साथ ही जो उनको एक शिक्षण भी मिल जाए।
1: जी जी।
2: अगर हम गांव में पानी रोकने की काम, क्योंकि सूखाग्रस्त इलाका रहा तो यहाँ पर समस्या थी कि कैसे पानी की समस्या को दूर किया जाए।
1: जी जी।
2: उसके लिए वर्षा के जल को रोकने के लिए मिट्टी के छोटे छोटे बड़े बड़े बांध बनाने का कार्य शुरू किया गया। तो इसके लिए हमने गांव के संगठन हमारा जो उसका नाम हम लोगों ने दिया था ग्राम स्वराज्य सभा।
1: जी जी।
2: तो उनके सामने हम लोग एक प्रस्ताव रखते थे विचार के लिए कि आपके गांव में इस तरह के कैसे कैसे काम हो सकते हैं, ताकि उनकी सहमति मिले। फिर वो खुद ही जो है अपना रखते थे कि यहाँ पर जो है हमारा ये नाला बह रहा है तो यहाँ इस तरह के किसान हैं, और सबसे पहले किसका काम होना चाहिए। तो इस तरह की बातों पर विचार विमर्श करके उस गांव के एक प्रारूप बन जाता था विकास के योजना का, कहाँ कहाँ बांध के साइट हैं, कहाँ कैसे बनना है।
1: जी जी,
2: तो ये तय शुरुआत हुआ कि कैसे उनकी जो क्षमता का विकास हो। तो इसमें एक अच्छा सा जो एक उपलब्धि मिली कि लोगों के मन में एक समझ भी हो गया कि नहीं, हम इस तरह से काम करके मिलकर अपने गांव के विकास के लिए प्रयास कर सकते हैं।
1: जी, चूँकि इसी तो, क्रम में भाई जी हमने ये भी देखा कि बहुत छोटे छोटे हम लोग थे।
2: जी जी,
1: अब चूँकि करहिया गांव बिल्कुल दुर्गम है,
2: हाँ, बहुत ही वो
1: कन्हर
2: तो
1: से होकर के गुजरना होता था। ऐसे तमाम ऐसे गांवों में देखा गया कि एक पाठशाला भी चलाई गई थी जो बिल्कुल अनपढ़ लोग थे, रात्रि में जाते जो है कि आग के प्रकाश में पढ़ते कभी कभी।
2: तो इसी के साथ हम लोगों ने लोगों के बीच में निरक्षरता जबरदस्त थी
1: जी,
2: समझ नहीं था, इसी कारण से लोग शोषित भी होते रहे। यहाँ की एक समस्या और थी, उस निरक्षरता के साथ साथ जो है लोगों के बीच जो एक बंधुआ मजदूरी वाली समस्या
1: जी,
2: भी थी।
1: जी, जी, जी।
2: तो उसके लिए हम लोगों ने जिसको उस समय क्या कहेंगे प्रौढ़शाला,
1: जी
2: उनकी शुरुआत प्रौढ़शाला, फिर अब जो है जो काम में लगे हुए बच्चे थे उनके लिए हम लोगों ने ग्रामीण शाला,
1: जी जी,
2: और इस तरह बाल मंदिर, इस तरह के एक समन्वित रूप से एक कार्यक्रम शिक्षा का भी हम लोगों ने काम किया। तो उससे क्या हुआ कि हमारे गांव के लोग जो पढ़ के निकले तो वो जो है उस गांव के विकास में भी बड़ा अच्छा सहयोग उनसे मिला
1: जी,
2: जो है
1: जी, जी।
2: कि वो एक तरह से एक अगुआ के रूप में एक तरह से नेतृत्व करना शुरू कर दिए, जो कि गांव के विकास के लिए ग्राम स्वराज के लिए बहुत जरूरी है। वो
1: जी,
2: एक
1: जी।
2: बहुत बड़ा एक तरह से कंपोनेंट है कि जब तक हमारे गांव में युवाओं में क्षमता का विकास नहीं होता है तो हमारा स्वराज टिकेगा नहीं।
1: जी जी जी।
2: तो उससे जो है एक तो गांव की जो एक जो योजना बनाने की जो है कार्यविधि शुरू हुआ, उसी के साथ साथ अगर हमारे शोषण के तरीके थे उस पर भी हम लोगों ने आघात किया। उससे जो है युवाओं ने मिल करके जो शिक्षित होकर निकले तो वो भी जो उस पर जो है काफ़ी उस समस्या पर जो हल हुआ
1: जी।
2: या अगर महाजनों की ओर से जो साहूकारी से तो उसके लिए हम लोगों ने भी जो आपस में समझौता करा करके मिल सही हिसाब करके वो जो सूदखोरी इसकी थी इस पर भी हम लोगों ने काम किया।
1: जी, जी, जी।
2: और इसका एक अच्छा हुआ उसमें हम लोगों ने प्रयास के कोई जो एक वर्ग भेद की बात आती थी उसको समाप्त किया। उसमें क्या हुआ एक समावेशी समाज की कल्पना हुई कि नहीं भेद नहीं भाई, मिलजुल के हो लेकिन एक सही चीज का जो है रास्ता निकाल के उस समस्या का निदान करने का जो है हम लोगों ने प्रयास किया। और इससे क्या हुआ दोनों पक्ष जो है उसमें हार जीत की बात नहीं आई
1: जी,
2: दोनों ने एक तरह से
1: समन्वय
2: बनाकर इस काम को किया गया जो कि एक ग्राम स्वराज की एक सही दिशा में एक कदम जो है ये बढ़ाया गया इसकी दिशा में।
1: अच्छा, जो समूह में होकर काम करने की बात आई तो देखा जा रहा है कि इसके माध्यम से लोगों ने बहुत सारा विकास का मने
2: बहुत,
1: रास्ता
2: बहुत
1: खोला
2: जो
1: जैसे
2: है।
1: कभी देखते हैं कि कहीं अभियान चला करके नशापत्ती को समाप्त करने
2: जी,
1: की
2: जी,
1: बात आई, कहीं जो है पशुपालन की बात आई, कहीं जैविक खाद की बात
2: अभी आई। मैं बताऊं मैं 1978 में ज्वाइन किया आश्रम को
1: जी,
2: तो उस समय शराबबंदी का आंदोलन चल रहा था, यहाँ जो 25 कच्ची शराब की भट्टियाँ थी
1: जी, जी जी,
2: तो उसमें हर भट्टी के घेराबंदी करके शराब की बिक्री ही बंद कर दो ताकि वो मजबूर होके वो जो है यहाँ से उठा के अपना दुकान चला जाए।
1: जी जी जी।
2: तो उसमें क्या था जन संगठन पूरा साथ दिया
1: जी जी, जी।
2: गांव के लोग आते थे बाकायदे वहाँ घेराबंदी 2400 घंटा घेराबंदी करके बैठ जाते थे। और मैं शुरू से मुझे बहुत ही अच्छा लगा
1: जी,
2: कि देखिए गांव के लोगों में भी अच्छी समझदारी है, लोग समझ रहे हैं
1: जी,
2: कि हमारा हित क्या है
1: जी।
2: अब ये समझिए उस समय के एक आंकड़ा था कि पूरे इलाके से लगभग जो 10 लाख रुपए उस शराब पीने में चला जाता था, और जबकि उस जमाने में ब्लॉक से विकास के नाम पर उतना पैसा खर्च नहीं हो पाता
1: जी, जी, जी, जी। अच्छा।
2: ये हिसाब ये भी निकला
1: हाँ, हाँ,
2: कि अगर शराब को का उस पैसे को गांव में ही उसका बच जाए तो समझिए एक बड़ा ही विकास का एक रास्ता और बन जाएगा समझदारी। और इसका लाभ ये भी हुआ कि जब शराब उस समय बंद हो गया तो तमाम झगड़े झंटे आपस के जो है वो समाप्त हो गए
1: बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जागरूकता
2: और
1: हो जाए तो।
2: जागरूकता हो गई
1: अच्छा,
2: आपसी।
1: आज भी जो है कि आपके भट्टी मोड़ के नाम से जाना
2: जी
1: जाता
2: जी
1: है,
2: हाँ आज
1: हमको
2: भी
1: लगता है कि वही भट्टी का
2: वही वही
1: है।
2: वहाँ था एक अच्छी
1: जी जी जी
2: शराब
1: जी
2: की भट्टी।
1: गुलाझरिया के
2: हाँ
1: पास है।
2: ऐसे मैं कहना चाहूँगा कि इस ग्राम स्वराज के जो हम लोगों ने अभियान किया या कार्यक्रम जो हुआ,
1: जी
2: इसमें सबसे बड़ा यहाँ के आदिवासी जीवन में जो एक परंपरा थी
1: जी
2: कि आपस का झगड़ा आपस में ही मिल करके हल करो, उसको हम लोगों ने और मजबूती दिया। तो आपस का देखिए जहाँ भी समाज गांव है तो आपस में विवाद कुछ न कुछ होता है,
1: जी जी जी
2: लेकिन उसको आपस में मिल बैठ के जो परंपरा थी वो और बढ़ा
1: पंच परमेश्वर
2: पंच
1: वाली
2: परमेश्वर का जो
1: जी
2: है। तो उससे क्या हुआ कि गांव में जो है एक तो उनके जो शोषण होते थे कोर्ट कचहरी पुलिस या जो है उससे मतलब छुटकारा मिला,
1: जी
2: और
1: जी
2: दूसरा आपस में प्रेम जो है बढ़ता ही गया।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: और एक बात और जो सबसे अच्छा तत्व तो इसमें रहा कि आपस में जो सहयोग की बात थी,
1: जी
2: उस सहयोग जो है आपसी सहयोग सद्भाव जो है जो ग्राम स्वराज के लिए बहुत ही जरूरी है।
1: जी
2: तो उसमें जो है कोई भी काम करो भाई आपस का सहयोग कर लो। उस जमाने में मैंने देखा था कि अगर घर बनाना है तो लोग मिलजुल करके दीवार खड़ा कर लो,
1: जी
2: अपना खपरेल बना लो, मिल के छा दो छा उद गोड़ दो।
1: जैसे अगर
2: तो
1: उसका आवश्यकता है तो वो जल जाए,
2: जी
1: उसकी जरूरत पड़े एक दूसरे से
2: और
1: मिल
2: यहाँ
1: सके।
2: तक कि उस समय शादी ब्याह में भी आज भी हम देखते हैं, लेकिन उस समय और अच्छे थे कि आपस में मिल के उस शादी को संपन्न करा
1: अब
2: लेना।
1: जैसे निमंत्रण
2: वो
1: में कोई ढोल
2: लोग
1: कर ले रहा है,
2: हाँ
1: कोई राशन लेकर जा
2: सब
1: रहा
2: दे रहा,
1: है,
2: आज भी
1: नेता
2: वो
1: है।
2: चीज़ें जो है
1: जी जी
2: वो
1: जी
2: एक
1: ये
2: तरह
1: बहुत अच्छी
2: से
1: चीज़ें
2: बहुत
1: हैं
2: अच्छी
1: ग्रामीण
2: चीज़ है।
1: जी।
2: हमको तो यह कि इसको और बढ़ावा देना चाहिए,
1: जी
2: लोगों
1: जी जी
2: का अधिक से अधिक बढ़ावा हो, बाजार पर जो है अवलंबित ना हो, ये जो है सबसे बड़ा।
1: ताकि
2: अगर
1: भार किसी एक के ऊपर ना
2: जितना
1: पड़े।
2: ही अगर हम बाजार पर अवलंबित हो गए तो हमारा गांव का शोषण ही होगा,
1: जी चूंकि रेडियो के
2: गांव के
1: माध्यम
2: लोग।
1: से
2: जी
1: बहुत लोग सुन रहे हैं,
2: जी
1: लगभग सभी गांव के, चलते
2: और
1: चलाते क्या कुछ
2: हाँ
1: से रखना चाहेंगे लोगों को
2: बस
1: राज्य।
2: इतना ही है कि सबसे बड़ी कि अगर हम बिना ग्राम स्वराज्य की मजबूती के हमारे गांव हमारे देश का जो आज़ादी की कल्पना की गई है उसको हम संरक्षित तभी कर सकते हैं कि जबकि हमारे गांव में ग्राम स्वराज्य बढ़ेगा। ग्राम स्वराज्य माने हमारा जो समस्या है हम खुद मिल करके मिल बैठ के उसको सोचें समझें और उसका निर्णय लें,
1: निदान भी
2: निर्णय
1: करें।
2: करके उसको फिर आगे उसको अमलीजामा पहनाएं।
1: जी जी
2: एक
1: जी
2: तो है, दूसरी बात है कि आपस में सद्भावना बढ़े। सद्भावना बहुत जरूरी है। अगर जहाँ सद्भावना है तो हमारे पास कम भी संसाधन है उसमें हम सुख संपन्न आनंद से रहेंगे।
1: जी जी जी जी
2: अगर उस पर हम देखेंगे तो फिर दूसरा नहीं होगा। तीसरा यह कि जो महिला है
1: जी
2: नारी शक्ति पर विशेष, क्योंकि हमारी आबादी का जो है आधा
1: भाग। जी
2: शक्ति
1: जी
2: नारी
1: बिल्कुल
2: शक्ति है, तो नारी शक्ति को भी उस कार्यक्रम में कहीं भी उसका समावेश अवश्य होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए। तो इस वजह से इस तरीके से जो है हम जो है जो गांव के अपने विकास की कल्पना कहते हैं ग्राम स्वराज की दिशा में, तो वो जो है अच्छे ढंग से जो है वो हम सफल हो जाएंगे।
1: जी
2: और
1: जी
2: सुख शांति जो समृद्धि की बात है तभी समृद्धि आएगी, केवल धन से पैसे से सरकारी योजना से ही नहीं होगा। अगर ये है तो हाँ हमारी सरकारी योजना भी अच्छे ढंग से सफल होती जाएगी और उसका जो है भरपूर लाभ लोगों को मिलता
1: मिलता है।
2: जाएगा।
1: जी जी जी
2: सबको नमस्ते धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं देखिए, ये विमल भाई जी थे, आप प्रबंधक बनवासी सेवा आश्रम गोविंदपुर के। निश्चित रूप से एक दूसरे के सहयोग से ही ग्राम स्वराज की कल्पना की जा सकती है और इससे आप अच्छा लाभान्वित भी हो सकते हैं, जैसा कि पहले मिलजुल कर लोग करते आ रहे थे। अगर वो भावनाएं आज आ जाए तो दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धि विकास हो सकती है लोगों के। निश्चित रूप से जो बैठ करके बुजुर्गों के साथ कथा कहानी करने की प्रथाएं थी
2: जी
1: और उससे जो है कि बड़े बुजुर्गों की जो अनुभव सुन करके लोग आगे बढ़ते थे, वो अमिट चीज़ें हैं। ज्ञान के बहुत ही भंडार हुआ करता था, आज कहीं ना कहीं लुप्त हो रहा है। एकांगी जीवन हो रहा है, चाहे मोबाइल कह दें चाहे टीवी वगैरह, जिसके वजह से। लेकिन फिर उसको लाने की
2: इसमें
1: ज़रूरत
2: एक
1: है।
2: बात और जोड़ना है कि जो निर्बल जिसको हम वंचित समुदाय कहते हैं ना, उसको हमारे हर कार्यक्रम में उनकी प्राथमिकता
1: जी जी
2: अवश्य
1: जी
2: किया जाए
1: जी जी
2: ताकि हमारा समावेशी समाज का विकास की अग्रसर हो, जिसका विकास का रास्ता।
1: जी जी, तो इतने अच्छे जानकारी के लिए बिमल भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सबको धन्यवाद।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बघेलो भैया।
6: हाँ मुराव भैया।
5: देखिए कितना बढ़िया जानकारी के क्रम में हम लोगों के समावेशी समाज निर्माण में गांव का विकास संभव, इसके बारे में बिमल भाई जी जो उनके प्रबंधक बनवासी सेवा आश्रम गोविंदपुर से रहलन, अपन भोला भैया के बातचीत के माध्यम से पुरहर जानकारी मिलल और हम तक अब के भैया देखा बिना देर के लिए एक ठो मन फेर करावा और उनके धन्यवाद दिल जाए।
6: तो भैया देखा नेकी और पूछ पूछो राज नारायण मौर उनका संगतिया भैया के एक देशभक्ति गीत बा, ऐसे भैया लोगन के धन्यवाद दिल जाए।
5: एकदम सुनल जाए भैया।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: बगेलो भैया।
3: हाँ मुराव भैया,
2: देखा मन फेर सुनल गए और मन हो गए फरहर। और मन फरहर होला तो भैया जौन भी खेती किसानी का काम हम लोगों के होखत हुए, निश्चित रूप से भैया देखा ओकरा पर ध्यान देने की जरूरत हुए। और ऐसे मौसम में जब तापमान बढ़त हुए तो जौन भी फसल हम लोगों के खेत में लगल हुए, चाहे साग सब्जी होके चाहे उर्द मूंग होके, हर हर फसल के भैया देखा सिंचाई समय समय पर हम लोगों के करत रहे के चाहिए। और ओकर भैया देखा जौन भी फलत बा ओकर तुड़ाई करके भैया देखा बाजारे हाटे तक समय से पहुँचैले के जरूरत बा भैया। और
3: भैया देखा जब पहुँचौले के जरूरत कहत हवा तो ऐसने में हम लोगन के देखा खेती बाड़ी तो करत है जरूर, लेकिन देखा सब पहले से हम लोग जौन खेती करत है ना और बाटी, लेकिन हम लोग शुद्ध और पौष्टिकता नहीं मिल रहा बा, काहे कि हम लोग ढेर उत्पादन लेवे के चक्कर में ना अंधाधुंध रसायन के प्रयोग करत बाटी।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: जेकरा से हम लोगन के माटी पानी और बयार सब दूषित हो गइल बा, जेकरा से हर तरह के कठिनाई झेले के पड़त बा।
2: एकदम सही कहत हुआ भगेलो भैया, निश्चित रूप से भैया जौन भी हम लोगन पारंपरिक तरीके से खेती करते है, हम लोगन के बदलाव करे के जरूरत हुए। और आज के परिवेश में जहाँ अंधाधुंध भैया देखा रासायनिक खाद दवा के प्रयोग होते हुए, तो निश्चित रूप से भैया देखा माटी से लेके हम लोगन के माटी के सेहत से लेके हम लोगन के सेहत पर भी असर पड़त हुए। तो निश्चित रूप से भैया देखा हम लोगन के जौन प्राकृतिक खेती के बात होकाला, शाश्वत खेती के बात होकाला, ओकरा आधारित खेती करे के चाहिए। जौन भी प्रकृति में मौजूद जौन बाकी संसाधन हुए ओकरे अपना करके भैया देखा हम लोगन खेती के काम आगे बढ़ाएं। जैसे भैया देखा खाद के उपयोग करे के हुए तो भैया देखा बर्मी कम्पोस्ट हो गया, नाडेप कम्पोस्ट हो गया, हरी खाद हो गया, अपन जौन भी अपन मल्चिंग के बात होला, फसल अवशेष के प्रयोग में लावे के बात होकाला, तो निश्चित रूप से भैया देखा ये तरह के जौन बाकी तकनीकी अपनाई। और ओकरे साथ साथ जौन भी अपन बीज हुए भैया देखा बीज के, तो भैया देखा ये कहल जाला कि जौन भी हम लोगन के अपन फसल हुए अगर बढ़िया बीज अगर हम लोगन के घर ही पे हुए तो निश्चित रूप से पुष्ट जौन दाना हुए ओकरा रख करके हम लोगन घर के ही बीज जौन बाकी प्रयोग कर सकेला। और ओकरे साथ साथ भैया देखा जब रासायनिक दवा के बात आवेला तो भैया देखा हम लोगन अपने घर पे ही अपन जौन बाकी रासायनिक दवा गौमूत्र आधारित बना के और जौन भी फसल बा ओकरा पर जौन बाकी छिड़काव कर सकेला, तो निश्चित रूप से कीट से भी जौन बाकी हम लोगन के मुक्ति मिली और जौन भी फसल हम लोगन के लगी वो अच्छा हुई और थाली तक पौष्टिकता हम लोगन के पहुंची, जगरा खा के हम लोगन के सेहत बढ़िया बनल रही भैया।
3: तो यही से हम अपन भैया लोगन से निहोरा करत है कि भैया हम लोगन के रसायन मुक्त खेती कर ले के जरूरत बा और जैविक के तरफ नाता जोड़ ले के जरूरत बा।
2: एकदम
3: और
2: एकदम।
3: जब ये सब हम लोग करब जाए तो ओकरे शाश्वत खेती कहल जाला और ये खेती कैले से हम लोगन के हर तरह से शुद्ध अनाज मिली, शुद्ध वातावरण में रहब हम लोग और पौष्टिकता बनल रही।
2: बिल्कुल।
3: तो यही से मिलल जुलल बात आज पंच भैया लोगन के बीच में ना हम लोगन जैसे कहल जाला ना कि माटी माटी बचौले के जरूरत बा, उर्वरा शक्ति बढ़ौले के जरूरत बा। तो आज हम लोगन शामिल कैले उदय पटेल भैया के बातचीत।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: बोला भैया बातचीत इनसे कैले हवन की भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाए गोबर वाली खाद से।
2: बिल्कुल भैया, बिना देर के लिए भैया देखा एकदम सुनल जाए हम लोगन।
3: तो चला बिना देर के लिए सुनल जाओ।
4: किसान भाइयों बहनों, सोनभद्र जनपद अंतर्गत कोन बला के रगरम टोला में है जो मिश्री ग्राम सभा में आता है और यहाँ पर हमारी मुलाकात उदय पटेल जी से हो रही है। आप एक किसान हैं और गर्मी की खेती भी कुछ किए हुए हैं, दिख रहा है मूंग थोड़ा मोड़ा, मक्का भी दिख रहा है। मक्का है क्या उधर? तो ये मक्का भी है और साथ साथ जो जैविक खेती करने के जो तौर तरीका आप अपनाते हैं ये बहुत अच्छी बात है। क्या आपका अनुभव है, आपसे ही बातचीत होगी। तो उदय पटेल जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये देख रहे हैं कि आप कुछ मूंग बोए हैं।
5: हाँ मूंग है भाई।
4: तो कितना में बोए हैं, कितना बीघा क्षेत्रफल में?
5: तो यही समझ लिए कि 10 कट्ठा के लगभग है। जो गरीब के आदमी, जो गरीब के पास है जगह जमीन, वही में अपन खाता कमाता लगे हुए हैं। अपने 4 गो चौवा रख के और जो अनुभव सोचता है लोग कि दूसरे बीज लेवे से, दूसरे खाद लेवे से यही यूज करी, जो अपन 4 गो दूरा पर पस रख के वह खाद डाली सलाह के कि सरल रहे तो फायदा करे।
4: देख रहे हैं कि लड़ियों बहन आप।
5: हाँ हाँ,
4: बकरी भी रखे हैं।
5: हाँ बकरी भी। हाँ
4: तो बकरी के तो कई फायदा बताता है लोग।
5: तो फायदा ही है। फायदा जो बकरी पर है वो अपन जो बच्चा भी बेच सकते हैं, लेड़ी भी बेच सकते हैं। खेत में डालेंगे तो उसका 4 दाना अनाज भी होगा।
4: दूध भी बताते हैं कि बड़ा फायदा करता है बकरी के।
5: दूध जब मिलेगा तब तक दूध तो फायदा करेगा, बाकी भर अगला की भाई देखिए दूध जो है सब चीज से दूध बकरी के महंगा मिलेगा।
0: हाँ, हाँ, हाँ,
5: बाकी भैया ओकरे खातिर बड़ा खेला पड़ल, बहुत परेशानी। काहे कि कोई भी सोचला जे हम बच्चा के पेट काट के कैसे देनी, तो जितने महंगा बकरी के दूध है उतने महंगा कोई चीज के बकरी दूध
0: दूध नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल।
5: हाँ।
0: बताओ वाला लोग कि जब शरीर बड़ा कमजोर हो जाए
5: हाँ,
0: तो ओकर बकरी के दूध पिया तो एकदम टाइट हो
5: जाए।
0: तो ये तो बहुत अच्छा जुगत अपना है, भैंस भी आपके हैं।
5: हाँ,
0: अच्छा, ये सब गोबर के खाद के प्रयोग करते हैं?
5: हाँ, केवल गोबर। जिसे मान लीजिए जिसे आज एक बोरिया डाल दिए 10 कट्ठा में, तो एक बोरा डाल दिए तो पर साल जो है वो कैसुन 1.5 बोरा मांगेगा।
0: अच्छा, वो रासायनिक वाला।
5: हाँ, हाँ। तो इसलिए हम लोग अपने मौसी रखे हैं, मौसी के हिसाब से अपना कर्तव्य करते हैं, वही में बिकते हैं, सराते हैं, गलाते हैं, वही धंधा करते हैं।
0: अच्छा, तो ये जब खेत जोतना रहता है तो ये गोबर कब डालते हैं?
5: गोबर जिसे खेत जोतना रहता है तो उसका हम लोग 15 दिन 1 महीना पहले बीग के यूज करते हैं। ओके, पहले
0: अच्छा।
5: बिगले के बाद ओकरा जोतवावल जाय।
0: हाँ।
5: जोतवैले के बाद पानी खाई सरी, सरैला के बाद तब कहीं रोपनी।
0: अच्छा, अच्छा,
5: ऐसे नहीं कि मने बिगले जाती है
0: बिगले और जो तुरंत जोत
5: ना, वो फायदा नहीं करेगी,
0: वो फायदा नहीं करेगी, सड़ाना पड़ेगा।
5: हाँ, सड़ाना पड़ेगा ओके।
0: तो ये बढ़िया फायदा करता है?
5: हाँ, फायदा करी।
0: एक बार के गोबर डाल कितना फसल ले सकल?
5: एक बार के गोबर डालल मने जोन 2 साली हम खाद डाल थी तो मने 2-3 साल के एवरेज में खेत चुरा दे वाला।
0: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
5: ये तो खाद उड़ जाएगा तुरंत, जिसे आसो हम धान में किए फिर हमें गेहूं में जोन पर डालना पड़ेगा। ये है तो जमा रहता है ना।
0: अच्छा, ये में जोन बाकी पनियों थोड़ा नमी बना रहता
5: है? नमी बना रहे।
0: और ये जो एक रासायनिक वाला में उड़ जाता
5: है? ये तो उड़ जाएगा एकदम।
0: हाँ हाँ हाँ, मतलब जोन हम लोग के पुरान जो है की योजना बा, जो पुरान पद्धति है खेती किसानी करे के, वो आज भी बहुत कारगर है।
5: अभी है वो चीज है, पहले लोग खाते हैं खा रहे थे महुआ सराई ना, वो आदमी के बढ़ियारी देखिए।
0: जी बिल्कुल, बिल्कुल।
5: आज जो है ये खेत में खादी डाल के लोग कमा रहा है कि आज हम 5 मन के जगह पर 10 मन कमा रहे हैं।
0: हाँ, हाँ,
5: वो बिल्कुल जो है मरज है।
0: हाँ, अच्छा, तू
5: यदि मैंने ये चीज जो है जो रखे हैं 10 गो चौआ उसका जो है सलाह के गला के डालिए खेत में, और उसका अन्न खाइए शरीर में जो कितना जोन बस
0: शरीर में
5: लगेगा।
0: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
5: आज तो लोग पैसा के चाणे जोन बा एते के लौकी देख रहे हैं 4 अंगूर के, तो कल जाइएगा तो 1 हाथ के लौकी हो जा रहा है। तो कहा है
0: ऐसा केमिकल डाल दे,
5: वो तो मर्जन हो रहा है,
0: मर्जे हो रहा है। अच्छा, उसी को आदमी खाएगा?
5: आज लोग कहते हैं कि शराब पी रहा है, गांजा पी रहा है, मर्ज बन गया। मर्ज नहीं, मर्ज हम लोग बना रहे हैं अपने से जोन की जहर खा के।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
5: शराब और गांजा वो कहा था।
0: हाँ, हाँ,
5: आज जो है मकई में नहीं कहियो डलात रहे, और जिनोरे में कहियो नहीं डलात रहे खादी, तो आदमी डाल जब बढ़ जाए वो मर्ज है।
0: मर्ज है बिल्कुल। और जो पहले के बीज जोन रहते रहे मकई के,
5: हाँ,
0: अपने पास से आदमी बोए और जोन बाकी वही के उत्पादन करके खाए,
5: खाए। हाँ।
0: तो बहुत मिठाई मिठास लग,
5: पहले सेढ़ी बाकर लोग बहुत संसार में लोग जानते रहे जो प्रतिनिधि गदर हो जाते रहे, ओकर माड़ भात खात रहे नंबर 1 के मीठ लागत।
0: हाँ, हाँ,
5: वो आदमी के 4 गेड़ा मारियो देतन तो असर नहीं पड़त रहे
0: सहले।
5: आज 4 गेड़ा ये कोई लड़कन के मार दे, आज के क्षेत्र में जितना भी बड़न मार देंगे ना
0: लग जाए
5: तो लगी जोन बा हवाई बतास बंद हो जाए।
0: हाँ, हाँ,
5: का ताकत है?
0: ताकत एकदम नहीं है,
5: ताकत खत्म हो गया।
0: कुल मिलाकर के जो आज रासायनिक खाद प्रयोग कर रहे हैं लोग, ये जो है कि शरीर के बिल्कुल
5: हानि है, हानि है ना,
0: हानि है। अच्छा, आज के लेकिन गुस्सो लग जाता?
5: हाँ, गुस्सा बहुत जबरदस्त
0: वही के चलते है। जब जब जब खाई जहर तो बर्दाश्त करे की क्षमता कहाँ है? जिस तरीके जोन बाकी जमीन के बर्दाश्त करे की क्षमता नहीं रहा, वही तरीके
5: तो जमीन के बर्दाश्त हम कहती असो हम डाल दिए 1 बोरा खाद। अगर हम ओकरा खाद हम बढ़ा के नहीं डालत तो हम पैदा खोजे तो कहाँ ली मिली?
0: नहीं,
5: वो बढ़ा के मांगत बा, जब बढ़ा के हमें आधा बोरा बढ़ा के दा।
0: हाँ, हाँ,
5: तो
0: हाँ।
5: वो कोई चीज नुकसानी छोड़ा के वो हानि वाला नहीं है।
0: अच्छा, एक दिन की स्थिति ऐसा ना आई कि हमें कुछ
5: हो भी नहीं करी फिर ओकरा कर लेका हुई कि एक बगल से जिसे पलस्तर कर जला, उसे पलस्तर करला परी माटी पूरा तल छवा के तब जाके कहीं पैदा के यूज करबा।
0: का बात,
5: अपने से जो है अपने से सतर्क रह के ऊंचिया की यूज करना कि भाई कम हम खाद ही डालें।
0: हाँ।
5: कम फायदा उठाएं,
0: तो अपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा। हाँ। एक तरह से तो ये तो बहुत बढ़िया सुझाव आपके वहां। तो कै मूड भैंस रख ले हमन?
5: भैंस तो बने से 3 मूड।
0: अच्छा, तो भैंस के तो खानगी में भी बड़ा ध्यान दे,
5: बहुत जबरदस्त एकदम। हम लोग बिजी रहते हैं अपने धंधे में।
0: हाँ, हाँ,
5: किसी से कोई अथी नहीं, अपने धंधा में एकदम उठतो सुतो जिसके पास 4 गो चौआ होगा वही आदमी जानेगा कि चौआ का हाल क्या मजा मिलता है।
0: अच्छा, ओके, छोड़ के कहीं जाया नहीं जा?
5: ना ना, नहीं जाए के मतलब अपने माल मौसी सहियार के ही सब कोई के ही में इज्जत भी संभरना है ना।
0: बिल्कुल, इसमें ब्याह
5: सबके देखना है।
0: तो ये जो है कि गर्मी में कई बार नहवाक पड़ जाला भैंस।
5: गर्मी में तो सुबह शाम ऐसे तो लोग के साधन है तो पानी में बोर
0: देते बोल
5: हाँ, कोई भाई हम लोग के पास साधन है नहीं, कभी जब ही नल है वह दिए हैं तो एक बार छिचकारी मार देते हैं, एक बार जुड़े में वह छाए तर बैठे रहते हैं पेड़ तर।
0: पेड़ तर
5: हाँ।
0: अच्छा पेड़ के बात आप शुरू कर दिए, बहुत बढ़िया बात, क्योंकि आज जो है कि जंगल में अगर आदमी जाए तो एको पेड़ ना मिले, झाड़ी झंखाड़ मिला ला, और कितना उपयोगी बा पेड़ रहना।
5: पेड़ के बात देखिए, कहीं अगर जैसे धूप लगने लगा तो कहीं छाह तो खोजना ही पड़ेगा, कहीं छाह कोई चीज के छाह मिलना चाहिए,
0: मिलना चाहिए। तो यानी कि खेत के मेड़ पर पेड़ भी लगाए बड़ा जरूरी
5: है। हाँ, भाई देखिए महाउत है जमीन के लिए जो है, लोग कहता है ना कि कोई चीज महाउत है कि नहीं, जिसे खड़ा हो गया जमीन में यहाँ से लेके एक आध दो किलोमीटर तक से डायरेक्ट खाली सॉलिड जमीने दिखाई दे रहा है।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
5: तो वो हमें एक आध गो छाह नहीं रखेंगे तो कलप के मर न जाएंगे, घामा में कटनी बिनिया करने जाएंगे था, तो एक आध गो महौत रखना चाहिए जमीन के ना,
0: रखना चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ा सीख भी है कि अगर लंबा चौड़ा खेती है
5: हाँ,
0: तो हमें पेड़ पौधा पालो भी लगाए बहुत जरूरी,
5: एक आध दो पेड़ जरूर रखना चाहिए कि ताकि हमार सहिनान रहे, हम जाते काटे तो हम कहाँ जाए
0: लुकाए जाए, बिल्कुल जैसे अब लुक में खाए तो पता चल कि आदमी बैठ करके वहीं खा लिया
5: हाँ।
0: छाया में, तो ये पेड़ के रह भी बहुत जरूरी है, और पेड़ के पत्ती जो झड़ला तो बहुत खाद बनत
5: है। हाँ, खाद बन भी करता है
0: हाँ।
5: वो सब पेड़ के पत्ती के खाद नहीं बनता है ना,
0: हुँ।
5: जो ऐसा पेड़ हो वही पेड़ के जो भाई अपन सुरक्षित बीचे खेत में एक दो पेड़ अपन लोग रख देवे, रखने के बाद क्या होता है कि अपना कटनी बिनिया लौनी करने जा रहे हैं तो धूप लगने लगा थोड़ा छहा ले, यानी तो भाई जब उतने कष्ट करना है तो पूरा जमीनिये जो बा अपन लोग बराबर करा देवे, काटे बिना न जाए हो तो पत्ती छोड़ देवे।
0: हाँ, तो अगर कोई मतलब है,
5: कोई मतलब नहीं।
0: हाँ, पेड़ ही तो सिंगार है धरती के, भाई देखा जिस तरीके
5: आज पेड़ न रहे तो बारिश नहीं हो सकती है।
0: हाँ,
5: ये पेड़ ही की वजह से जो हमें बारिश आ रही है ना।
0: अभी ये जो इसमें बरसात में भी बड़ा अनियमितता आता है कि कभी जो है कि बरसात जाड़ा के मौसम में कब पानी बरस जा रहा है, जाड़ा पर ही नहीं रहा है, तो कब जो है कि गर्मी में बरसने लग रहा है, बरसात में बरस ही नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पेड़ पालो बहुत कम होए की वजह से तो नहीं ऐसा
5: कम हो ही रहा है।
0: हाँ।
5: कम पेड़ पर आदमी जो है, जितने भी पहले लोग कहते हैं कि लेप्टस के पेड़ में बहुत पानी सिंचाई करता है, तो पहले तो सब पेड़ बचल रहते रहे, अब तो ऐसा कटान लग गया कि कैसनो बबूर के पेड़ होके कैसनो लेप्टस होके पूरा क्षेत्र जो है
0: कट गया।
5: हाँ, कट गया।
0: हाँ।
5: तो लोग खोजेगा कि बारिश नहीं हो रहा है, बारिश होगा कहाँ,
0: होगा कहाँ, लगाए है ये नहीं, वो काट दिए सब,
5: काट दिए,
0: ये तो बहुत गलत हो जा रहा है। पेड़ लगाना सबसे बड़ी बात है, और निश्चित रूप से आपका भाव हम समझ पा रहे हैं, और आप प्रकृति के प्रेमी हैं, और जो है कि जो हम प्राकृतिक खेती भी करने के तौर तरीका पहलवा देखे कि जैसे जंगल के किनारे जो खेत हुए उसमें जो राब बह करके आता था, ओकर खेती फिर देखिए फिर का होता था।
5: हाँ, जंगल के खेती वो हमें बहुत पत्ती जो है सर गल के सब खेत में आ रही तो पैदा हुई भी करी है, वो हमें जो बा एक मुठा ये खाद के कोई यूज करना जरूरत नहीं है।
0: अच्छा, ये जो पहले के धान रहन सेठी बाकर ये सब अब नहीं मिलते हैं?
5: हैं?
0: हाँ। लगाते हैं?
5: हाँ।
0: अच्छा, तब तो ये बहुत अच्छा जुगाड़ रखे हैं।
5: वे जो है उसका खाइएगा माड़ भात खाइए।

0: खाइएगा वो, और एक बाद घी, आज के युग में घी दाल खाइए वो हमें कितने अंतर है।
1: हाँ बहुत अंतर है। तो ये तो कितना में बोते हैं लगभग?
0: अरे वह मैंने एक आध दो कट्ठा लोग रखता है बिहन परचाने के लिए।
1: परचाने के लिए
0: हाँ
1: सीढ़ी
0: जब
1: सीढ़ी धान मिल जाएगा
0: हाँ परचाने के लिए भाई, सोचता है कि कोई चीज के किसान आदमी के हाथ में कुछ बीज रहना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे इसमें सुनल जात बा कि सीढ़ी के धान के भात जौन बा बहुत महंगा बिक रहा
0: हाँ महंगा मिलवे करेगा।
1: है कि मिल नहीं रहा है वैसा, अभी जो शुगर फ्री के बात आता है आज जो जौन यूरिया डीएपी के चलते जौन अनाज उत्पादन हो रहा है, तरह तरह की बीमारी आप बताए, जैसे आज शुगर एक ठे बीमारी चल गई है तो ओहो के वही के कारण वो हो रहा है।
0: सब हो रहा है वही वही वही के चलते से सब हो रहा है ना।
1: और सीढ़ी बाकर के धान के भात खाएं तो वो सब कुछ नहीं होना है,
0: ना वो तो निरोगी चीज है ना,
1: और सवा वगैरह
0: वो सब निरोगी चीज है।
1: सवा होता है कि नहीं वो?
0: सवा भी होता है।
1: अच्छा
0: ये टाँड है ना, जगह
1: हाँ
0: जान जो है जे किसान के जो सुविधा मिल रहा है वो अपन बिक दे रहा है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ
0: यहाँ थोड़ा है जब पानी के साधन है, जब पानी आ रही है एकदम जोन भाई सब खत्म कर देगा, यहाँ पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऊपर लक बल पर यहाँ होते हैं सब, जी खा रहे हैं गरीब।
1: अच्छा इसमें जो है कि पानी कम जरूरत भी पड़ता है सवा को, दो मेढ़ों में झड़ी
0: हाँ
1: चाहे तो ये जो है कि सीढ़ी में भी
0: ये तो खैर वो पानी के सीजन में लगता है, ये सब हो
1: हाँ,
0: जाते हैं।
1: लेकिन कम चाहता है। तो किसान भाई बहन देखिए, ये उदय पटेल जी थे, आपसे बातचीत हो रही थी कि जैविक खेती के माध्यम से, गोबर के खाद के माध्यम से किस प्रकार से अनाज का उत्पादन किया जा सकता है, और एक फसली में अगर डाला जाए खाद तो कई फसली काम देता है, और साथ साथ खेत के जीवांश की मात्रा बढ़ा हुआ रहता है, वहीं रासायनिक खाद में बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, प्रत्येक साल बढ़ा बढ़ा के देना पड़ता है, खेत की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रहे हैं। तो जैविक खेती अपना करके, और चूंकि अपने यहाँ खाद है जो अपना पैसा नुकसान जा रहा है उसको बचाया जा सकता है, और इस प्रकार से खेती करके अपना मुनाफा भी व्यक्ति कमा सकता है। इतने अच्छे जानकारी के लिए उदय पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: बघेलो भैया।
2: हाँ मुराव भैया,
1: देखिए कितना बढ़िया जानकारी के क्रम में भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं गोबर वाली खाद, एक बारे में उदय पटेल जो उनकी प्रगतिशील कृषक रहलन, अपन कौन ब्लॉक से रहलन और भोला भैया फरिया फरिया के पूछलन है और इतना पुरहर जानकारी दिलन कि भैया के तरह से भैया देखा हम लोगों के अपन माटी के जवन बचावे खातिर, अपन जंगल के पेड़ के बचावे खातिर और अपन आसपास के पर्यावरण के सही रखे खातिर के तरह से हम लोगों खेती के अपनावे के चाहिए। और जब खेती भैया देखा बढ़िया रहला तो निश्चित रूप से भैया देखा उत्पादन भी अच्छा रहला और निश्चित रूप से भैया देखा हम लोगों किसान है तो भैया देखा अपन जोन भी फसल बा लगेबे करेला लेकिन साथ साथ साग सब्जी के भी खेती करेला और साग सब्जी के जब खेती होला भैया नगदी आमदनी के भैया देखा जोन बाकी साधन हुए और निश्चित रूप से भैया देखा हर किसान भैया लोगन के चाहिए कि भैया देखा कुछ न कुछ साग सब्जी के खेती करें और नगदी आमदनी के स्रोत बनाए और इसने भैया देखा जब बढ़िया उत्पादन साग सब्जी के होला और बढ़िया भाव मिलला तो खलिता भी भारी रहला मन भी हरियर रहला और खेती किसानी में मन भी लगला तो निश्चित रूप से आपके हाथ में देखा थे कि भैया बाजार भाव कहीं से आयल हुए और ओके बाँचे और बताओ कि कहाँ के बा और का भाव रहले।
2: भैया देखा ये घोरावल मंडी के टटका बाजार भाव बा जौन के इंद्रासन मौर भैया भेजले हवन, देखा लाल आलू 35 से 40 रुपया माने आलू हो 35 से 40 रुपया पसेरी बा
1: हाँ।
2: और टमाटर 90 से 100 रुपया और प्याज देखा 50 से 55।
1: अच्छा अच्छा।
2: और हरा धनिया 75 से 80 बा, हरा मिर्च देखा 110 से 120 बा
1: पसेरी भैया
2: हाँ। और कोहड़ा देखा 25 से 30 बा, परवर 75 से 80 बा, कटहल 60 से 65 और खीरा 30 से 35
1: हाँ भैया,
2: ककड़ी 40 से 45, खरबूजा देखा 120 से 125 बा और पालक 85 से 90 और चौराई साग देखा 20 से 30 बा और बोड़ा 125 से 130, भिंडी 80 से 85, करेला 60 से 65, नेनुआ 30 से 40 और चुकंदर देखा 60 से 65 बा और बैगन देखा 160 से 180 पसेरी में बा भैया।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: और कच्चा पपीता जोन बा वो देखा 100 से 110 बा और आम जोन बा 75 से 60 70 से 75 बा और लौकी देखा 20 से 25 बा और फूल गोभी जोन बा वो 800 से 1200 रुपया सैकड़ा, पत्ता गोभी 500 से 700 रुपया सैकड़ा और नींबू 600 रुपया सैकड़ा।
1: बिल्कुल भैया नींबू के भाव बढ़ल हुए निश्चित रूप से भैया देखा जैसे जैसे तापमान बढ़त हुए नींबू के भाव भैया देखा बढ़त जाते हुए यही से कहा जाला भैया की जोन बाकी हम लोगन के अपन जोन किसानी हुए ओकरा में भैया देखा सब कुछ भैया देखा हम लोगन के करे के चाहिए, बाग बागवानी लगावे के चाहिए, अपन खेती बाड़ी करे के चाहिए तो निश्चित रूप से भैया देखा बढ़िया भाव आज के रहले और हम तो कहब कि भैया देखा अपन उदय पटेल और ओकरे साथ साथ इंद्रासन मौर्या भैया के और भोला भैया के भी धन्यवाद देहल जाए जौन कि हम लोगन के राजनारायण मौर्या और उनके संगतिया के गावल मन फेर हुए और ओके सुनल जाए और धन्यवाद देहल जाए।

0: गाओ भैया।
1: हाँ भैया,
0: देखा कितना बढ़िया हम लोगों का गीत गौनो सुने के मिलल, और गीत गौनो जब हो जाला तो देखा दिलमा फरर होला, और देखा अब हम लोगन के जवन बैठ पंचायती बा एकर भी समय देखा पूरा हो रहा बा। चलत चलाओ पंच भैया लोगन से कुछ कहे चाहत
1: भैया। हम यही कहते कि समाज के अच्छा, समाज में अच्छा प्रयास करे के चाहिए, अच्छा करे के, और रक्तदान वास्तव में एक महान और संतोषजनक कार्य हुए जो उनके भैया देखा जरूरतमंद के भैया देखा जीवन दान दे वाला, और एक यूनिट रक्त भैया देखा 3 से 4 लोगों के भैया देखा जान बचा सकेला। तो निश्चित रूप से रक्तदान हम लोगों के करे के चाहिए, और घड़ी के सुई कहते हुए कि आज के पंचायती हम लोगों की यही समेटे के चाहिए।
0: भैया लोगों से विदा लेवल
1: एकदम भैया, सब पंचन के राम राम, राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकगीत। श्रोताओं, लोकगीत कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार हैं राज नारायण मौर्य और साथी। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले राज नारायण मौर्य और साथियों के स्वर में झूमर।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण, कार्यक्रम है लोकगीत। लोकगीत कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार हैं राज नारायण मौर्य और साथी। अब आइए सुनते हैं राज नारायण मौर्य और साथियों के स्वर में कहरवा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजनारायण मौर्य और साथियों के स्वर में खेमटा। इसी के साथ हमारा लोकगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 7:15 हुए हैं। अब खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार गुड़िया पुत्री अमरनाथ निवासी ग्राम व पोस्ट ओइनी मिश्रा, तहसील रॉबर्ट्सगंज, थाना शाहगंज, जिला सोनभद्र, जो दिनांक 21 मार्च 2026 से लापता है। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 18 वर्ष, लंबाई 4 फीट 11 इंच, इनका रंग गोरा है। इन्होंने आसमानी कलर की कुर्ती पहनी हुई है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार सलगम पुत्री अमरनाथ निवासी ग्राम व पोस्ट ओइनी मिश्रा, तहसील रॉबर्ट्सगंज, थाना शाहगंज, जनपद सोनभद्र, जो दिनांक 21 मार्च 2026 से लापता है। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र लगभग 16 वर्ष, लंबाई 5 फीट 1 इंच, इनका रंग गोरा, चेहरा लंबा और एकहरा बदन है। इन्होंने सफ़ेद रंग का सलवार और खैरा कलर की कुर्ती पहनी हुई है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब वक्त चला है कार्यक्रम विवरण का, तो आइए आपको जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम करंट अफेयर्स। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे उस्ताद विलायत हुसैन खान का राग बागेश्वरी बहार में गायन। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित विभिन्न सांसदों और मंत्रियों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। सामाजिक आर्थिक आकलन के लिए सबकी भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश में कल और 10 मई को होने वाली प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। परीक्षा केंद्र एआई कैमरों से लैस, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 10 मई के बाद फिर से बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी आज अपना जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा। उन्होंने लोगों से जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या भौतिक रूप से भरकर जल्द से जल्द जनगणना प्रक्रिया पूरी करने की अपील की।
2: देखिए, जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हो पूरे हो सके। आज जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
1: इसी क्रम में डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल, पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी आज स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। लखनऊ स्थित यूनिसेफ कार्यालय में आज जनगणना संचालन क्षेत्रीय निदेशालय उत्तर प्रदेश ने यूनिसेफ के सहयोग से जनगणना 2027 स्वगणना पर सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन विषय पर जागरूकता और क्षमता विकास सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि स्वगणना जनगणना 2027 का एक प्रमुख नवाचार है। यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कल और 10 मई को किया जाएगा। परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित होगी जिसमें कुल 4,64,605 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने आज 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। प्रदेश में संचालित स्मार्ट प्री पेड मीटर व्यवस्था को समाप्त कर सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्ट पेड मोड में संचालित करने के संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्ट पेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल SMS और व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहां एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2024 के आंकड़ों ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को दर्शाया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय क्राइम रेट 252.3 के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट 180.2 रहा। कुल अपराधों में उत्तर प्रदेश का देश में 18वां स्थान है। एक रिपोर्ट।
4: NCRB रिपोर्ट में हत्या के मामले में देश में यूपी का स्थान 29वां है, जबकि हत्या के प्रयास के मामलों में ये 26वें स्थान पर है। वहीं फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में राज्य पूरे देश में सबसे नीचे 36वें नंबर पर है। दुष्कर्म के मामले में यूपी देश में 24वें स्थान पर है, जो राज्य में बेहतर हुई कानून व्यवस्था को बताता है। जेलों में क्षमता और अनुशासन के मामले में भी यूपी का प्रशासन अन्य राज्यों से बेहतर है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि ये सुधार सतत और सुविचारित प्रयासों का प्रतिफल है। पिछले 9 वर्षों में आधुनिक पुलिस स्टेशन, सतर्क एंटी रोमियो स्क्वाड, हर थाने पर समर्पित महिला हेल्प डेस्क, कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय दिलाने वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट और संगठित अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। बुलंदशहर में आज नेशनल हाईवे 34 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार पति पत्नी और उनके 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कई जगहों पर तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 2 दिनों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 10 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 मई से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा।
5: 9 मई को जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ क्षेत्रीय वर्षा होने की संभावना बहुत लाइकली है, छींटाकशी हो सकता है, बाकी उसके बाद मौसम साफ है। फिर से जैसा कि नया पश्चिमी विक्षोभ 10-11 तारीख से एक्टिवेट हो रहा है, जिसके वजह से 12 तारीख से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल पार्ट में फिर से धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ेगी, हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा।
1: आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। एक रिपोर्ट।
6: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
7: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
6: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
8: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जो इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं, इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
9: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
6: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकरवाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित विभिन्न सांसदों और मंत्रियों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। सामाजिक आर्थिक आकलन के लिए सबकी भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश में कल और 10 मई को होने वाली प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। परीक्षा केंद्र एआई कैमरों से लैस, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 10 मई के बाद फिर से बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: एक 102.7 FM पर आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है। प्रस्तुत है मिले जुले फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत शिवहरी के संगीत निर्देशन में। आवाजें हैं लता मंगेशकर और बाबला मेहता की। फिल्म है चांदनी।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण FM 102.7 पर। कार्यक्रम है सबरस। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आ अब लौट चले से। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ये दिल लगी। श्रोताओं, आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत, लता मंगेशकर, उदित नारायण और अभिजीत की आवाजों में। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत बनाया था दिलीप सेन, समीर सेन ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आरजू से, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में। बोल आनंद बख्शी के हैं और तर्ज बनाई है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, सबरस कार्यक्रम के आखिर में अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू और अलका चिनाय को फिल्म गुंडा राज में। गीत के बोल लिखे थे जफर गोरखपुरी ने और संगीत बनाया था अनु मलिक ने। इसी के साथ हमारा सबरस कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं चंद गजलें।

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम की शुरुआत में भी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा की आवाज में ये प्यारी सी गजल। गजल को लिखा था रानी मलिक ने, तर्ज बनाई थी अनूप जलोटा ने।

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम के आखिर में आप सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज में ये प्यारी सी गजल। 102.7 FM पर आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर गाए इस गीत के साथ। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है दो वक्त की रोटी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा हुआ, आवाज मोहम्मद रफी की है, फिल्म है रूप तेरा मस्ताना।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम के आखिर में अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले को फिल्म उमराव जान में। गीत के बोल लिखे थे शहरयार ने और संगीत दिया था खयाम ने। इसी के साथ हमारा फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम का हम आगाज कर रहे हैं जगजीत सिंह और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ।

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम के आखिर में अभी सुन रहे थे आप अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की आवाज में ये प्यारी सी गजल। इसके साथ ही हमारा सुगम संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप हिंदी समाचार सुनेंगे। रात्रि 9 बजे सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार। कृपया क्षणिक प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की, राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के पांचों बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
4: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
5: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले पांच वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
6: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अड़िग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
7: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
1: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और

वीसी के आईयूएमएल और वामपंथी दलों का समर्थन मिला कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ नमस्कार

आकाशवाणी, जिसे आज देश विदेश में भारत की आवाज के रूप में पहचाना जाता है। श्रोताओं, यादों की झरोखों से कार्यक्रम आज आपके सामने पेश कर रही है आपकी रेडियो हम सफर आराधना श्रीवास्तव। जी श्रोताओं, आकाशवाणी केवल एक रेडियो प्रसारण सेवा ही नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक चेतना का सशक्त माध्यम है। लगभग 90 वर्षों के इस लंबे सफर में आकाशवाणी ने देश को जोड़ने, जनमानस को जागरूक करने और भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने में अतुलनीय योगदान दिया है। रेडियो प्रसारण की शुरुआत भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में निजी स्तर पर हुई थी। बाद में 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1957 में इसे हिंदी का नाम आकाशवाणी मिला। यह नाम महान कवि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा दिया गया था। उस समय रेडियो मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन था। गांव-गांव में लोग रेडियो के आसपास बैठकर समाचार, गीत, नाटक और विशेष कार्यक्रम सुना करते थे। धीरे धीरे आकाशवाणी देश की आवाज बन गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आकाशवाणी ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार की योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि से जुड़ी जानकारियों को दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने का कार्य इसी माध्यम ने किया।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, आकाशवाणी ने देश के कठिन समयों जैसे युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और राष्ट्रीय संकटों में भी आकाशवाणी ने लोगों को सही और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराई है। भारतीय संस्कृति और संगीत का संरक्षण आकाशवाणी भारतीय संगीत और संस्कृति की सबसे बड़ी संरक्षक संस्थाओं में से एक रही है। शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और सुगम संगीत को मंच देने का कार्य आकाशवाणी ने दशकों से किया है। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, पंडित भीमसेन जोशी जैसे अनेक महान कलाकारों की आवाज को जन जन तक पहुंचाने में आकाशवाणी की बड़ी भूमिका रही है। रेडियो, नाटक, कवि सम्मेलन, लोकगीत और साहित्यिक कार्यक्रमों ने भारतीय परंपरा को जीवित बनाए रखा है। आकाशवाणी का सबसे बड़ा योगदान ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाना रहा है। किसानों के लिए कृषि दर्शन, मौसम की जानकारी, पशुपालन, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों ने लाखों लोगों का जीवन प्रभावित किया है। ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए हैं, जिससे सामाजिक परिवर्तन को गति मिली है।

न श्रीवास्तव। इसी के साथ हमारा यादों के झरोखों से कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: Current Affairs. Good evening, listeners. Welcome to our program, Current Affairs. I'm Tina Jha. Today, we'll be talking about Somnath, Bharat's invincible spirit. To talk about Somnath and Bharat's unconquerable spirit and how in a world marked by divisions, Somnath gives us a civilizational message of shared unity and prosperity, I'm joined by two distinguished guests, Padmashri Vishnu Pandyaji, he's a historian and author, and Ms. Aditi Tandon, senior journalist. For centuries, the Somnath temple has not just as a place of faith, but as a symbol of resilience. Attacked, rebuilt, and revived time and again, its story is deeply woven into India's civilizational journey. Marking 75 years since the restored temple was reopened to devotees, Prime Minister Narendra Modi has written an article in which he says that every part of Bharat is sacred, bound together by a sense of oneness that transcends geography, and that in a world increasingly marked by divisions, this spirit of unity is more relevant than ever. The Somnath will continue to stand tall in all its glory because the sense of unity and shared civilizational consciousness lives on in the heart of every Indian, said the Prime Minister. In fact, he also remembered the countless people who sacrificed their lives to protect Somnath and those who rebuilt it generation after generation, ensuring that this beacon of faith and cultural continuity continues to stand tall. Earlier this year, the Prime Minister visited the Somnath for the Somnath Swabhiman Parv, marking 1,000 years since the first attack on this temple. And on the 11th of May this year, he will return to the Somnath to commemorate 75 years since the restored temple was inaugurated by India's first president, Dr. Rajendra Prasad. So, pehla sawal historian Padmashri Vishnu Pandya ji se. Pandya ji, Somnath ko aksar log sirf ek mandir nahi, balki Bharat ki pehchan bhi mante hain. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां कई बार जाते हैं और वहां का जिक्र करते हैं आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है हमारे लिसनर्स को हमारे श्रोताओं को अगर आप बता सके कि सोमनाथ में ऐसा क्या है जो उस जगह से लोगों का अपने आप एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है
1: देखिए नरेंद्र मोदी जी इतिहास बोध के आदमी है वर्षों से है आज से नहीं और परंपरा में जिस प्रकार का एक सातत्य रहना चाहिए उसके अनुसार वो चलते हैं उनके अनुसार जो सोमनाथ की जो बात है वो केवल मंदिर की नहीं है उन्होंने लिखा भी है हमारी संस्कृति विनाश से निर्माण इस पर आधारित है बहुत से विनाश आए आक्रमण आए बाकी सब कुछ हुआ लेकिन पुनः एक बार नहीं दो बार तीन बार पचास बार हमने पुनः निर्माण किया कुछ ऐसे उदाहरण भी है जैसे कि हमारे यहाँ प्राच्य विद्या पुरातत्व विद्या का लोथल स्थान है
2: जी
1: 5,000 साल पहले का है 5,000 साल में उस पर चार बार सुनामी समुद्र का विनाश आया चारों बार लोगों ने इकट्ठा होकर पुनः खड़ा किया सोमनाथ पर अनेकों आक्रमण आए और फिर भी लोगों ने बार बार उनका पुनर केवल राजाओं ने नहीं लोगों ने भी मैं उनका एक उदाहरण देना चाहता हूँ ईस्वी सन 1400 तब एक बार आक्रांताओं ने मंदिर को नष्ट किया लोग सब इकट्ठा हुए और लोगों ने अपनी शक्ति से और अपनी भक्ति से उनका पुनः निर्माण किया ये सोमनाथ की बात है
2: जी।
1: तो विनाश से निर्माण कितने पुनरोद्धार हुए बहुत से हुए एक दो चार उदाहरण हम दें तो गुर्जर प्रतिहारों ने निर्माण किया राजा भोज ने निर्माण किया राजा कुमारपाल ने किया भीमदेव ने किया पाशुपत आचार्य त्रिपुरांतक ने किया महिपाल देव ने किया एक बार तो जैन और पाशुपत दोनों शैव दोनों मिलकर किया तो इसका मतलब है कि ये जो महारानी अहिल्याबाई ने भी किया इस परंपरा की कड़ी में सरदार वल्लभ भाई आए 1947 के नवंबर में जब जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की घोषणा हुई थी नवाब के द्वारा उसके खिलाफ आरजी हुकूमत हुई थी और आरजी हुकूमत ने जूनागढ़

0: Chandan, I'm going to ask you also, is that in a fast-moving digital age, no matter the effort by the Prime Minister to reconnect history with the current generation, do you think the youngsters today will be able to, or they do connect emotionally with the stories of heritage, with the stories of sacrifice? The Prime Minister does not forget to mention the sacrifices which our ancestors made, and most importantly about the story of restoration in context of the Somnath Temple.
1: See, Tina, much of what influences the youth depends on what is the line the creative thinkers and the politicians of our time take. It is not fair to blame the youth for not connecting to the roots unless you are talking to the youth about their roots. Mm-hmm. The fact of the matter is somebody has to keep hammering these messages. For instance, today we have a Prime Minister who does not, tire out about speaking of Vikas Bhi, Virasat Bhi. You know, in his speeches, he always invokes the past. He always celebrates freedom fighters, mentions all about, the symbols of Indian faith and civilization, not just temples, but the richness of Indian languages. We know that the Prime Minister has hailed and saluted Tamil language at the UN platform earlier. So the fact of the matter is the youth of the country are ready to receive. They are consumers of the knowledge that we disseminate to them. But this is a narrative that the political leaders of the day, the philosophers and thinkers of the day, the cinema artists of the day have to think about. For instance, just look at the revolution that we see now in the, cinematic space. All kinds of films are doing well. So many films that are rooted in our culture are doing well.
0: That's right.
1: So many films that speak of India's strategic depth and India's strategic victory over the inimical neighbors are doing well. So the fact of the matter is the digital age is the reality of our times, but that does not mean that there are no avenues of connecting the youth to their past or to their cultural richness. There are always those avenues, but that burden is with the policy makers, the politicians and thinkers of the day. Because what are we teaching the youth in the schools that is important? Are the school books being revised accordingly? Like we now know that the NCERT is paying a lot of attention to the courses that are being taught at school level, and a number of books have been revised to give so many freedom fighters their due. So that's the kind of thing I'm talking about, that there has to be a continuous revision and continuous education in relation to the richness that India boasts of. And this richness is on multiple counts, the richness of culture, of languages, the richness of our freedom fighting movement. So many national heroes that we don't know about yet, that we are coming to know about only now.
0: That's right. हिस्टोरियन पद्मश्री विष्णु पांड्या जी, आजादी के बाद जब सोमनाथ के पुनर्निर्माण का फैसला लिया गया, कई तरह का विरोध भी हुआ. इनफैक्ट जब प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके इनॉग्रेशन में गए तो तब के प्रधानमंत्री को वो पसंद भी नहीं था, ऐसा हमने इतिहास में पढ़ा है. लेकिन अगर हम देश के आत्मविश्वास के संदर्भ में इस मंदिर के पुनर्निर्माण को देखें, तो क्या वो सिर्फ मंदिर बनाना था या वो एक पहल थी देश के आत्मविश्वास को फिर से खड़ा करना? वो एक बड़ा मैसेज था कि जो टूटा है वो फिर से जुड़ेगा और वो फिर से खड़ा होगा. जिस संदेश की आज हम बात कर रहे हैं उसकी नींव कहीं ना कहीं उस दिन रखी गई थी?
2: नहीं, उसी दिन नहीं थी. मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ, ये परंपरा में हुआ है. जब से भगवान सोम ने मंदिर बनाया तब से जितने लोग आए, मोहम्मद गिजनी आए, अलाउद्दीन खिलजी आए, अलफ खान आए, मुजफ्फर गुर्जर सुल्तान आए, औरंगजेब आए, मोहम्मद बेगड़ा आया और मोहम्मद गजन भी आए, इतने आक्रमण के बाद भी क्यों खड़ा किया? ये कोई केवल मंदिर नहीं था, मंदिर तो बहुत से होते हैं और गुजरात में बहुत से मंदिरों पर को भी नष्ट किया था, लेकिन सोमनाथ ये भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का प्रतीक है. विनाश से निर्माण मैंने कहा, वो उस आधार पर वो खड़ा है और उसी आधार पर वहां से जो कुछ बना, कुछ संकल्प हुए. इसीलिए नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक शब्द दिया था, संकल्प कथा, संकल्प यात्रा, और कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति एक संकल्प ले, गुजरात विशेष हो जाएगा. और उन्हीं दिनों में मैंने कहा सरदार वल्लभ भाई, ये एक नींव का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आरंभ था. ये बात सही है. और सरदार वल्लभ भाई ने जब संकल्प किया कि सोमनाथ तो होना चाहिए, फिर बात दिल्ली तक पहुंच. और सभी उन दिनों के जो लेखक हैं उन्होंने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू को ये ठीक नहीं लगा. उनका कहना था कि ये बिन सांप्रदायिक हमारा देश है, इसमें कोई देवी मंदिर को इस प्रकार पुनर्निर्माण करना सरकार के द्वारा ये ठीक नहीं है
0: जी.
2: फिर वे लोग गांधी जी के पास

0: गए, ये घटना है। और गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला, उन्होंने कहा कि ठीक है सरकार मदद न दे लेकिन लोगों के द्वारा फंडिंग करके इनको खड़ा किया जाएगा। ये बात हुई, बाद में तो गांधी जी भी नहीं रहे, सरदार भी नहीं रहे, और जब प्रतिष्ठित हो गया, मंदिर हो गया, तो राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू, राजेंद्र बाबू को आमंत्रित किया गया। और ये स्पष्ट है उन दिनों के जो सब बयान है उसमें, जवाहरलाल जी ने ना कहा, वो अपने ढंग से वो सोचते थे कि भाई ये सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर स्टेट है। लेकिन राष्ट्रपति जी ने कहा कि सेक्युलर होने के बावजूद मैं सभी जगह जाता हूं, यदि मस्जिद का पुनरोद्धार होगा तो मैं वहां भी जाऊंगा। ये देश की संस्कृति है ऐसा। और आए और सोमनाथ का जीर्णोद्धार का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उनके बाद बार बार ये हुआ। तो ये और फिर 47 के बाद ये यहाँ जो गुजरात राज्य 1960 में बना, तब से यहाँ की जो प्रजा थी, यहाँ के जो नेता थे, उन्होंने सोमनाथ ट्रस्ट बनाया। सोमनाथ ट्रस्ट पहले भी था, उसमें दिग्विजय सिंह जी ने बड़ा काम किया, जामनगर के महाराजा ने।
1: जी
0: और ये हमारे बहुत से ऐसे राजवी थे कि जो परम सांस्कृतिक प्रतिनिधि भी थे, संस्कृति के साथ जुड़े हुए थे। तो ये हुआ और फिर सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा ये काम हुआ। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल थे अध्यक्ष, अब नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस जो स्थान है, इस स्थान को एक ऐतिहासिक बनाने की यात्रा शुरू हुई है।
1: प्रधानमंत्री 11 मई को दोबारा जा रहे हैं वहां पर। आपने जिस तरह से हमें पूरा समझाया कि किस तरह ये प्रतीक है एकता का, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने लेख में भी किया है, लेकिन अगर आज के भारत को सोमनाथ की कहानी से अगर एक सीख लेनी हो पांड्या जी, तो वो क्या होगी? और इसको मैं जोड़ूंगी आज के जियोपॉलिटिकल संदर्भ से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये जिक्र किया है कि आज जब दुनिया में हर जगह जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूनिटी बिल्कुल नहीं है और जिस तरह से डिविजन्स हैं कई लेवल्स पर, उस संदर्भ में उन्होंने सोमनाथ का जिक्र किया है। तो अगर एक सीख हम आज के अपने देश के और दुनिया के संदर्भ में लें तो सोमनाथ से वो क्या होगा?
0: मेरी दृष्टि से ये केवल जियोपॉलिटिकल है नहीं है, ये जियो कल्चरल भी। और सांस्कृतिक अस्मिता हिंदुस्तान की, हम बाकी विश्व की इसमें चिंता न करें, वो वहां शांति होगी या नहीं होगा, वहां युद्ध होगा नहीं होगा, वो तो अपने ढंग से वो सोचेंगे तब होगा। लेकिन भारतवर्ष में इन दिनों में युवा शक्ति को एक राष्ट्र जागरयाम वयम, राष्ट्र में हम सभी जगह जागते रहे, हम जहां भी हो जैसे भी हो, लेकिन जागृति बहुत बड़ी आवश्यक अनिवार्य है। और इसी इतिहास बोध से लेकर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ऐसे दो स्थान का निर्माण हुआ है, एक सोमनाथ का है और दूसरा केवड़िया कॉलोनी नर्मदा के किनारे सरदार पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, एकता की प्रतिमा। ये दोनों ऐतिहासिक है, आज तो वहां देश देशावर से लोग जाते हैं। तो ये इनकी इतिहास बोध की दृष्टि से ये हो रहा है। और आपने एक सवाल विदुषी को पूछा था कि युवा वर्ग इसमें कैसे जुड़ेगा, मेरी दृष्टि से और मेरे अनुभव से, मैं अध्यापक भी रहा हूं, मैं बोलता भी हूं।
1: रीसेंट टाइम्स as you rightly mentioned, given the prime minister's outreach as well as the kind of efforts that have been undertaken in recent years, we do see that there is a renewed confidence among Indians about their national identity, about their culture, about their roots, and we are also projecting our heritage globally through yoga, through Buddhism, through spirituality. Do you also see Somnath as part of that larger story in helping India project its cultural heritage, its civilizational on the global stage?
2: Yeah, in fact, it's very interesting with the question that you asked, the fact that the Somnath temple is located in Gujarat, and also the fact that Gujaratis are very vibrant diaspora members and they are brand ambassadors of the Indian story outside. And you spoke of soft power, of course, not just the Somnath temple, but so many other rejuvenated temple complexes in the country. You can take the Char Dham Yatra, then you can take Kashi Vishwanath temple, which has been redone fully. And in fact, if you look at the statistics, you will realize, Tina, that not just domestic tourism has been boosted through this religious rejuvenation, but a lot of international tourists are also coming back. You know, a lot of Indians only live abroad who are now coming back to revisit these places of worship, all these religious shrines. So that's one very important thing. And of course, Somnath Temple is part of the larger soft power segment of India. our rich and ancient civilization, our democratic values, and our growing global influence.

0: through yoga, which you mentioned. Then we have Bollywood. Our cuisine is doing wonders all across the world. In fact, recently, Indian cheese also made global headlines by winning two major awards at a Brazilian event. That was the first ever time.
1: Right.
0: So, culture and civilization straddle so many different sectors. It's not just faith or religion. It's food. You know, it's our language, it's our practices, it's our lifestyle. So it's across sectors.
1: Your personal thoughts on how we can make our civilizational values coexist, or sort of say make it a strength in today's global climate, which helps India achieve its ambitious goals and it helps us grow as individuals, balancing between history and modernity and the future, maybe balancing between history and the future.
0: See, the fact of the matter remains that, you know, the adaptive nature of Indians as we are, you know, Bharatiya Sabhyata, which we call, this adaptive nature has taken us through so much, and we have not, you know, really fallen to the vagaries of time or to the vagaries of conquerors. Civilization remains our greatest strength, and it is particularly important for the fact that it has helped us endure and, you know, stay strong. It's basically, Tina, our living heritage. It combines ancient wisdom, we can call it by different names, the Vedas, the Upanishads, with modern progress. See, which society can adapt as fast and as beautifully as our Indian society? We go back 5,000 years, and yet we are, you know, today commanding 50% of digital transactions in the world are happening in India. So we are the same society, old and yet new.
1: Thank you, ma'am. It's been wonderful hearing your insights on this very important topic. बल्कि मेरा एक सवाल विष्णु पांड्या जी, सोमनाथ आपने बताया कि सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, भारत के लिए निरंतरता का भी प्रतीक रहा है, तो ऐसे में हमें ऐसे और क्या कदम उठाने चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास सिर्फ किताबों तक ही सीमित ना रह जाए, ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे वो इतिहास को महसूस कर सकें और उसे बखूबी समझें।
2: अग्रता क्रम में तो वैसे इतिहास का पुनर्लेखन और चिंतन होना चाहिए, ये एक बात। दूसरी बात ये है कि अध्यापकों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए इतिहास के बारे में, जो नहीं है आज, ठीक ढंग से इतिहास सिखा जाए, दूसरी बात। तीसरी बात, लोग युवा वर्ग तक कम्युनिकेट होने के लिए ऐसे व्याख्यान भी हो सकते हैं, धर्मोपदेशक वाले या प्रोफेसर या फिलोसोफर, बाकी सब वो कर सकते हैं। हमारी नाट्य संस्कृति जो है उनको पुनर्जीवित करके ऐसी घटनाओं पर नाटक होने चाहिए। फिल्मों का भी बड़ा सशक्त माध्यम है, डॉक्यूमेंट्रीज है, उनके द्वारा भी बार बार, एक बार नहीं बार बार इसका प्रस्तुतिकरण हो, तो धीरे धीरे धीरे, और मैंने, मेरा अनुभव है कि जब युवा वर्ग के सामने बोलता हूँ तो उनकी आंखों में एक प्रकार की एक स्पिरिट आ जाता है कि हमें कुछ और भी चाहिए
1: जी।
2: सच बात है, उन लोगों तक हम पहुंचे नहीं, पहुंचना चाहिए। ये धीरे धीरे व्यापक रूप से पूरे देश में हो सकता है। तो मेरे दृष्टि से पुनः एक बार हमारी परंपरा, 5000 साल से भी पहले शायद, ये परंपरा में जो विनाश से निर्माण की एक भावना है, संस्कृति इसी आधार पर टिकी हुई है। साहब सोमनाथ में भी जब उत्खनन हुआ है, चार सभ्यताएं सिविलाइजेशन की अवशेष मिले हैं, तो कितने हमारी सभ्यताएं दीर्घकालीन होती होगी, इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए, और इसके लिए योग्य माहौल बनाकर ये हम कर सकते हैं, और आकाशवाणी इसमें सबसे ज्यादा निर्णायक बन सकती।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि सोमनाथ क्यों इतिहास में ही नहीं बल्कि आज के संदर्भ में भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है और खास करके युवा वर्ग के लिए जरूरी है कि हम इस जगह के बारे में जानें कि इसने इस देश को क्या दिया है और आज के संदर्भ में भी ये कितना प्रासंगिक है। So the story of Somnath Temple, listeners, is not just about a temple rebuilt in stone. It is about civilization, in fact, that refuses to lose its spirit. So 1,000 years after the first attack and 75 years after its restoration, Somnath continues to stand tall as a reminder that India's strength lies not only in its history, but in its ability to rebuild, to endure, and most importantly, to move forward with confidence. So on that very interesting note, we'll have to wrap up the conversation. Time allows us to take up only that much on the program. So that's it from us, listeners, on this program. You can also listen to our program, Current Affairs, on our mobile app, News on AIR, and our YouTube channel, News on AIR Official.
3: Current Affairs.

श्रोताओं, रसधारा कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं आनंदवशी का लिखा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में, लता मंगेशकर और SP बालासुब्रमण्यम की आवाजों में। फिल्म है एक दूजे के लिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म कर्ज में। बोल आनंद बख्शी के थे और तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म आ गले लग जा में। गीत के बोल लिखे थे साहिल लुधियानवी ने और तर्ज बनाई थी आर डी बर्मन ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, समीर का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में, आवाजें अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की हैं। फिल्म है बीबी हो तो ऐसी।

श्रोताओं, रसधारा कार्यक्रम के आखिर में अभी आप सुन रहे थे आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा गीत, अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाजों में फिल्म थी जंगल लव। इसी के साथ हमारा रसधारा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद विलायत हुसैन खान का राग बागेश्वरी बहार में गायन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत उस्ताद विलायत हुसैन खान का राग बागेश्वरी बहार में गायन। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप

0: समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
0: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।